0: हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट अंदोस आज शब्द स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। कहानियां आपकी जिंदगी को बदल देती है, कहानियां जिसे सुनकर आपको नींद आती है, कहानियां जो आपकी जिंदगी में बदलाव लाती है, कहानियां जो आपकी जिंदगी में ठहराव लाती है, कहानियां जो आपको जीने का मकसद देती है, कहानियां जो प्रेम को अलग अलग रूप देती है, कहानियां जो दादियां सुनाती है, कहानियां जो जीने का मकसद बताती है, कहानियां जो एक शर्ट के बटन में छुपी होती है, कहानियां जो गुल्लक के सिक्के में छुपी होती है, कहानियां जो बालियों की खनक में छुपी होती है, कहानियां जो पायल में बसती है, कहानियां जो सितार में सुनाई देती है, कहानियां जो राग में सुनाई देती है, कहानियां जो नजारों में नजर आती है, कहानियां जो पंछियों के झुंड में नजर आती है, कहानियां कहानियां कहानियां। तो दोस्तों कहानियां हर जगह, बस जरूरत है तो उन्हें सुनने की, उन्हें महसूस करने की। तो ऐसी एक कहानी लेके आया हूं मैं आज कहानियों के गुल्लक में, जिसका नाम है एक छोटी सी मदद। मुंबई की भीड़ भाड़ भरी लोकल ट्रेन सुबह के 8:45। सब लटकते हैं इस ट्रेन में, कभी जाके देख लो आप मुंबई में, अगर आप कभी लोकल से ट्रैवल करो तो आपको नजर आएगा कि सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे का जो टाइम होता है, इन 4 घंटों में अगर आप ट्रेन में चढ़ भी पाए तो ये आपके लिए किसी ड्रीम को अचीव करने से कम नहीं होगा। बहरहाल सुनते हैं कहानी। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हर रोज की तरह लोग भाग रहे थे, किसी को ऑफिस पहुंचना था, किसी को कॉलेज और किसी को इंटरव्यू। इसी भीड़ में एक 24 साल का लड़का था, अमन, सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से आता था। पापा एक नॉर्मल मजदूर थे, माँ हाउसवाइफ थी। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद भी पिछले 1 साल से जॉब नहीं मिली थी। आज उसका एक बहुत बड़ा इंटरव्यू था। उसके बैग में सिर्फ एक फाइल रखी थी और पॉकेट में बस 120 रुपए। ट्रेन आई और सब लोग धक्का मुक्की करते हुए चढ़ गए। अमन भी किसी तरह ट्रेन में अंदर घुस गया। ट्रेन कुर्ला स्टेशन के पास पहुंच ही रही थी कि उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। लगभग 70 साल के बुजुर्ग, हाथ कांप रहे थे, सांस तेज चल रही थी, लोग उन्हें इग्नोर कर रहे थे। एक आदमी बोला, अरे अंकल थोड़ा साइड हो जाओ ना। दूसरा बोला, रोज ड्रामा करते हैं लोग। लेकिन अमन को कुछ अलग लगा, वो तुरंत उनके पास गया। अंकल आप ठीक हो ना? बुजुर्ग आदमी ने धीरे से बोला, पानी। अमन ने बिना सोचे अपनी बोतल निकाल दी, बोतल में आधा ही पानी बचा था। खुद इंटरव्यू के लिए जा रहा था अमन, फिर भी उसने पूरा पानी अंकल को पिला दिया। थोड़ी देर बाद अंकल नॉर्मल होने लगे। अमन ने पूछा, हॉस्पिटल चलना है क्या? अंकल मुस्कुरा दिए, नहीं बेटा, शुगर लो हो गई थी ना, तभी स्टेशन आ गया। अमन उतरने लगा, अंकल ने उसका हाथ पकड़ा, बेटा तुम्हारा नाम? अमन। फोन नंबर? अमन मुस्कुरा दिया, अंकल उसकी जरूरत नहीं है, और वो भीड़ में खो गया। कट टू इंटरव्यू हॉल। रिसेप्शनिस्ट बोली, सॉरी सर, इंटरव्यू ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आप 12 मिनट लेट हो। अमन ने बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने एंट्री नहीं दी। वो बाहर बेंच पर बैठ गया, आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, काश मैं ट्रेन में नहीं रुकता। उसने घर फोन नहीं किया, सीधे मरीन ड्राइव चला गया, हताश मायूस होकर। समंदर के सामने बैठकर बस ये सोचता रहा, एक छोटी सी मदद और बदले में इंटरव्यू भी चला गया। उसे लगा, अच्छा इंसान बनना शायद प्रैक्टिकल दुनिया में लॉस की डील है। उस रात घर जाकर माँ ने पूछा, इंटरव्यू कैसा गया बेटा? अमन ने झूठ बोल दिया, अच्छा था माँ। पापा बोले, जॉब मिल गई। लेकिन अमन जानता था आज उसने एक मौका खो दिया है। 2 दिन बाद उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। हेलो, क्या मैं अमन से बात कर रहा हूँ? जी, कल सुबह 11 बजे इस एड्रेस पर आ सकते हो?
1: पर क्यों?
0: सर ने बुलाया है।
1: कौन सर?
0: बस आ जाइए।
1: फोन कट।
0: अमन को लगा कोई फ्रॉड होगा, लेकिन एड्रेस देखकर वो हैरान रह गया। मुंबई की एक बहुत बड़ी कंपनी का हेड ऑफिस। अगली सुबह वो वहां पहुंच गया। रिसेप्शनिस्ट उसका नाम सुनते ही बोली, सर आपका ही वेट कर रहे थे।
1: अमन कंफ्यूज हो गया।
0: कॉन्फ्रेंस रूम का डोर खुला और सामने वही ट्रेन वाले बुजुर्ग अंकल बैठे थे, लेकिन इस बार सूट पहने हुए, साथ में कंपनी के डायरेक्टर्स। अमन शॉक हो गया। अंकल आप?
1: अंकल मुस्कुराए, बेटा मैं इस कंपनी का फाउंडर हूं।
0: अमन की सांसें रुक गई। अंकल बोले, उस दिन ट्रेन में किसी को नहीं पता था मैं कौन हूं, सबने मुझे इग्नोर किया, सिर्फ तुम रुक गए। मैं तुम्हें रिवॉर्ड देने के लिए नहीं बुलाया हूं यहां पर, मैं देखना चाहता था क्या तुम वैसे ही इंसान हो जैसे उस दिन थे। और यहीं से अमन की जिंदगी पर एक नया मोड़ आया। वो नया मोड़ क्या है तो सुनते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले में दोस्तों एक बात ये जरूर समझिए कि आपकी की हुई छोटी सी मदद, छोटे से भी मदद, यानी किसी को पानी पिलाना हो या किसी बच्चे को बिस्किट्स देना हो या किसी भूखे को एक वड़ा पाव खिलाना हो, कोई भी छोटी से छोटी हेल्प, बहुत छोटी हेल्प कभी वेस्ट नहीं होती, कभी जाया नहीं जाती। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जिसे कहते हैं ना कर्मा हर जगह होता है। तो आपके कर्म जितने अच्छे होंगे वो आपको आपकी जिंदगी में अच्छाई की ओर ही लेके जाएंगे। तो हमेशा याद रखिए, अगर आपसे आप छोटी सी भी हेल्प कर सकते हो किसी के लिए तो जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक अच्छा काम आप और कर सकते हैं, इस ब्रेक पर सुनते रहिए गाने और ब्रेक के बाद फिर से आइए, क्योंकि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है वो बहुत मजेदार है। तो जाइएगा नहीं, सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त, मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। इतनी सारी कहानियां कहां कहां से खोजनी पड़ती है क्या बताओ, पर ठीक है। फिलहाल हम थे अमन की कहानी पर। अमन ने कैसे एक बुजुर्ग इंसान को ट्रेन से रुककर हेल्प की और बाद में उसका इंटरव्यू चला गया। वो बेचारा हताश होकर मरीन लाइन पे बैठा, फिर घर आया, घर पे झूठा जवाब दिया। हाँ, मैं क्यों रिकैप बता रहा हूँ, आप तो सुन चुके थे ना कहानी। तो चलिए सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा। कॉन्फ्रेंस रूम में पूरी खामोशी थी। अमन अब भी यकीन नहीं कर रहा था कि लोकल ट्रेन में जिस बुजुर्ग को उसने पानी पिलाया था वो मुंबई की एक बहुत बड़ी कंपनी के फाउंडर थे। उनका नाम था राजेंद्र मेहता। राजेंद्र जी मुस्कुराकर बोले, बेटा तुम्हें पता है उस दिन तुमने मेरे सिर्फ जान नहीं बचाई थी, तुमने मेरा इंसानियत पर भरोसा भी वापस लौटा दिया। अमन ने धीरे से कहा, सर मैं तो सिर्फ वही कर रहा था उस दिन जो हर इंसान को करना चाहिए था। राजेंद्र जी की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। बेटा बस उसी कार्य की वजह से, उसी मदद की वजह से आज आप यहां हमारे सामने बैठे हैं। इस बार इंटरव्यू में अमन से टेक्निकल क्वेश्चंस कम और जिंदगी के सवाल ज्यादा पूछे गए। एक सवाल पूछा गया उससे, कल अगर तुम्हारे पास सिर्फ 100 रुपए बचे हो और किसी भूखे बच्चे को खाना चाहिए तो क्या करोगे? अमन ने एक गहरी सांस ली और बिना सोचे बोला, पहले उसका पेट भरूंगा, पैसे दोबारा आ जाएंगे, भूखा बचपन दोबारा नहीं आएगा। रूम में बैठे हुए सारे डायरेक्टर्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इंटरव्यू खत्म हुआ। राजेंद्र जी खड़े हुए और अमन के कंधे पर हाथ रखकर बोले, वेलकम टू आवर फैमिली। अमन को जॉब मिल गई लेकिन उसने कभी किसी को ट्रेन वाली बात नहीं बताई। उसके लिए वो मदद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, बस एक अच्छी आदत थी जो शायद वो हमेशा हर जो जिसको मदद की जरूरत हो उस इंसान को हमेशा वो मदद करता, वो उसकी एक अच्छी आदतों में से थी। अब अमन को जॉब मिल गई, अमन नौकरी करने लगा। एक दिन गुजरा, एक महीना गुजरा, दो महीना गुजरा, गुजरते गुजरते 6 महीने गुजर गए और एक नए सफर का अब हो गया आगाज। अमन कंपनी का सबसे मेहनती एम्प्लॉय बन चुका था। ऑफिस में सब उसकी रिस्पेक्ट करते थे। एक दिन राजेंद्र जी ने उसे अपने कैबिन में बुलाया। अमन मेरी एक विश है। जी सर बोलिए ना। हर फ्राइडे हम लोग किसी न किसी की मदद करेंगे। अमन हैरान हुआ, सर कंपनी? राजेंद्र जी बोले, नहीं हम। उस फ्राइडे दोनों बिना किसी मीडिया बिना किसी कैमरा के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए, किसी पेशेंट की मेडिसिन भर दी, किसी बच्चे की स्कूल फीस भर दी, किसी बुजुर्ग के लिए हियरिंग मशीन खरीद ली और हर बार एक ही शर्त होती, कभी किसी को मत बताना किसने मदद की। और यहां से शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसकी शायद कभी राजेंद्र जी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कभी जिंदगी में वो अपने एक नॉर्मल से एम्प्लॉय के साथ जाकर ऐसी मदद लोगों की करेंगे। एक दिन ऑफिस की पैंट्री में पीहून रमेश उदास बैठा था। अमन ने पूछा, क्या हुआ? रमेश बोला, मेरी बेटी का कॉलेज एडमिशन है, फीस नहीं भर पा रहा। उस रात अमन ने अपनी सेविंग से उसकी आधी फीस भर दी। बाकी इम्प्लॉयज को पता चला, सबने मिलकर बाकी की अमाउंट अरेंज कर दी। किसी ने 500 रुपए दिए,
किसी ने 1,000 रुपए लिए, किसी ने बुक स्पॉन्सर्स कर दी। 2 दिन में पूरी फीस जमा हो गई। रमेश रो पड़ा। उसकी बेटी ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया और उस दिन ऑफिस में एक नया इनिशिएटिव शुरू हुआ, लिटिल हेल्प क्लब। रूल सिर्फ एक था, हर एम्प्लॉय महीने का सिर्फ 100 रुपया कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। जो दे सकता है वो ज्यादा भी दे सकता है, कोई फोर्स नहीं है। पहले महीने सिर्फ 23 लोग जुड़े, लेकिन दूसरे महीने में 81 लोग जुड़ गए। 1 साल के अंदर पूरी कंपनी जुड़ गई। उस फंड से 42 बच्चों की स्कूल की फीस भरी गई, 18 पेशेंट्स का ऑपरेशन हुआ, 70 सीनियर स्टूडेंट्स को राशन दिया गया, फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज तक रिलीफ पहुंचाई गई। और सबसे खास बात, किसी भी न्यूज़पेपर में फोटो नहीं छिपी, किसी सोशल मीडिया में पोस्ट नाम नहीं डाला गया, सिर्फ लोगों की दुआएं मिली। और क्या, एक बार अमन ऑफिस से घर जा रहा था, सिग्नल पर एक छोटा सा लड़का पेन बेच रहा था, लोग उसे डांट रहे थे। अमन ने उससे पूछा, स्कूल जाते हो? लड़का बोला, पापा का एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद से मैंने स्कूल छोड़ दिया। अमन ने उस बच्चे से सारे पेन खरीद लिए, लेकिन पेन लेने के बाद वो बोला, कल से पेन नहीं बेचना, स्कूल जाना। उसने उस लड़के का एडमिशन एक एनजीओ के थ्रू करवा दिया। उसका नाम था इमरान। उस दिन अमन को नहीं पता था ये छोटी सी मदद आगे चलकर उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है। तो दोस्तों, अमन की जो आदत थी हर इंसान को मदद करने की, चाहे वो इंसान छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता था। उसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज थी, वो थी इंसानियत, और वो उस इंसानियत को अपने अंदर जिंदा रखे हुए था। इसीलिए हर किसी व्यक्ति जिसे मदद की जरूरत होती थी तो अमन उसके लिए हमेशा खड़ा होता, चाहे वो जिस प्रकार उसे हेल्प कर पाए। जैसे पीयून की बच्ची की आधी फीस भर दी, उसके पास शायद पूरे फीस भरने के पैसे ना हो, इसलिए उसने आधी फीस भरी, बच्चे के पूरे पेन खरीद लिए। वो हर तरह की मुमकिन कोशिश करता जिससे जो भी परेशान है, जिसे भी हेल्प की जरूरत है, उसे वो करे और इंसानियत का पैगाम और आगे पहुंचाए। तो आगे इमरान को मदद करने के बाद इमरान क्या स्कूल पढ़ पाएगा? क्या इमरान स्कूल जाएगा या फिर इमरान फिर से उस सिग्नल पर आके पेन बेचेगा? क्या होगा कहानी में, मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूं कि कहानी के खत्म होने होने तक आप इस कहानी से एक ऐसी सीख जरूर लेंगे जिससे आपकी जिंदगी में बदलाव जरूर आएगा। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM पर बहुत मजेदार गाने।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त स्वागत करता हूं आपका आचार्य 90 FM पर। आप सुन रहे हैं कहानियों गुल्लक, कहानियों की गुल्लक आरजे शब्बीर के साथ। जैसे हम जान रहे हैं कि इमरान की मदद कर दी पेन खरीद कर, उसे एनजीओ के द्वारा एक एडमिशन करवा दिया उसका स्कूल में, इमरान स्कूल जाने लगा धीरे धीरे। ऑफिस का जो लिटिल हेल्प क्लब शुरू हुआ था वो भी अब और ज्यादा लोगों की मदद करने लगा। सारे काम अच्छे से हो रहे थे, दिन बदले महीने बदले और पूरे 2 साल बीत गए। राजेंद्र जी रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं, एनुअल फंक्शन में हजारों एम्प्लॉयज बैठे हैं, सब सोच रहे थे कि स्पीच बिजनेस के बारे में होगी, लेकिन राजेंद्र जी ने स्टेज पर आते ही एक बोतल पानी उठाई और बोले, मेरी कंपनी को आज जो असली लीडर मिला है उसने मुझे किसी बोर्ड रूम में इंप्रेस नहीं किया था, उसने मुझे मुंबई की लोकल ट्रेन में एक बोतल पानी देकर जीत लिया था। पूरा हॉल खामोश था, सबकी नजर अमन पर थी। उस दिन पहली बार कंपनी को पता चला कि एक छोटी सी मदद ने सिर्फ एक इंसान की जान नहीं बचाई थी, उसने पूरी कंपनी की कल्चर बदल दी थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ साल बाद वही छोटा लड़का इमरान फिर से अमन की जिंदगी में लौटने वाला था और इस बार मदद का असली मतलब दुनिया देखने वाली थी। 3 साल बीत चुके थे, अमन को अब कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोस्ट मिल गई थी, सैलरी अच्छी थी, घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी सुधर गई थी। पापा ने अब काम से रेजिग्नेशन दे दिया था, मां अब अपने जो शौकिया तौर पर गाने गाती थी वो पूरे करने में लगी थी, लेकिन चीज नहीं बदली। और वो एक चीज थी, हर फ्राइडे अमन किसी ना किसी की बिना नाम बताए मदद करता था। उसका मानना था मदद का असली मजा तो तब है जब सामने वाले को सिर्फ इंसानियत याद रहे, मदद करने वाले का नाम नहीं। एक शाम अमन ऑफिस से घर लौट रहा था, हाईवे पर उसने देखा कि एक बाइक और ट्रक की टक्कर हो गई है, डजन्स लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे।

अमन ने नाम सुना और हैरान रह गया। स्टेज पर एक कॉन्फिडेंट यंग लड़का आया। स्पीच शुरू हुई। आज जो मैं हूं उसका क्रेडिट मेरी मेहनत को कम और दो अननोन हीरोज को ज्यादा जाता है। सब ध्यान से सुनने लगे। पहला हीरो, एक इंसान जिसने बचपन में मेरे सारे पेन खरीदने के बाद मुझे स्कूल वापस भेजा। अमन की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर इमरान ने स्टेज से अमन की तरफ देखा और कहा, मुझे आज भी याद है, उस भैया ने कहा था, जिंदगी पेन बेचने के लिए नहीं, सपने लिखने के लिए होती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। और दूसरा हीरो, डॉक्टर इमरान ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, दूसरा हीरो मुझे कुछ महीने पहले मिला था, या शायद मिला भी नहीं, सब कंफ्यूज हो गए। एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, मैं ही वो पेशेंट था। हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी अननोन इंसान ने मेरी जान बचाई, हॉस्पिटल पहुंचाया, नाम तक नहीं बताया। डॉक्टर ने कहा, आज भी मैं उस हीरो को ढूंढ रहा हूं। अमन चुप था। राजेंद्र मेहता जो ऑडियंस में बैठे थे सब समझ चुके थे। उन्होंने धीरे से अमन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा कुछ मदद अपलॉस के लिए नहीं होती। अमन सिर्फ मुस्कुराया। फिर क्या, उसी शाम राजेंद्र जी ने एक अनाउंसमेंट की, आज से हम कंपनी के लिटिल हेल्प क्लब को एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट बना रहे हैं। नाम रखा गया लिटिल हेल्प फाउंडेशन। फाउंडेशन का मिशन बहुत सिंपल था, हर इंसान रोज सिर्फ एक छोटी मदद करे, ना करोड़ों का डोनेशन, ना बड़े प्रोमिसेस, सिर्फ एक छोटा सा काम, किसी को रोड क्रॉस करवाना, किसी स्टूडेंट्स की फीस भरना, किसी को ब्लड डोनेट करना, किसी को जॉब रेफर करना, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी उदास इंसान की बात सुन लेना। धीरे धीरे करके 5 साल बीत गए। फाउंडेशन पूरे इंडिया के कई शहरों में काम करने लगी। हजारों वॉलंटियर्स जुड़ गए। लाखों लोगों तक मदद पहुंचने लगी। मीडिया ने राजेंद्र जी से पूछा, सर इतनी बड़ी मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई? राजेंद्र जी ने टेबल पर रखी एक पुरानी प्लास्टिक की पानी की बोतल उठाई और बोले, इस बोतल से। रिपोर्टर हैरान रह गए। राजेंद्र जी मुस्कुराकर बोले, एक दिन मुंबई की लोकल ट्रेन में एक लड़के ने अपना आधा पानी एक अनजान बुजुर्ग को दे दिया था। उस लड़के को नहीं पता था कि उसकी वजह से एक बोतल पानी आज हजारों लोगों की जिंदगी बदल देगा। आज कई साल बीत चुके हैं। अमन के बाल सफेद होने लगे हैं। एक दिन वो पार्क में बेंच पर बैठा था, तभी एक छोटी सी बच्ची दौड़ती आई, दादू आपकी स्टिक गिर गई। उसने स्टिक उठाकर अमन को दे दी। अमन ने मुस्कुराकर पूछा, थैंक यू बेटा, तुमने मदद क्यों की? बच्ची बोली, मम्मी कहती है छोटी सी मदद कभी छोटी नहीं होती, पता नहीं वो किसकी पूरी दुनिया बदल गई। अमन की आंखें भर आई, उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे राजेंद्र जी बात फिर से सुन रहे हो। इंसान अपनी कमाई से अमीर नहीं बनता, अपनी मदद से बनता है। और उस पल अमन को समझ आया, एक बोतल पानी से शुरू हुआ सफर एक सोच बन चुका था, एक आदत, एक मूवमेंट, एक मिसाल बन चुका था। कभी भी किसी छोटी मदद को कम मत समझना। एक मुस्कान, एक गिलास पानी, एक हौसला, एक रेफरल, एक सही वक्त पर दिया गया सहारा किसी की पूरी जिंदगी डायरेक्शन बदल देता है। क्योंकि अच्छाई कभी वेस्ट नहीं जाती, वो हमेशा किसी ना किसी रूप में लौट कर जरूर आती है। तो दोस्तों, जैसे कि एक आधी पानी की बोतल से शुरू हुआ सफर आज इतनी बड़ी मूवमेंट क्रिएट कर चुका था कि जिसकी कोई मतलब कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं, जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, चाहे जैसे भी हो, जितनी भी हो, लोगों की मदद करिए और सुनते रहिए आचार्य 90 FM। बहुत मजेदार गाने, बहुत मजेदार कहानियां, और मिलते हैं हम अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए कहानियों की गुल्लक, सिर्फ आचार्य 90 FM।

दूर कहीं अमेज़न के काले और घने जंगलों में देर रात जब नुकीले दांत वाला डरावना जीव न्यूक्लिया अपने दैत्याकार भयंकर और बेस हेवी बीट्स बजाता है तो मानो पूरे जंगल में हाहाकार मच जाता है। जब जंगल के सारे जानवर डर कर चुप हो जाते हैं तब उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है।

अजय रेन NTFM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? सब चंगा? भाई सबको ठीक होना ही चाहिए, क्योंकि अजय रेन NTFM के ऑडियंस हमारे खास दोस्त हैं और दोस्तों का ख्याल रखना मतलब स्वाद का जायका बखूबी निभाना है। अर्ज किया है, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू, हम करते हैं ऑडियंस जी आपसे ढेर सारा प्यार, आपके आने से आई स्वाद का जायका शो पर बहार। बारिश की बौछार से भीगा धरती का दामन, हमारे ऑडियंस जी की मौजूदगी से महका आचार्य 90 FM का चमन। भाई आम वाला खास मौसम तो फिलहाल चल ही रहा है, आम के साथ मार्केट में लीची भी पधारी है। हम यूजुअली आम और लीची को अलग अलग खाते हैं, राइट? लेकिन हमारी आज की रेसिपी इन दोनों को मिलाकर बनने वाली है। आम के शौकीनों के लिए गर्मियों का सीजन मींस मैंगो की वैरायटीज को आजमाने का मौसम होता है। रिफ्रेशिंग मैंगो ड्रिंक से लेकर नए नए स्नैक्स और टेस्टी मिठाइयाँ, भाई लिस्ट तो बढ़ती ही रहेगी। हमारी आज की रेसिपी मैंगो और लीची का फ्यूजन है, जिसके पहले निवाले में ही आप इसके दीवाने हो जाएंगे। लंच या डिनर पार्टी में परोसने के लिए ये एक शानदार मिठाई है और इस शानदार मिठाई का नाम है मैंगो स्टफ लीची। मैंगो स्टफ लीची बनाने में बेहद आसान है और आपकी स्वीट क्रेविंग को ये तुरंत शांत कर देगी। तो चलिए अब हम इसकी रेसिपी को सुनते हैं। मैंगो स्टफ लीची बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: पूरी तरह से पकी हुई लाल लीची 15 या 20, गाढ़ा दूध 1/2 लीटर, फिर हमें चाहिए नींबू का रस 2 चम्मच, मिश्री पाउडर मींस खड़ी साखर का पाउडर 4 चम्मच, ताजे और पके हुए आम 2, इलायची पाउडर 1/2 चम्मच, सोक्ड पिस्ता 5 से 6, केसर के धागे 7-8, और एक जरूरी इंग्रेडिएंट मतलब ढेर सारा प्यार भी चाहिए, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में जरूर उतरेंगी। रेसिपी को शुरू करने से पहले हमें थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप आम को पानी में भिगोकर रख दीजिए। लगभग 1 से 2 घंटे के लिए हमें आम को पानी में भिगोना है। ऐसा करने से आम के अंदर की हीट थोड़ी सी रिड्यूस होगी। लगभग 1 घंटे के बाद आप आम का छिलका हटाइए, फिर आम की गुठली को भी हटाइए। इस मैंगो पल्प मींस आम के गूदे को चर्नर की मदद से स्मूथ बनाइए। ऐसा करने से मैंगो पल्प में से गुठलियां निकल जाएंगी। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की ओर। मोटे बेस वाले एक बर्तन में हमें दूध को उबालना है। जैसे ही दूध उबलने लगे हम उसमें नींबू का रस डालेंगे। अब 1 चम्मच की मदद से नींबू के रस को दूध में अच्छे से मिक्स कीजिए। ऐसा करने से दूध फट जाएगा और छेना मींस ताजा पनीर तैयार हो जाएगा। जब उस फटे हुए दूध से सॉलिड और लिक्विड पार्ट सेपरेट हो जाए, तब एक साफ और सूती कपड़े से हमें उसे छान लेना है। आप चाहे तो छलनी की मदद से छेना और मट्ठा को अलग कर सकते हैं। उसके बाद छेना मींस ताजे बने हुए पनीर से आप पानी को निचोड़ लीजिए। बचे हुए ताजे छेना को अपनी हथेलियों से गूंथकर एकदम सॉफ्ट बनाइए। माय गॉड, इतनी तैयारी करके मैं तो थक गई भाई साहब। आई नीड अ ब्रेक। तब तक आप एक गाना सुनिए।

ब्रेक के बाद हमारे प्यारे ऑडियंस का फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। स्मूथ मैंगो पल्प और सॉफ्ट ताजा ताजा छेना अब हो गया है तैयार और मैंगो स्टफ लीची बनाने हम नहीं कर सकते और ज्यादा इंतजार। अब सॉफ्ट छेना मींस गूंथ कर रखे हुए पनीर में हम ऐड करेंगे मैंगो पल्प। मिश्री मींस खड़ी शक्कर को भी हम ऐड करेंगे। खड़ी शक्कर पाउडर फॉर्म में है, इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें इलायची पाउडर और ढेर सारा प्यार भी ऐड कीजिए। ऐसा करने से इसका स्वाद ज्यादा निखर आएगा। अब हमें क्या करना है तो जनाब, अब हम लेंगे हमारी लीची। सारी लीची को अच्छे से धो लीजिए। फिर हमें लीची का छिलका हटाना है। उसके बाद क्या करें? तो भाई लीची को सिर्फ एक चीरा मींस कट लगाकर उसमें से हमें धीरे से बीज निकालना है। ध्यान रहे कि लीची कहीं फट ना जाए, अदरवाइज उसके अंदर स्टफिंग को भरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब सारी लीची को हमने एक कट लगाकर उसके अंदर से बीज तो निकाल दिए हैं। अब आप लीजिए एक पाइपिंग बैग और उस पाइपिंग बैग में आप मैंगो पल्प और छेना वाला मिश्रण भर दीजिए। यहाँ पर आप चाहे तो अपनी उंगलियों से भी लीची के अंदर स्टफिंग भर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते समय आपको सावधानी बरतनी होगी। अब एक एक करके सारी लीची के अंदर स्टफिंग भर दीजिए। अब आगे क्या करें? तो भाई जरा रुकिए, पहले आप सुनिए हमारे शो का अगला गाना। तब तक मैं यूं गई और यूं आई।

ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। स्टफ्ड मैंगो लीची अब ऑलमोस्ट तैयार है, लेकिन लेकिन लेकिन इसे डेकोरेट करना फिलहाल बाकी है। अब आप लीजिए एक सुंदर सी प्लेट और उस प्लेट में सारी स्टफ लीची को अगल बगल में रख दीजिए। फिर आप सोक्ड पिस्ता के पतले टुकड़ों को उस पे सजाइए, साथ ही केसर के धागों को भी बड़ी नजाकत से डालिए। आप चाहे तो इसे कुछ समय के लिए फ्रिज में रख के ठंडा कर सकते हैं। भाई मुझ में उतना पेशेंस तो है नहीं, इसलिए मैं तो इसे बनते ही अपने मुंह में स्वाहा करूंगी। आहाहा, क्या बात भाई, मजा आ गया। वैसे क्या आप जानते हैं कि लीची में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। इससे हमारे बाल और स्किन को पोषण मिलता है। तो अपनी ब्यूटी रेजिम में आप लीची को जरूर शामिल कीजिए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। वैसे हमारे बिहार के अलावा झारखंड, उत्तराखंड, बंगाल और असम में भी लीची उगाई जाती है। तो झटपट मार्केट हो आइए और स्टफ्ड मैंगो लीची बनाने के लिए रसीली लीची को अपने घर ले ही आइए। वैसे बिहार की शाही लीची तो वर्ल्ड फेमस है, तो क्यों ना इस वर्ल्ड फेमस लीची से हम स्वीट और टैंगी स्टफ्ड मैंगो लीची को बनाएं और अपने साथ अपनों को भी खिलाएं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी पर अन्न और जल समाप्त हो गया था, जिससे हर तरफ हाहाकार मच गया। तब सभी ऋषि मुनियों ने मिलकर माता पार्वती की स्तुति की, उसमें देवता भी शामिल थे। जगत कल्याण के लिए माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धारण किया। भगवान शिव जी ने भी माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी और मिली हुई भिक्षा के माध्यम से धरती पर सभी जीवों में अन्न का बंटवारा किया। इसलिए भोजन के पहले और अंत में माता अन्नपूर्णा का स्मरण करना बेहद शुभ माना जाता है। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी। इसलिए हमें अन्न का आदर करना चाहिए, जितनी जरूरत हो उतना ही खाना अपनी थाली में ले और एक्स्ट्रा खाना अपनों के साथ मिल बांटकर खुशी से खाएं। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस लीची की खिदमत में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है लीची मैंगो और छेना। लीची उगाने में अव्वल है बिहार, इसका टेस्ट अनोखा सा, खुश हुआ संसार। मैंगो के साथ जब मिल गया छेना, तब चहक सी उठी मेरे मन की मैना। मिश्री की मौजूदगी ने बढ़ाई इसकी मिठास, पिस्ता और केसर से मिठाई बनी खास। जरूर खाकर देखिए ये लाजवाब स्वीट, इसका टेस्ट है ऐसा कि गर्मी को कर दे बीट। लीची के उत्पादन में बिहार है अग्रेसर, और मिठाई को सजाने साथ आया केसर। स्टफ्ड मैंगो लीची का लाजवाब स्वाद जुबान के साथ ही आपके दिल को भी रहेगा याद। अपनों संग बांटो होम मेड मिठाई, अपनापन जताकर करो दोस्ती की कमाई। आचार्य 90 FM मीन्स योर ओन रेडियो, स्वाद का जायका निभाती हूँ फ्रॉम अवर स्टूडियो। मिलती रहूंगी आपसे हर सोमवार और शुक्रवार, स्वाद का जायका लाएगा आपके किचन में बहार। हमें इंतजार है आपकी रेसिपीज का, सुन रहे हैं ना ऑडियंस। सराहना होगी आपकी भी जब मिलेगा हमें आपका गाइडेंस। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और भी बातें होंगी।

अब हम बढ़ते हैं अगली रेसिपी की ओर। इस रेसिपी का नाम है लीची पुदीना शिकंजी। शिकंजी एक फेमस और रिफ्रेशिंग भारतीय पेय है। ये ऑर्डिनरी नींबू पानी से अलग होता है क्योंकि इसमें नींबू और चीनी के साथ साथ कई खास मसालों का इस्तेमाल किया जाता है जो इसे खट्टा मीठा और चटपटा बनाते हैं। यूपी में गर्मियों के सीजन में गर्म हवा मींस लू से बचने के लिए और इंस्टेंट एनर्जी को पाने के लिए शिकंजी को एज अ देसी एनर्जी ड्रिंक इस्तेमाल किया जाता है। शिकंजी पीने से डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम दूर होती है, साथ ही हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ती है। इसे ज्यादातर दोपहर के टाइम में पीना अच्छा माना जाता है। तो चलिए अब हम लीची पुदीना शिकंजी बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। लीची पुदीना शिकंजी बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: फ्रेश और पूरी तरह से पकी हुई लीची 8 से 10, पानी 2 ग्लास, पीसी हुई चीनी 2 बड़े चम्मच, काला नमक 1/2 चम्मच या स्वादानुसार, भुना हुआ जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, नींबू 1, पुदीना 10-12 पत्ते, बर्फ 6 टुकड़े, ये ऑप्शनल है। अब हम इसे बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले हम लीची को अच्छे से धो लेंगे, फिर हम लीची का छिलका और अंदर का बीज भी हटाएंगे। उसके बाद पुदीना के पत्तों को भी साफ पानी से धो लेना है। अब आगे सुनिए। एक ब्लेंडर लीजिए, उस ब्लेंडर में हम डालेंगे छील कर रखी हुई लीची, फिर उस लीची में हम ऐड करेंगे पुदीना के कुछ पत्ते। इससे क्या होगा कि पुदीना का रिफ्रेशिंग टेस्ट इस शिकंजी में स्वाद का जायका ऐड करेगा। अब इसमें डालिए थोड़ा सा पानी। आप चाहे तो इसमें बर्फ के कुछ टुकड़े भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको ठंडा चाहिए तो। वैसे मुझे पर्सनली बिना बर्फ वाले मॉकटेल्स ज्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे वो कौन सा मॉकटेल है जिसे आप किसी भी सीजन में पीने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं? मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM, योर ओन रेडियो। अब हम आगे की रेसिपी को सुनते हैं। ब्लेंडर में डाली चीजों को हमें अब मिक्स करना है, इसलिए आप इसका ढक्कन लगाकर उसे अच्छे से ब्लेंड कीजिए। अब ब्लेंडर का ढक्कन खोलिए, फिर उसमें बचा हुआ पानी, काला नमक और नींबू का रस, इन सब चीजों को डालिए। साथ ही भुना जीरा पाउडर भी ऐड कीजिए। इसे भी हमें अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। अगर हमने सारा पानी शुरुआत में ही ब्लेंडर में डालकर बाकी चीजों के साथ मिक्स किया तो हमारी लीची पुदीना शिकंजी अच्छे से मिक्स नहीं होगी। पानी एक तरफ और लीची पुदीना के टुकड़े दूसरी तरफ, ऐसी टाइटैनिक स्टाइल शिकंजी हमें उस ब्लेंडर में दिखाई देगी, इसलिए बी केयरफुल। हड़बड़ी में ऐसा कुछ भी ना करें जिससे हमारा आसान सा काम मुश्किल में बदल जाए। अब हमारी लीची पुदीना शिकंजी सर्व करने के लिए तैयार है और इसका लुफ्त उठाने हम कब से बेकरार है। लेकिन लेकिन लेकिन अभी डेकोरेशन वाला पार्ट बाकी है। इसके लिए हमें चाहिए 2 लंबे वाले कांच के ग्लास। एक प्लेट में आप लीजिए 1/2 चम्मच नमक और 1 चम्मच शक्कर। फिर क्या करें? तो भाई उन ग्लास के किनारों को थोड़ा पानी लगाकर उन्हें उस नमक और शक्कर वाली प्लेट पर पलट दीजिए। ऐसा करने से ग्लास के किनारों पर क्रिस्टल लेयर बनेगी जो हमारी लीची पुदीना शिकंजी को प्रोफेशनल लुक देगी। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी? अब हम उन ग्लास को सीधा खड़ा करेंगे, फिर एकदम संभाल कर एक नजाकत से तैयार शिकंजी को उन ग्लास में डालना है। इसे और सुंदर बनाने के लिए उस शिकंजी पर पुदीना के 2-3 पत्ते रख दीजिए। क्या बात! फिर अपने मोबाइल कैमरा में इस लीची पुदीना शिकंजी की छवि को कैप्चर कीजिए। उसके बाद अपनों के साथ बैठकर एकदम आराम से इस लीची पुदीना शिकंजी का लुफ्त उठाइए।
आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस लीची पुदीना शिकंजी के लिए पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है तसल्ली वाली शिकंजी। झुलसती सी गर्मी में हमें देने तसल्ली, घर में बननी ही चाहिए लीची पुदीना शिकंजी। लीची और पुदीना का ये रिफ्रेशिंग कॉम्बिनेशन, मतलब शिकंजी के रूप में गर्मी भगाने वाला इनोवेशन। तेज गर्मी को जब देनी हो मात, तब हम थामेंगे देसी नुस्खे का हाथ। आसान से देसी नुस्खे हमें देंगे जोश, लीची पुदीना शिकंजी पीकर होंगे आप मदहोश। हमारे देसी खाने में है सेहत से जुड़े कई राज। आचार्य 90 FM के ऑडियंस जी, क्या आप सुन ले हम कुछ साज़।

आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। भाई मौसम को बदलते देर नहीं लगती, झुलसती गर्मी वाला मौसम बस अब बदलने ही वाला है और फिर रेनी सीजन स्पेशल रेसिपीज को हमें बनाना है। मौसम के अलग अलग रूपों को एंजॉय करने के लिए लोकल सीजनल और ट्रेडिशनल खाना हमें जरूर खाना चाहिए और उस टेस्टी खाने के साथ कुछ सुरीले साज भी बजने ही चाहिए। इसलिए आचार्य 90 FM इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब हम सुनते हैं एक क्विक रिकैप। आज शुरुआत में हमने बनाई स्टफ्ड मैंगो लीची, जिसमें छेना मींस फ्रेश पनीर और मैंगो पल्प को लीची के अंदर भरकर हमने एक लजीज मिठाई बनाई। स्टफ्ड मैंगो लीची का रूप निखारने के लिए हमने उस पर पिस्ता और केसर वाला डेकोरेशन भी किया। किया कि नहीं? जी जरूर किया। उसके बाद हमने बनाई यूपी की फेमस शिकंजी, जिसका नाम था लीची पुदीना शिकंजी। रसीली लीची और पुदीना की परफेक्ट जोड़ी से हमने इस गर्मी के मौसम को थोड़ा सा इजी बनाने की कामयाब कोशिश की है कि नहीं? अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो हमें जरूर लिखिए, और अगर आपको अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना हो तो वो भी हमें जरूर बताइए। हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है और हर नई शुरुआत से एक कहानी शुरू होती है। कहानी और रेसिपी का ये संगम अनोखा, मतलब स्वाद और जायके का मिलाप मींस सलोखा। बेसब्री से कीजिए आप सोमवार और शुक्रवार का इंतजार। आपके संग रेसिपीज को शेयर करने हम हैं एकदम बेकरार। खाने और गाने का ये सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि आप और हम हैं लजीज खाने के शौकीन और हमारे दोबारा मिलने का मुझे है पूरा यकीन। अगली बार कुछ और इंटरेस्टिंग रेसिपीज लेकर हम आपसे दोबारा मिलेंगे। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, आपसे दोबारा मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं एकदम पक्का वादा। आरजे भारतीय सीमा की तरफ से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 एफएम। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों के गुल्लक में। लेके आया हूँ कुछ ऐसी कहानी आप लोगों के लिए जो शायद आपके दिल में एक ऐसी दस्तक दे दे जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं। आज की कहानी ऐसी है, बहुत सारे थ्रिलर से भरपूर और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न से भरपूर। तो कहानी का नाम है एजेंट जीरो। अब ये पाई की कहानी है पर इसका नाम जीरो क्यों है, इसमें भी एक रोचक तथ्य है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। और उसके पहले एक जरूरी बात आपसे कि कहानियां जो होती है वो बहुत ज्यादा दिल के करीब होती है, तो यदि आपको कोई कहानी अच्छी लगी हो तो जरूर हमें बताइएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। मुंबई सुबह के 8 बजे मरीन ड्राइव के पास एक छोटी सी चाय की टपरी पर एक 30 साल का लड़का चाय पी रहा था। नाम आरव मेहता। देखने में बिल्कुल नॉर्मल, सिंपल सा शर्ट, जीन्स, बैकपैक और आंखों पर एक नॉर्मल सा चश्मा। जो भी उसे देखता बस इतना ही सोचता, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय होगा और क्या ज्यादा से ज्यादा। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही आदमी इंडिया की सबसे सीक्रेट इंटेलिजेंस का एक सोल्जर है, एक एजेंट है। शैडो डिवीजन का सबसे डेंजरस फील्ड एजेंट था आरव। उसका कोड नेम था एजेंट जीरो, यानी ऐसा स्पाई जिसका नाम गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में भी ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता था। अगर मिशन सक्सेसफुल हो तो देश बच जाता और अगर मिशन फेल हो तो गवर्नमेंट उसे पहचानने से भी मना कर देती, इसीलिए उसका नाम था एजेंट जीरो। आरव अपनी चाय फिनिश कर ही रहा था तभी उसका स्मार्ट वॉच में वाइब्रेशन हुआ। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कबूतर उड़ चुका है। ये नॉर्मल मैसेज नहीं था, ये एक इनक्रिप्टेड कोड था, मतलब इमरजेंसी मिशन। आरव ने बिना रिएक्शन दिए कब डस्टबिन में डाला और सीधे चर्चगेट स्टेशन की तरफ चल दिया। जो लोग उसके पास से गुजर रहे थे उन्हें लग रहा था ये बस ऑफिस जा रहा है, लेकिन हर दूसरे सेकेंड उसकी आंखें आसपास के हर इंसान को स्कैन कर रही थी। एक आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, एक औरत फोन पर बात कर रही थी, एक डिलीवरी बॉय बाइक लेकर खड़ा था और एक छोटा सा बच्चा बलून बेच रहा था। आरव के दिमाग में एक सेकंड में सब का रिस्क प्रोफाइल बन गया। स्पाई की ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि कभी आप किसी पे भरोसा ही नहीं कर सकते। चर्च गेट स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक ओल्ड मैन बेंच पर बैठा था, व्हाइट बियर्ड, वॉकिंग स्टिक और हाथ में भगवत गीता। जैसे ही आरव उसके पास से निकला, ओल्ड मैन ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, दिल्ली का मौसम कैसा है? आरव रुक गया। आरव ने जवाब दिया, जब तक हिमालय खड़ा है मौसम बदल नहीं सकता। और क्या, ये थी उनकी कोड लैंग्वेज और कोड मैच हो गया। ओल्ड मैन ने अपनी वॉकिंग स्टिक आरव को दे दी, बस इतना ही, ना हैंडशेक ना इंट्रोडक्शन। आरव ट्रेन में चढ़ गया वॉकिंग स्टिक के अंदर के एक हिडन कंपार्टमेंट में। वॉकिंग स्टिक के अंदर एक हिडन कंपार्टमेंट था, उसमें एक माइक्रोचिप थी और एक फोटो। फोटो देखते ही आरव की सांसें एक सेकंड के लिए रुक गई। फोटो में था रॉ चीफ और फोटो के ऊपर लाल रंग से लिखा था टारगेट। आरव धीरे से बोला फोटो देखने के बाद, इम्पॉसिबल, इंडिया के रॉ चीफ, टारगेट, कौन कर सकता है ये? और सबसे बड़ा सवाल, मिशन फाइल में लिखा था एनिमी इज इनसाइड, मतलब गद्दार बाहर नहीं, सिस्टम के अंदर था। इसी वक्त दिल्ली साउथ ब्लॉक रॉ हेडक्वार्टर्स एक हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। रॉ चीफ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और डिफेंस इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स सब डिस्कस कर रहे थे कि पिछले 2 महीनों में इंडिया के 3 अंडरकवर एजेंट्स एक एक करके एक्सपोज कैसे हो गए, हर मिशन लीक कैसे हो रहा है, हर ऑपरेशन फेल कैसे हो रहा है, किसने फाइल्स बेच दी। लेकिन क्या, कौन ये सब कर रहा है? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी मीटिंग रूम की लाइट्स एक सेकंड के लिए ब्लिंक हुई, बस एक सेकंड, और उसी एक सेकंड में कॉन्फ्रेंस टेबल के नीचे एक मैग्नेटिक डिवाइस चिपक गया। किसी ने नोटिस ही नहीं किया। मीटिंग खत्म हुई, सब बाहर गए और एग्जैक्टली
45 सेकंड बाद बूम, पूरी कॉन्फ्रेंस रूम में जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ। ग्लास, स्टील, कंक्रीट सब हवा में उड़ गए। पूरा साउथ ब्लॉक इमरजेंसी मोड में चला गया। टीवी चैनल्स चिल्लाने लगे, दिल्ली में बड़ा ब्लास्ट, नेशनल सिक्योरिटी अलर्ट, रॉ हेडक्वार्टर्स पर अटैक। पूरा देश शॉक में था। मुंबई, आरव का फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, फिनिक्स हैज फॉलन। ये कोड सिर्फ एक चीज का सिग्नल देता था, मिशन अब लेवल ब्लैक बन चुका था। अब रूल्स खत्म थे, अब सिर्फ सर्वाइवल था, सिर्फ सर्वाइवल। धीरे धीरे धीरे टाइम बीतने लगा। 2 घंटे बाद आरव सीक्रेटली दिल्ली पहुंचा। उसे एक अबॉन्डेड मेट्रो स्टेशन में बुलाया गया। वहां उसे मिली नैना कपूर, फॉर्मर आईबी ऑफिसर, बेस्ट साइबर इंटेलिजेंस एक्सपर्ट और आरव की एक्स पार्टनर। नैना मुस्कुराकर बोली, तुम अब भी लेट आते हो। आरव हंसा नहीं, उसने सीधा पूछा, रॉ चीफ? नैना ने धीरे से कहा, डेड। 1 सेकंड की खामोशी थी। आरव की आंखों में पहली बार गुस्सा दिखा। नैना ने एक टैबलेट उसके सामने रखा। स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। ब्लास्ट के 20 मिनट पहले एक अननोन आदमी बिल्डिंग के अंदर गया। फेस क्लियर नहीं था, लेकिन उसके हाथ पर एक टैटू था, ब्लैक कोबरा। आरव का चेहरा बदल गया। ये लोग वापस आ गए। नैना हैरान हो गई, तुम जानते हो इन्हें? आरव धीरे से बोला, 3 साल पहले मैंने इनका पूरा नेटवर्क डिस्ट्रॉय किया था। लीडर को मैंने अपनी आंखों के सामने मरते देखा था। नैना ने सिर हिलाया, तो फिर अगर लीडर मर गया था तो यह ऑपरेशन कौन चला रहा है? और उसी वक्त रशिया का एक सीक्रेट बंकर में एक आदमी अंधेरे में बैठा था। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, बस उसकी आवाज सुनाई देती थी, एजेंट जीरो एक्टिवेट हो चुका है। दूसरा आदमी बोला, सर क्या उसे एलिमिनेट कर दें? अंधेरे में बैठा आदमी हंसा, नहीं, उसे जिंदा रहने दो, क्योंकि गेम तभी इंटरेस्टिंग होता है जब शिकार को लगता है कि वो शिकारी है। कैमरा धीरे धीरे उस आदमी के हाथ पर जूम करता है और उसकी उंगली में वही रिंग थी जो 3 साल पहले ब्लैक कोबरा में मारे गए लीडर के हाथ में थी। आरव जिस आदमी को मरा हुआ समझ रहा था, शायद वो कभी मरा ही नहीं। तो दोस्तों, जैसे हम देख रहे हैं एक स्पाई की कहानी जिसका नाम है आरव मेहता और उसका नाम है एजेंट जीरो। अब एजेंट जीरो क्यों है ये भी आपको पता चल गया। और 3 साल पहले उसने जिस खुफिया गैंगस्टर्स को मारा था और आरव को लग रहा था कि वो जो है उनका लीडर वो मर चुका है, लेकिन वो असल में मरा नहीं था, वो अब भी जिंदा था। तो क्या वो जो लीडर था उनका गैंगस्टर्स का, क्या वो अब आरव के पीछे कैसे हाथ धो के पड़ जाएगा, या फिर आरव उस लीडर को मार गिराएगा? जानते हैं, सुनते हैं, देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 एफएम। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज शब्बीर स्वागत करता हूं आपका कहानियों की गुल्लक में। हम सुन रहे थे एजेंट जीरो की कहानी। अब आरव दिल्ली पहुंच चुका है, रॉ चीफ डेड हो चुके हैं, रॉ के ऑफिस में एक ब्लास्ट हो चुका है, अब आगे क्या होगा तो चलिए सुनते हैं। दिल्ली, रात के 2:15 बज रहे थे। पुरानी दिल्ली के एक अंडरग्राउंड सेफ हाउस में सिर्फ एक टेबल पर लैंप जल रहा था। लैंप के बीच में एक डिजिटल मैप प्रोजेक्ट हो रहा था। इंडिया, दुबई, तुर्की और रशिया को जोड़ने वाली रेड लाइन स्क्रीन पर ब्लिंक कर रही थी। आरव और नैना उस मैप को घूर रहे थे। नैना ने धीरे से कहा, रॉ हेडक्वार्टर्स के ब्लास्ट के बाद हमारे पास सिर्फ एक क्लू बचा है और वो क्लू है ब्लैक कोबरा। आरव ने टैबलेट उठाया। ये सिर्फ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक प्राइवेट स्पाई नेटवर्क है। ये गवर्नमेंट्स के लिए नहीं, सबसे ज्यादा पैसे देने वालों के लिए काम करते हैं। उनके एजेंट्स पॉलिटिशियंस भी होते हैं, साइंटिस्ट भी होते हैं, आर्मी ऑफिसर्स भी होते हैं और कभी कभी जर्नलिस्ट भी। नैना हैरान रह गए। मतलब कोई भी उनका आदमी हो सकता है? हाँ, कोई भी उनका आदमी हो सकता है। इसी वक्त सेफ हाउस की इलेक्ट्रिसिटी अचानक चली गई, पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। आरव की ट्रेनिंग एक्टिवेट हो गई। उसने बिना एक सेकंड वेस्ट किए नैना का हाथ पकड़ा और दोनों फ्लोर पर गिर गए। अगले ही पल टट टट टट साइलेंस बुलेट्स दीवार को चीरते हुए अंदर घुस गई। विंडो का ग्लास टूट गया। 3 मास शूटर्स बिल्डिंग के सामने वाली छत पर खड़े थे। आरव ने पॉकेट से एक स्मोक कैप्सूल निकाली और रूम धुएं से भर गया। शूटर्स को कुछ भी दिखना बंद हो गया। इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर आरव और नैना बेसमेंट के सीक्रेट टनल से बाहर निकल गए। लेकिन जैसे ही वो गली में पहुंचे, एक ब्लैक एसयूवी के सामने आकर रुक गई। डोर खुला और अंदर से आवाज आई, एजेंट जीरो, अगर जिंदा रहना है तो गाड़ी में बैठ जाओ। आरव ने पिस्तौल निकाली लेकिन गाड़ी के अंदर बैठा आदमी बोला, कोड α7। ये कोड सिर्फ शैडो डिवीजन के एजेंट्स जानते थे। आरव गाड़ी में बैठ गया। ड्राइवर ने अपना मास्क उतारा। मेजर कबीर सिंह, शैडो डिवीजन का सीनियर ऑपरेटिव। कबीर ने बिना पीछे देखे हुए कहा, तुम दोनों एक्सपोज हो चुके हो। दिल्ली में हर सीसीटीवी पर तुम्हारी फोटो सर्कुलेट हो रही है। गवर्नमेंट को भी लग रहा है कि रॉ ब्लास्ट के जिम्मेदार तुम हो। नैना शॉक में थी। क्या? कबीर ने टैबलेट दिया। न्यूज चैनल पर फ्लैश हो रहा था, फॉर्मर रॉ लिंक ऑफिसर आरव मेहता सस्पेक्टेड इन सिक्योरिटी ब्रीच। ये न्यूज सुनकर आरव चुप हो गया। ये किसी भी बहुत पावरफुल इंसान का काम था, कोई पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहा था। आरव चुप हो गया। ये किसी बहुत पावरफुल इंसान का काम था, कोई पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहा था। लेकिन आरव जो है वो शांत बैठने वाला नहीं था। अब उसका नाम इस ब्लास्ट में आ तो गया था, अब उसे खुद को निर्दोष साबित करना था। तो वो धीरे धीरे अपना प्लान बनाने लगा और 3 दिन बाद दुबई में वो जा पहुंचा। बुर्ज खलीफा के सामने लग्जरी बिजनेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। 100 से ज्यादा बिजनेसमैन सामने थे, मीडिया थी, सिक्योरिटी, और उन्हीं के बीच आरव एक बिलियनियर बैंकर कॉन्फ्रेंस में एंटर हुआ। नैना उसकी असिस्टेंट बनी, कबीर सिक्योरिटी कंसल्टेंट। टारगेट था एक इंटरनेशनल आर्म्स डीलर, विक्टर रोमानुआ। इन्फॉर्मेशन थी कि ब्लैक कोबरा का नेक्स्ट ऑपरेशन उसके थ्रू फाइनेंस हो रहा है। कॉन्फ्रेंस के बीच विक्टर वॉशरूम की तरफ गया। आरव उसके पीछे पीछे पीछे चला गया। वॉशरूम बिल्कुल खाली था। विक्टर मिरर के सामने खड़ा था। उसने बीने पीछे देखे, वेलकम एजेंट जीरो कहा। आरव एक सेकंड के लिए रुक गया। विक्टर मुस्कुराया, तुम सोच रहे होंगे ना मैं तुम्हें पहचाना कैसे। सिंपल, हमें तुम्हारे आने की इन्फॉर्मेशन 2 दिन पहले ही मिल गई थी। आरव का दिल जोर से धड़का। फिर से मिशन लीक, मतलब गद्दार अभी भी शैडो डिवीजन के अंदर था। विक्टर ने पॉकेट से रिमोट निकाला, कैच मी इफ यू कैन बोला और उसने बटन दबा दिया। कॉन्फ्रेंस हॉल में अचानक एक्सप्लोजन हुआ। लोग पैनिक में भागने लगे, फायर अलार्म से बजने लगे, स्मोक हर तरफ फैल गई। विक्टर भीड़ में गायब हो गया। आरव उसके पीछे भाग रहा था लेकिन आरव को थोड़ी देर बाद कुछ नजर ही नहीं आया।
दुबई के रोड्स पर हाई स्पीड चेस शुरू हो गई थी। विक्टर सुपर बाइक पर था, आरव स्पोर्ट्स कार में था, नैना ड्रोन से ट्रैकिंग कर रही थी। लेफ्ट लो, अब ब्रिज क्रॉस करो, टारगेट सिर्फ 300 मीटर आगे है। विक्टर ने अचानक से बाइक से एक मैग्नेटिक माइन रोड पर गिरा दी। बूम, आरव की कार हवा में उछल गई। कार 3 बार पलटी खाकर डिवाइडर से टकरा गई, ग्लास टूट गया, खून उसके माथे से बहने लगा। नैना चीख उठी, आरव! लेकिन अगले ही सेकेंड कार का डोर धीरे से खुला और आरव खुद बाहर निकला। चोट लगी थी लेकिन आंखों में वही डिटर्मिनेशन था। उसे विक्टर की तरफ देखा जो हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ चुका था और फिर से मिशन फेल हो गया। लेकिन उस रात दुबई के होटल में कबीर सिक्योरिटी किसी से इनक्रिप्टेड कॉल कर रहा था। स्क्रीन पर सिर्फ एक शैडो नजर आ रही थी। कबीर बोला, एजेंट जीरो बच गया। शैडो की आवाज आई, कोई बात नहीं, उसे इंडिया वापस आने दो, वही उसकी कब्र बनेगी। कबीर ने कॉल डिस्कनेक्ट की और धीरे से मुस्कुराया। रीडर को पहली बार शक हुआ, क्या कबीर ही गद्दार है? एक इनक्रिप्टेड हार्ड ड्राइव से नैना को लोकेशन मिली। लोकेशन थी कश्मीर के पहाड़ों में एक अबॉन्डेड मिलिट्री बंकर में। तीनों वहां पहुंच गए। अंदर कंप्यूटर्स चल रहे थे, वॉल्स पर इंडिया का स्ट्रेटेजिक मैप बना हुआ था, मिसाइल्स, एयरबेस, नवल रूट्स, सबकी इन्फॉर्मेशन, सारी सारी सारी इन्फॉर्मेशन। एक स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन ब्लिंक कर रही थी, वेलकम एजेंट जीरो। अचानक पूरे बंकर के स्पीकर ऑन हो गए। एक मास्क पहना आदमी की आवाज गूंजी, तुम हमेशा एक स्टेप पीछे ही रहे, तुम जिस गद्दार को ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे साथ ही खड़ा है। आरव ने तुरंत नैना और कबीर की तरफ देखा, तभी धाम, कबीर ने आरव पर गन तान दी। नैना शॉक में जम गई। कबीर हंसने लगा, मुझे माफ करना दोस्त, पैसे देश से बड़े निकले। आरव ने धीरे से कहा, तो तुम ही हो ब्लैक कोबरा का आदमी? कबीर मुस्कुराया, नहीं, मैं तो सिर्फ एक प्यादा हूँ, असली किंग तो अभी तक तुमने देखा ही नहीं है। और उसने ट्रिगर दबा दिया, बैंग, गोली सीधा आरव के सीने की तरफ चली। और क्या हुआ देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गाने सुनते रहिए और सोचते रहिए कि अब आखिरी एपिसोड में क्या होगा। तब तक मैं भी आता हूँ कोई अच्छे गाने प्ले करके आपके लिए। बाय बाय।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 एफएम। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त स्वागत करता हूँ आपका आचार्य 90 एफएम पर कहानियों की गुल्लक में। हम सुन रहे थे एजेंट जीरो की कहानी। कबीर जो फंस चुका है जिस मिशन को वो सॉल्व करने आया था उसमें, अब उसके सामने उसका ही कलीग जो गद्दार निकला, उसने गोली चला दी और गोली चली सीधे कबीर के सीने की तरफ। देखो क्या होता है। बर्फ से ढके हुए पहाड़, अंडरग्राउंड बंकर और कबीर ने गन से निकाली गोली सीधा आरव की तरफ बढ़ रही थी और बैंग, नैना की चीख पूरे बंकर में गूंज उठी, आरव। लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। आरव दो कदम पीछे हुआ और फिर सीधा खड़ा हो गया। कबीर की आंखें खुली की खुली रह गई। तुम जिंदा कैसे? आरव ने अपनी जैकेट खोली, अंदर एक अल्ट्रा लाइट बुलेट प्रूफ टैक्टिकल वेस्ट था। उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, स्पाई कभी भी बिना बैकअप प्लान के मिशन पर नहीं जाता। कबीर गुस्से से दोबारा ट्रिगर दबाने ही वाला था कि आरव ने अपनी स्लीव के अंदर छुपा माइक्रो ब्लेड निकाला और एक ही सेकंड में ब्लेड हवा में घूमा और कबीर के हाथ से गन दूर जाके गिरी। दोनों के बीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो गया। पंच, किक, काउंटर अटैक, पूरा बंकर जंग का मैदान बन गया था। कबीर भी शैडो डिवीजन का ट्रेंड ऑपरेटिव था। हर मूव का जवाब उसके पास था। एक जोर का पंच आरव के चेहरे पर लगा, उसके होठों से खून निकलने लगा। कबीर हंसने लगा, गेम ओवर जीरो। लेकिन आरव चुप था। उसने धीरे से अपनी घड़ी का बटन दबाया। कबीर को कुछ समझ नहीं आया और अचानक बंकर की सारी लाइट्स बंद हो गई। इमरजेंसी रेड लाइट्स जल उठी, कंप्यूटर स्क्रीन फ्लिकर करने लगे। नैना ने तुरंत समझ लिया कि ईएमपी पल्स। आरव ने पूरे बंकर के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिसेबल कर दिए थे। अब ना कैमरास, ना ऑटोमेटिक लॉक्स, ना सिक्योरिटी सेंसर्स, सब के सब बंद। अंधेरे का फायदा उठाकर आरव ने कबीर को नीचे गिराया और उसके हाथ बांध दिए। कबीर जोर जोर से हंसने लगा, तुम जीत गए? नहीं आरव, अभी असली गेम शुरू हुआ है। और उसने धीरे से बंकर की दीवार की तरफ देखा। वहां एक हिडन डोर खुल गई। अंदर से धीमी तालियों की आवाज सुनाई देने लगी। एक लंबा आदमी अंदर से बाहर निकला, ब्लैक सूट, ग्रे बाल, शांत चेहरा और आंखों में अजीब सी ठंडक। नैना उसे देखते ही सन्न रह गई। इम्पॉसिबल! आरव की सांसें रुक गई। कि खन्ना सर? ये वही आदमी था जिसने सालों पहले आरव को शैडो डिवीजन में रिक्रूट किया था। राघव खन्ना, शैडो डिवीजन के फाउंडर, इंडिया का लेजेंडरी स्पाई और आरव का गुरु। आरव धीरे से बोला, ये सब आप? खन्ना मुस्कुराया, हाँ आरव, ब्लैक कोबरा का असली मास्टरमाइंड मैं ही हूं। नैना को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन क्यों सर? खन्ना ने गहरी सांस ली। 25 साल तक मैंने देश के लिए जान दी, हर मिशन कंप्लीट किया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद एक मेडल तक नहीं मिला। गवर्नमेंट नए हीरोज बना रही थी, पुराने स्पाइस को भूल गई और उसी दिन मैंने फैसला किया, अब दुनिया मुझे इग्नोर नहीं करेगी, मैं दुनिया को कंट्रोल करूंगा। उसने एक रिमोट निकाला, स्क्रीन पर इंडिया का डिजिटल मैप आ गया। खन्ना बोला, हर मेट्रो सिटी का पावर ग्रिड मैं मलवेयर इंस्टॉल कर चुका हूं। एक बटन दबाते ही पूरे इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एयर ट्रैफिकिंग सब बंद हो जाएगा, सब के सब, जो सिर्फ 10 मिनट में सारे देश को घुटने पर ला सकता था। नैना ने धीरे से पूछा, पासवर्ड? खन्ना सर मुस्कुरा दिए, तुम लोगों के मरने के बाद बताऊंगा मैं पासवर्ड क्या है। उसने रिमोट एक्टिव कर दिया, स्क्रीन पर काउंटडाउन शुरू हुआ। 10 मिनट पे जो खन्ना पूरे देश को घुटने पर लाने वाला था, अब उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका था। आरव ने बंकर का लेआउट देखा, एक तरफ सर्वर रूम था, दूसरी तरफ खन्ना और बीच में कबीर और काउंटडाउन। उसने नैना की तरफ देखा, सिर्फ एक नजर, दोनों एक दूसरे को समझ गए। नैना सर्वर रूम की तरफ
भागी आरव सीधा खन्ना की तरफ। खन्ना की फाइटिंग स्किल आज भी कमाल की थी, हर अटैक प्रिसाइज, हर मूव कैलकुलेटेड। एक एक किक आरव के दीवार से टकरा गई। काउंट डाउन, अब बचे थे 7 मिनट 48 सेकेंड। नैना सर्वर हैक कर रही थी, लेकिन सिस्टम क्वांटम इंक्रिप्शन से प्रोटेक्टेड था, पासवर्ड के बिना कुछ नहीं होगा। आरव जोर से बोला, नैना वायरस अपलोड करो, मैं पासवर्ड लाता हूँ। फाइटर और भी डेंजरस हो गई, फाइट अब और भी डेंजरस हो गई। खन्ना ने पिस्तौल निकाली, 3 गोलियां चलाई, एक आरव के कंधे को छू गई, दूसरी दीवार में लगी, तीसरी गोली नैना की तरफ जा रही थी। आरव बिना सोचे उसके सामने आ गया, गोली उसके बाजू में घुस गई, खून बहने लगा। नैना ने आरव की तरफ देखा तो नैना की आंखों में आंसू आ गए, वो जोर से चिल्लाई, आरव। लेकिन आरव सिर्फ एक बात बोला, मिशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नैना, तुम अपना काम करो। अब 10 मिनट से समय घटकर 3 मिनट 11 सेकंड बच चुके थे। खन्ना ने रिमोट उठाया, बस एक बटन दबाया और सब खत्म। आरव ने अपनी बेल्ट से एक छोटा मैग्नेटिक डिस्क निकाला, उसने रिमोट पर चिपकाया, रिमोट फ्रीज हो गया। खन्ना गुस्से में चिल्लाया, तुमने। आरव ने उसके हाथ पकड़कर जोर से घुमा दिए, रिमोट नीचे गिर गया। स्क्रीन पर पासवर्ड फ्लैश हुआ, इंडिया 1947। नैना ने तुरंत पासवर्ड एंटर किया, वायरस अपलोड शुरू हुआ, 25%। खन्ना ने कबीर की तरफ देखा, उसे रोको। कबीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन बंकर के बाहर से हेलीकॉप्टर्स की आवाज आने लगी। शैडो डिवीजन के कमांडोज पहुंच चुके थे। कबीर के भागने की कोशिश की, लेकिन कमांडोज ने उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया। अंदर अपलोडिंग अब ज्यादा बढ़के 52% हो चुकी थी, अपलोडिंग अभी बढ़कर 52% हो चुकी थी। खन्ना ने आखिरी बार आरव पर हमला किया, दोनों बंकर के किनारे तक लड़ते पहुंच गए। नीचे 100 फुट गहरी खाई थी। खन्ना हंसने लगा, या तो मैं बचूंगा या तो हम दोनों मरेंगे। उसने आरव को धक्का दिया, दोनों खाई की तरफ गिरने लगे। आखिरी पल में आरव ने स्टील केबल पकड़ ली, खन्ना का हाथ भी उसके हाथ में था। खन्ना नीचे लटक रहा था। एक पल के लिए सब शांत हो गया। खन्ना धीरे से बोला, मुझे बचा लो। आरव की आंखों के सामने सारी ट्रेनिंग, सारी यादें और गुरु की शक्ल घूम रही थी। उसने पूरी ताकत से खन्ना को ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन खन्ना ने खुद उसका हाथ छोड़ दिया। तुम सच में मेरे सबसे बेहतरीन स्टूडेंट हो, और वो अंधेरी खाई में गिर गया। उसी वक्त सर्वर अपलोड हुआ 100% कंप्लीट। काउंटडाउन रुक गई, पावर ग्रिड बच गई, पूरा देश एक बहुत बड़े साइबर अटैक से बच गया। 3 महीने बाद मुंबई की वही पुरानी चाय की टपरी, सुबह के 8 बजे आरव फिर एक आम आदमी की तरह चाय पी रहा था। न्यूज चैनल पर चल रहा था, अननोन इंटेलिजेंस टीम फॉइल्स मैसिव अटैक ऑन इंडिया। किसी को नाम नहीं पता था, किसी को चेहरा नहीं पता था, ना कोई अवार्ड, ना कोई स्पीच, ना कोई सेलिब्रेशन। तभी उसकी स्मार्ट वॉच पर एक नोटिफिकेशन आया, स्क्रीन पर एक नया मैसेज आया, मिशन ओमेगा इनिशिएटेड। आरव हल्का सा मुस्कुराया, उसने चाय की आखिरी सिप ली, बैकपैक उठाया और भीड़ में कहीं गुम हो गया। क्योंकि कुछ हीरोज हिस्ट्री बुक्स में नहीं मिलते, वो सिर्फ देश की हिफाजत करते रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी कहानी आरव मेहता, एक स्पाई एजेंट की, जो अपने देश को बचाने के लिए हर एक कीमत चुकाने के लिए तैयार था। उसने अपने गुरु से तक फाइट की, अपने दोस्त, अपने कलीग सबसे, क्योंकि देश सबसे पहले आता है और देश के बाद सब कुछ। तो दोस्तों, सुनते रहिए आचार्य 90 FM पर। मैं मिलूंगा आपसे फिर अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अच्छे अच्छे गाने सुनिए और मजा कीजिए।

0: पूनम, मैं आज तक नहीं समझ पाया तो मेरी छोटी से छोटी बात को कैसे जानी थी। तुमने मेरी सर्दी को कैसे पहचाना?
1: जब सर्दी होती है तो हमेशा यूं करते हो।
0: कैसे? एक बार फिर करना।

0: आचार्य 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड ना? भाई सब अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे स्वाद का जायका इस शो के माध्यम से हम हमारे प्यारे ऑडियंस की सेहत का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करते हैं। अर्ज किया है, सावन की बारिश से बदल गया मौसम, मौसम का बदलाव लाया खुशियों वाला ब्लॉसम, खुशियों वाला ब्लॉसम कहे मुझसे आज का खाना होना चाहिए ऑसम। ऑसम खाना मतलब नहीं जंक फूड, जंक फूड मतलब बिग नो। खाना हो ऐसा जो बदल दे मूड, मूड को बदलने अपनाओ देसी खाना, और आचार्य 90 FM वाला कोई सुमधुर गाना। सुमधुर गाने की मनभावन ताल और आरजे भारतीय सीमा पूछ रही अपनों का हाल। स्वाद और सेहत वाला हमारा ये शो, खाना खाते समय रफ्तार को कीजिए स्लो। स्लो रफ्तार मतलब आराम से खाना। हमारी भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया ने है माना, दुनिया के मानने से हाय हुआ है जोश। सुनिए आचार्य 90 FM, मत बैठिए सिर्फ खामोश। खामोश बैठकर अगर हो गए हो बोर, तो बनाइए आज की रेसिपी और बोल में कीजिए पोर। ऑडियंस जी, हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी का नाम है लाल चावल का सूप। भाई बारिश का मौसम और रिमझिम बरसता हुआ सावन, तब हर किसी का मन करता है कि कुछ गर्मा गर्म टेस्टी खाना खाया जाए। ऐसे में बाहर से कुछ ऑर्डर करने से अच्छा है कि हम अपने घर पर ही कुछ हेल्दी खाना बना ले, है कि नहीं? वैसे भी बाहर वाला खाना खाकर अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचाने से अच्छा है कि हम कुछ नया और सात्विक खाना अपने घर पर ही बना ले। हमारी आज की रेसिपी कुछ इसी टाइप की है। व्रीही इस संस्कृत नाम वाले लाल रंग के चावलों को इस्तेमाल करके हम बनाएंगे एक टेस्टी सूप। इसमें आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स है। इसे पटनी के नाम से भी जाना जाता है। इन लाल चावलों से रोटी, पायसम, इडली और तरह तरह की रेसिपीज को बनाया जाता है। ये अनपॉलिश्ड चावल होते हैं। लाल चावल का टेस्ट थोड़ा अखरोट जैसा होता है। इन लाल चावलों से बना सूप पीने से पेट भरने वाली फीलिंग आ जाती है, इसलिए सुबह के नाश्ते के समय इसका सूप आप जरूर पीजिए और दिन की शुरुआत एक हेल्दी स्टाइल से कीजिए। चलिए अब हम इसकी रेसिपी को सुनते हैं। लाल चावल मींस व्रीही का सूप बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स। लाल चावल लगभग एक मुट्ठी मींस अप्रोक्सीमेटली 4 चम्मच, प्याज एक मीडियम साइज अप्रोक्सीमेटली 50 ग्राम, गाजर एक छोटा सा ये भी 50 ग्राम, बीटरूट 50 ग्राम, पानी 4 बड़े कप, नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं लगभग एक चुटकी नमक ले रही हूँ, देसी घी 1 चम्मच, बारीक कटा हुआ हरा धनिया 1 चम्मच, और मेन इंग्रेडिएंट ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले हम थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम चावलों को धो लेंगे, फिर हम बीटरूट का छिलका हटाकर उसके टुकड़े करेंगे। इसी तरह से हमें प्याज को भी काटना है। उसके बाद हम गाजर को भी धोकर उसके टुकड़े कर लेंगे। लाल चावल का सूप बनाने की तैयारी तो हमने कर ली, लेकिन इतना काम करके मैं तो थक गई भाई साहब। आई नीड अ ब्रेक।
1: Is that clear?
2: Yes, sir.

0: हो रहा है?
1: सॉरी सर।
0: जंग में गोलियां चलेंगी तुम्हारी, सॉरी नहीं। क्या हो रहा है?
1: सॉरी सर।
0: जंग में गोलियां चलेंगी तुम्हारी, सॉरी नहीं।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हमें लेना है मोटे बेस वाला एक बर्तन। उस बर्तन में हम डालेंगे गाजर, बीटरूट और प्याज। फिर हम उसमें डालेंगे लाल चावल और उसके साथ 4 बड़े कप भर के पानी। इन सारी चीजों को हमें अच्छे से पका लेना है। जब तक ये सारी चीजें उबलकर 1/4 ना बन जाए तब तक हम इसे उबालेंगे। हमें एक बड़ा कप भर जाए इतनी क्वांटिटी वाला इसका सूप बना लेना है। वैसे इसे लो फ्लेम पर पकाना ज्यादा अच्छा है, या फिर आप इसे सीधे प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं। लो फ्लेम पर पकाने से इसकी छींटे थोड़ी कम उड़ेंगी। इसे पकाते समय आप चाहे तो नमक ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज सूप को सर्व करते समय आप नमक डालिए। जब तक ये सूप पककर 1/4 ना बन जाए तब तक इसे पकने दीजिए। फिर आप गैस को बंद कीजिए। उसके बाद हमें इसे छानना है, मींस सॉलिड और लिक्विड पार्ट को सेपरेट करना है। उसके बाद हम लेंगे एक सुंदर सा सर्विंग बोल। उसमें बड़े प्यार से हम डालेंगे लाल चावल का सूप। जरा सुनिए तो, थोड़ा रुकिए तो, भाई इतनी भी क्या बेकरारी। इसका डेकोरेशन वाला पार्ट अभी बाकी है। अब इस सूप में हम डालेंगे घी और इसकी सुंदरता को निखारने के लिए हम उस पर डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। क्या बात, डार्क रेड कलर के सूप पर कोतमीर की हरियाली, आहा, जैसे उगते सूरज की लाली और साथ में प्रकृति की खुशहाली। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमारा लाल चावल का सूप अब हो गया है तैयार और इसे टेस्ट करने के लिए हमारे प्यारे ऑडियंस जी हो गए हैं कितने बेकरार। तो भाई देर किस बात की, झटपट लाल चावल का ये हेल्दी सूप बनाइए और अपनों के साथ मिल बांट कर इस टेस्टी सूप का लुत्फ बड़े मजे से उठाइए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। आप चाहे तो इस लाल चावल वाले सूप के साथ रोस्टेड पापड़ भी परोस सकते हैं। इस लाल चावल वाले सूप में मौजूद गाजर और बीटरूट से हमारी हीमोग्लोबिन की लेवल बढ़ती है और प्याज से हमें मिलता है फॉस्फरस। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी। इस लाल चावल की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है हेल्दी वाला सूप। बारिश के मौसम में खिल गई धूप, लाल चावल से बनाइए हेल्दी वाला सूप। हेल्दी वाला सूप पीकर खिल जाएगा रूप। आप बनाकर तो देखिए जनाब, सगळ्यांनाच आवडणार खूप। इन चावलों का रंग है लाल, इसे बनाकर सजाइए अपने भोजन का थाल। लाल चावल संग डाला बीटरूट, अच्छी सेहत बनाकर आप भी बनिए क्यूट। बीटरूट के साथ आ गया गाजर, हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाला इस सूप में है सागर। इसे टेस्टी बनाने डाला है प्याज। अब बना ही दीजिए सूप, कल नहीं आज। गर्मा गर्म सूप में एक चम्मच घी, इसे पीते ही फ्रेशनेस ने दस्तक दी। चाहो तो डालो इसमें थोड़ा सॉल्ट, देसीपन अपनाना क्यों लगे फॉल्ट। व्रीही है इसका संस्कृत में नाम, सुनिए आचार्य 90 एफएम सुबह दोपहर और शाम। सूप का जायका बढ़ाने आप पापड़ को कीजिए रोस्ट, टेस्टी लगेगा खाना जब साथ होंगे हमारे दोस्त। ऑडियंस संग दोस्ती निभाने वाला वादा, आरजे भारतीय सीमा कभी ना छोड़ेगी आधा। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमारी फर्स्ट रेसिपी तो बन गई, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। भाई सूप के साथ अगर क्रिस्पी पकोड़ा भी हो तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। ऐसा पकोड़ा जो डीप फ्राई किए बगैर बना हो। वैसे बारिश के मौसम में फिलहाल स्वीट कॉर्न्स तो आसानी से मिल ही जाते हैं। इन्हें भूनकर या बॉईल करके खाना कॉमन सी बात है, लेकिन आचार्य 90 एफएम के हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए इन स्वीट कॉर्न से हम बनाएंगे क्रिस्पी कॉर्न पकौड़ा। और इसे डीप फ्राई करने के बदले हम अप्पम पात्र में पकाने वाले हैं। तो जनाब तैयार हो जाइए हमारी अगली रेसिपी के लिए, जिसे खाकर हम और हमारे अपने एकदम खुश होने वाले हैं। क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: बॉइल्ड स्वीट कॉर्न के दाने 2 कटोरी, आइदर येल्लो और व्हाइट, प्याज 1, बेसन 1/2 कटोरी, चावल का आटा 2 बड़े चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, चाट मसाला 1/2 चम्मच, हींग 1 चुटकी, कोथमीर 4-5 चम्मच, करी पत्ता 5-6, नमक स्वाद के अनुसार। यहाँ पर मैं लगभग 1 छोटा चम्मच भर के नमक ले रही हूँ। तेल आवश्यकता के अनुसार। क्रिस्पी कॉर्न पकौड़ा बनाने से पहले हम थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले प्याज को हम पतले टुकड़ों में काट लेंगे, फिर करी पत्ता को धोकर उसके भी बारीक टुकड़े कर लेंगे। आप चाहे तो करी पत्ता की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए, इससे इसका टेस्ट और ज्यादा निखर आएगा। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी, स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। ब्रेक पर जाने से पहले हमने क्रिस्पी कॉर्न पकौड़ा बनाने की थोड़ी तैयारी कर ली थी। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे पहले हम लेंगे मिक्सर का एक जार, उसमें हम डालेंगे बॉइल्ड स्वीट कॉर्न्स के दाने। हमें उन स्वीट कॉर्न्स के दानों को बिना पानी डाले पीसना है। यहाँ पर आप एक बात का खास ध्यान रखिए, हमें स्वीट कॉर्न को दरदरा पीसना है, इसका फाइन पेस्ट हमें बिल्कुल नहीं बनाना है। फिर इस दरदरे से स्वीट कॉर्न में हम डालेंगे प्याज, उसके बाद हम डालेंगे बेसन और चावल का आटा। इसको एक चम्मच की मदद से हम मिक्स करेंगे। फिर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके साथ हम ऐड करेंगे हल्दी, मिर्ची पाउडर, चाट मसाला और थोड़ा सा हींग। इसे भी हमें अच्छे से मिला लेना है। इन सब चीजों के साथ हम डालेंगे करी पत्ता और स्वाद के अनुसार नमक। इस मिश्रण में हमें पानी को नहीं मिलाना है। हमने स्वीट कॉर्न को पहले ही बॉईल किया था, मींस उसमें पानी ऑलरेडी है, और प्याज डालने से उस मिश्रण का मॉइस्चर थोड़ा और बढ़ जाएगा। फाइनली हम डालेंगे बारीक कटी हुई कोथमीर। इन सब चीजों को हम बड़े प्यार से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस मिश्रण से पकोड़े बना लेते हैं। ऑडियंस जी, आपको याद तो होगा मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हम पकोड़ों को फ्राई नहीं करने वाले हैं। इन्हें पकाने के लिए हम यूज करेंगे अप्पम पात्र। सबसे पहले हम अप्पम पात्र को गैस पर गर्म करेंगे। आप चाहे तो नॉन स्टिक अप्पम पात्र को यूज कर सकते हैं। फिर उसके हर खांचे में हम डालेंगे लगभग एक चम्मच तेल। इस तेल को हमें हर खांचे में अच्छे से फैलाना है। फिर चम्मच की मदद से हर खांचे में हम डालेंगे कॉर्न पकोड़ा वाला तैयार मिश्रण। इसे धीमी आंच पर लगभग 10 से 15 मिनट के लिए हमें पका लेना है। 10-15 मिनट के बाद एक चम्मच की मदद से उन पकोड़ों को हम पलट देंगे। भाई वाह, एक चम्मच तेल में पकोड़े पक गए, क्या बात। उन पकोड़ों को पलटने के बाद हम आधा चम्मच तेल और ऐड करेंगे। वैसे ये स्टेप ऑप्शनल है। अगर खांचे में तेल ऑलरेडी दिख रहा है तो और तेल डालने की जरूरत नहीं है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमें दूसरे साइड से भी उन पकोड़ों को पकाना है, इसलिए इस प्रोसेस में लगभग 5 मिनट और लगेंगे। यहाँ पर मैं आपको टिप देना चाहती हूँ, ये पकोड़े बनाते समय हम गैस की फ्लेम को लो रख रहे हैं। हाई फ्लेम पर पकने से हमारे कॉर्न पकोड़े ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह सकते हैं, इसलिए बी केयरफुल। अब हमारे गर्मा गर्म और क्रिस्पी कॉर्न पकोड़े हो गए हैं तैयार और हमारे प्यारे ऑडियंस जी हो रहे हैं एकदम बेकरार। लेकिन लेकिन लेकिन थोड़ा रुकिए तो, जरा सुनिए तो भाई, इतनी भी क्या बेकरारी। इसका डेकोरेशन करना अभी बाकी है। अब हम लेंगे एक सुंदर सी प्लेट। उस प्लेट में हम रखेंगे केले का पत्ता। उस केले के पत्ते पर हम रखेंगे तैयार क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा। इसकी रंगत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए हम उस पर टमेटो सॉस को थोड़ी मात्रा में डालेंगे। एक चम्मच की मदद से आप टमेटो सॉस की पतली लाइनें बना सकते हैं। ऐसा करने से इसको प्रोफेशनल वाला लुक मिलेगा। आप चाहें तो इसके साथ ताजे पुदीना की चटनी को भी सर्व कर सकते हैं। भाई बारिश के मौसम में ऐसी चटपटी और होममेड चीजें बननी ही चाहिए, हफ्ते में कम से कम एक बार। इस तैयार क्रिस्पी कॉर्न पकौड़ा को आप अपने हाथों से एकदम नजाकत से उठाइए, अपनी उंगलियों से उसका टेक्सचर फील कीजिए, फिर उसके अरोमा को महसूस कीजिए। भाई वाह, उसके बाद एकदम तसल्ली से क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा को अपने मुंह में स्वाहा कीजिए।
आहा, क्या बात भाई, मजा आ गया। क्रंची और क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा मुंह में डालते ही हमारे सारे टेस्ट बर्ड्स एकदम खुश हो जाएंगे। फिर बिना इधर उधर ध्यान दिए एक और क्रिस्पी पकोड़ा अपने मुंह में फिर से डालना है। भाई छोड़ो ये डाइटिंग वगैरह, अपना देसी खाना तो सीजन स्पेशल होता है, थोड़ा खाने से आपकी डाइटिंग पे कुछ असर नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट आपका मन एकदम खुश ही हो जाएगा। यकीन ना आए तो इसे एक बार बनाकर तो देखिए जनाब, इसे खाकर आप बारिश को एंजॉय करेंगे। इस क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा। आसमान में बजाया बिजली ने हॉर्न, पकोड़ा में डाला हमने स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न के संग डाला चने का आटा, पकोड़ा खाकर मत देखिए आप वजन काटा, बारिश के मौसम को किया सेलिब्रेट, अप्पम पात्र में पकोड़ा हुआ जनरेट, चावल के आटे से पकोड़ा हुआ क्रिस्पी, थोड़ा सा तेल खाना नहीं बिल्कुल भी रिस्की, डेकोरेशन के लिए डाला थोड़ा सॉस, अपनापन जताने में नहीं है लॉस। चलिए अब हम सुनते हैं एक क्विक रीकैप। आज सबसे पहले हमने बनाया एक हेल्दी सूप। लाल चावल, प्याज, गाजर, बीट रूट, इन चीजों को हमने उबाला, फिर उसे छानकर उसमें नमक और घी को भी डाला। इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हमने उस पर कोथमीर डाली। इस प्रकार हमारा लाल चावल मींस व्रीही का सूप तैयार हो गया। फिर हमने बनाया बारिश सीजन स्पेशल एक पकौड़ा। बॉइल्ड स्वीट कॉर्न्स, बेसन, चावल का आटा और कुछ मसाले डालकर हमने पकौड़ा का बैटर बनाया। फिर अपम पात्र में एकदम कम तेल में हमने लो फ्लेम पर इसे पकाया। इस प्रकार बारिश के मौसम को हमने हमारे आचार्य 90FM के प्यारे ऑडियंस के साथ एकदम टेस्टी और हेल्दी स्टाइल से सेलिब्रेट किया। ऑडियंस जी, किया के नहीं जी, बिल्कुल किया। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसे लगा ये हमें जरूर बताइए, और अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो वो भी हमें बताइए। लेकिन उसके पहले आपके फेवरेट आचार्य 90FM चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए मायने रखता है। चलिए अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का, वापस मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं एकदम पक्का वादा। तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिए। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 एफएम। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज शब्बीर, स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। आज की कहानी हमारी ट्रेकिंग वाली। हम में से कई सारे लोग ट्रेक पर जाते हैं, नए नए एक्सपीरियंस लेकर आते हैं बहुत सारे एडवेंचर्स के साथ। तो यही कहानी है एक नए एडवेंचर की, एक नए एक्सपीरियंस की। तो चलिए सुनते हैं सात अनजान मुसाफिर। जिंदगी के कुछ सफर ऐसे होते हैं जो आप प्लान करते हो बिल्कुल वैसे नहीं होते, और कुछ सफर बिल्कुल प्लान की तरह होता है। सितंबर का महीना था, मुंबई अपनी यूजुअल स्पीड में भाग रही थी। लोकल ट्रेन्स पैक्ड, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में डेडलाइंस, रोड्स पर ट्रैफिक, और इन सब के बीच सात लोग थे जो अपनी बोरिंग लाइफ से कुछ वक्त के लिए भागना चाहते थे। उन्होंने एक ट्रेक ग्रुप में रजिस्ट्रेशन किया था। ट्रेक का नाम था सीक्रेट वैली, लोकेशन सीक्रेट, रूट सीक्रेट, और ऑर्गेनाइजर ने सिर्फ एक लाइन लिखी थी, एडवेंचर गारंटीड। सैटरडे सुबह 5 बजे मुंबई सेंट्रल के बाहर सब पहली बार मिले। सब एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर थे। पहले पहुंचा 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऑफिस लैपटॉप और कोडिंग से भरी जिंदगी। उसके बाद रिया आई, शोल्डर पर कैमरा, फेस पर कॉन्फिडेंस, फोटोग्राफी उसका पैशन था। धीरे धीरे बाकी मेंबर्स भी आ गए, आरुष, मीरा, देव, सना और हाँ यश भी। सब ने एक दूसरे को ऑकवर्ड स्माइल दी। तो हम ही हैं सीक्रेट वैली वाले, देव ने पूछा। सब हंस पड़े, आइस ब्रेक हो गई। और कुछ ही देर में ट्रैवलर वैन उन्हें लेकर मुंबई से दूर निकल पड़ी। 3 घंटे तक गाड़ी पहाड़ों और घने लेकर मुंबई से दूर निकल पड़ी 3 घंटे तक गाड़ी पहाड़ों और घने जंगलों से बीच गुजरती रही। गाने चल रहे थे, जोक्स चल रहे थे, और स्ट्रेंजेस धीरे धीरे दोस्त बन रहे थे। कबीर और रिया की बातें सबसे ज्यादा हो रही थी, फोटोग्राफी, ट्रैवलिंग, लाइफ, ड्रीम्स। पता नहीं चला कि कब 3 घंटे गुजर गए। गाड़ी फाइनली एक छोटे से गांव में रुक गई। विलेज इतना रिमोट था कि मोबाइल नेटवर्क लगभग गायब हो गया था। वहां एक बूढ़ा आदमी उनका इंतजार कर रहा था, सफेद दाढ़ी, पतला शरीर और अजीब सी सीरियस आंखें। मैं बाप उराऊं, गाइड। उसने सबको देखा, फिर धीरे से बोला, जो बोलू वही करना। देव हंस दिया, लगता है डेंजरस ट्रैक है। बापूराव ने जवाब दिया,

जंगल में शॉर्टकट मत लेना, समझे? उस वक्त किसी ने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया, लेकिन शाम तक सबको समझ आने वाला था कि वो बार बार शॉर्टकट का नाम क्यों ले रहा था। ट्रेक शुरू हुई। नेचर ब्रेथ टेकिंग थी। हर तरफ ग्रीनरी, क्लाउड्स, वाटरफॉल्स, बर्ड साउंड्स, सब एंजॉय कर रहे थे। रिया हर 10 मिनट में फोटो क्लिक कर रही थी। तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। गाइस, सब रुक गए। जमीन पर एक पुराना DSLR कैमरा पड़ा था, पूरा डस्टी, जैसे सालों से यहां हो। कबीर ने उठाया, ये यहां क्या कर रहा है? देव क्यूरियोसिटी में था, मेमोरी कार्ड चेक करने लगा। कैमरा डेट था, लेकिन कार्ड बच गया था। देव ने पूछा, इसे कनेक्ट करके देखते हैं। फिर उस कार्ड को कनेक्ट किया, फोटोज ओपन हुई और सब चुप हो गए। फोटोज में एक ट्रेकिंग ग्रुप था, 7 लोग, एग्जैक्टली इसी जंगल में, इसी रूट पर, इसी वैली में। सब स्माइल कर रहे थे, एडवेंचर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन लास्ट फोटो में सबके रोंगटे खड़े हो गए। लास्ट फोटो में सिर्फ एक आदमी था, बाकी 6 लोग गायब थे। डेट लिखी थी September 2019। मीरा ने धीरे से पूछा, ये लोग कौन है? किसी के पास जवाब नहीं था। लंच के दौरान वीक नेटवर्क मिल गया। सना ने गूगल सर्च की और जो रिजल्ट सामने आया उसने सबको शॉक कर दिया। 2019 में इसी एरिया में एक ट्रेकिंग ग्रुप मिसिंग हुआ था। 7 लोग गए थे इस ट्रैक पर, सिर्फ एक वापस आया, बाकी कभी नहीं मिले। न्यूज आर्टिकल में लोकेशन भी सेम थी। सब एक दूसरे को देखने लगे। देव बोला, कोइंसिडेंस है, लेकिन उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं था। बापूराव दूर खड़ा सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर अजीब टेंशन थी। कबीर उसके पास गया, अंकल आपको कुछ पता है क्या वो ग्रुप के बारे में? बापूराव कुछ सेकेंड्स तक चुप रहा, फिर बोला, पुरानी बातें हैं, भूल जाओ और आगे चलो। लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वो किसी से छुपा नहीं। शाम होने में अभी कुछ घंटे बाकी थे और उन्हें नहीं पता था कि असली मुसीबत अब शुरू होने वाली है, क्योंकि आगे रास्ते 2 हिस्सों में बंटने वाले थे, एक सेफ ट्रायल और एक शॉर्टकट। वही शॉर्टकट जिसने सालों पहले 6 लोगों को अपने अंदर समा लिया था। तो दोस्तों, जैसे कि हम सुन रहे थे एक ट्रेकिंग की कहानी, इस ट्रेकिंग की कहानी में कैसे 7 अनजान लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से परेशान बस इसी एक चीज के लिए आए थे कि वो एक नया एक्सपीरियंस देख पाएंगे, एक नया एक्सपीरियंस महसूस कर पाएंगे, एक नई ट्रेकिंग पर जाएंगे, एक नई एनर्जी लाएंगे। लेकिन वहां पर जाने के बाद उनको तो ऐसा कुछ महसूस हुआ जैसे कि उन्हें लगने लगा कि कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गया अब। तो देखते हैं कहानी का अगला हिस्सा एक ब्रेक के बाद। तब तक सुनते रहिए आचार्य 90 FM और अपने मनपसंद गानों।

स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हम सुन रहे थे कहानियों के गुल्लक आचार्य 90 FM पर। जैसे कि आपने देखा कि कैसे ट्रेक अभी आगे जाके और मुश्किल होने वाली थी, तो सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा। दोपहर के लगभग 2 बजे थे। हवा में ठंडी नमी थी, जंगल और गहना होता जा रहा था, रास्ते धीरे धीरे मुश्किल होने लगे थे। कुछ देर बाद सब एक जंक्शन पर पहुंचे। रास्ते दो हिस्सों में डिवाइड हो गए थे, एक वाइट ट्रायल और एक बहुत ही नैरो जंगल पाथ। बापूराव तुरंत बोला, सब लेफ्ट वाले रास्ते से जाएंगे। लेकिन आरुष ने राइट साइड वाले पाथ को देखा, ये शॉर्टकट लग रहा है। बापूराव ने तुरंत मना किया, नहीं। यश हंस पड़ा, गाइड अंकल फिर से शॉर्टकट से डरा रहे हैं क्या? देव भी बोल पड़ा, मैप के हिसाब से तो ये रास्ता भी वैली में ही जा रहा है। बापूराव के चेहरा सीरियस हो गया, मैं 30 साल से यहाँ का गाइड हूँ, कह दिया नहीं तो मतलब नहीं। लेकिन आरुष को यकीन था कि वो सही है। अंकल अननेसेसरी लॉन्ग रूट क्यों? टाइम वेस्ट होगा। ग्रुप में डिस्कशन शुरू हो गई। कबीर और सना गाइड की साइड थे, लेकिन आरुष, देव और यश शॉर्टकट के फेवर में। रिया न्यूट्रल थी और मीरा कंफ्यूज्ड। आखिर प्रेशर में आकर बापूराव मान गया, लेकिन उसने एक बात कही, एक ऐसी बात जो बाद में सबको याद आने वाली थी। उसने धीरे से कहा, जंगल हर बार माफ नहीं करता। शॉर्टकट ऑफिशियली सिर्फ 40 मिनट का था, लेकिन 1 घंटा बीत गया, फिर 1.5 घंटा, फिर 2 घंटे। रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। सबको अजीब लगने लगा। कबीर ने GPS चेक किया, स्क्रीन फ्रीज हो गई, कंपास ऐप भी वियर डायरेक्शन दिखा रहा था। सना ने अपना फोन निकाला, उसमें भी सेम प्रॉब्लम। देव ने मजाक करने की कोशिश की, लगता है जंगल एवेंजर्स लेवल का मैग्नेटिक फील्ड रखता है। किसी ने कहा, नहीं हंसना, बस हो गया। अब टेंशन बढ़ रही थी। बापूराव बार बार आसपास देख रहा था, जैसे वो कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा हो। अचानक वो रुक गया, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या हुआ? कबीर ने पूछा। बापूराव ने धीरे से कहा, हम गलत जगह पे आ गए हैं। सब चुप। मतलब मैं भी नहीं जानता हम कहाँ हैं। एक सेकंड के लिए पूरे जंगल में सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दी। गाइड जो 30 साल से यहां ट्रेक करा रहा था, वो खुद खो गया था। शाम होने लगी थी, क्लाउड्स नीचे उतरने लगे थे, विजिबिलिटी कम होने लगी थी। अब वापस जाना इम्पॉसिबल था। ग्रुप ने एक छोटी सी फ्लैट जगह देखकर कैंप लगाया, टेंट सेट्स हुए, स्मॉल बॉनफायर जलाया। सब नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सबके अंदर फियर था, एक डर था। डिनर के वक्त भी यूजुअल जोक्स गायब थे। रिया ने धीरे से पूछा, बापूराव सच सच बताओ, 2019 में क्या हुआ था? बापूराव कुछ सेकंड्स के लिए चुप हुआ। बॉनफायर की लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं उस ग्रुप का गाइड नहीं था। सब फ्रीज हो गए। मतलब मैं उसी ग्रुप का गाइड था, उन्होंने भी शॉर्टकट ही लिया था। देव की आवाज निकल गई, फिर? बापूराव ने नीचे देखा, 6 लोग कभी नहीं मिले। बॉनफायर के पास साइलेंस छा गया। उस रात लगभग 1 बजे सब अपने टेंट्स में सो रहे थे, तभी क्रंच क्रंच क्रंच किसी के छलने की आवाज आई। कबीर की आंख खुल गई, उसने टेंट से बाहर झांका, कोई नहीं। फिर आवाज आई, इस बार दूसरी साइड से, क्रंच क्रंच क्रंच, जैसे कोई कैंप के पास घूम रहा हो। कबीर ने टॉर्च उठाई और बाहर निकला, उसके पीछे देव भी आ गया। देखा तूने? कबीर ने सिर हिलाया। दोनों ने टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं, सिर्फ पेड़ और डार्कनेस। तभी देव का चेहरा सफेद पड़ गया। कबीर क्या हुआ? उधर देख, लगभग 50 मीटर दूर
पेड़ के पीछे कोई खड़ा था, एक आदमी, बस उसकी परछाई दिख रही थी, मोशनलेस, जैसे वो उन्हें देख रहा हो। कबीर ने टॉर्च पर फोकस की और उसी सेकंड वो आदमी गायब हो गया, बस गायब, जैसे कभी था ही नहीं। फिर सुबह हुई। सुबह सबने डिसाइड किया कि बिना रुके जंगल से बाहर निकलना है। टेंशन अपने पीक पर थी। लगभग 2 घंटे बाद उन्हें एक क्लिफ मिला, डेंजरस, बहुत डेंजरस। नीचे हजारों की फिटकी खाई। रास्ता उस क्लिफ के एज से जा रहा था। सब बहुत केयरफुली चल रहे थे। सबसे आगे यश था। उसका कॉन्फिडेंस अब भी कम नहीं हुआ था। गाइस रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। जैसे ही उसने ये बोला, उसके पैर के नीचे पत्थर टूट गया, क्रैक। सब कुछ एक सेकंड में हुआ। यश सीधा नीचे चला गया। उसका शरीर हवा में लटक गया। नीचे सिर्फ मौत, हजारों फीट की खाई। उसका हाथ एक ट्री रूट में अटक गया, बस वही उसे जिंदा रखे हुए था। यश जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, मुझे बचाओ। उसकी आवाज कांप रही थी। नीचे देखते ही उसका चेहरा सफेद हो गया। अगर ग्रिप छूट जाती तो बॉडी भी नहीं मिलती। रिया रो पड़ी। मीरा पैनिक में आ गई। सना चिल्लाई, कोई रोप निकालो। कबीर और आरुष तुरंत एक्शन में आए। उन्होंने इमरजेंसी रोप निकाली, लेकिन प्रॉब्लम थी, रूट कभी भी टूट सकती थी। यश की ग्रिप स्लिप हो रही थी, उसके हाथ से खून निकलने लगा था। मैं गिर जाऊंगा, मुझे बचा लो। उसकी आंखों में वो डर था जो सिर्फ मौत को सामने देख रहा था। कबीर क्लिफ की एज तक गया। सबने उसे पकड़ा। उसने रोप यश की तरफ फेंकी। पहली बार मिस, दूसरी बार मिस, तीसरी बार वो रोप यश ने पकड़ ली। लेकिन तभी जिस रूट को पकड़कर वो लटका था, वो क्रैक करने लगी। कबीर, रूट टूट गई और यश नीचे गिरने लगा। लेकिन उसी सेकंड रोप टाइट हुई। कबीर और आरुष पूरी ताकत लगाकर रोप खींच रहे थे। उनके हाथ जल रहे थे, मसल शेक कर रहे थे। लगभग 15 मिनट के स्ट्रगल के बाद फाइनली यश को ऊपर खींच लिया गया। जैसे वो सेफ ग्राउंड पर आया, वो फूट फूट कर रो पड़ा। कोई कुछ नहीं बोला, सब समझ गए थे। आज उन्होंने मौत को अपनी आंखों के सामने देखा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। सना को कुछ और नजर आया था, कुछ ऐसा जिसने 2019 वाली मिस्ट्री को और भी ज्यादा डेंजरस बना दिया। और उस डिस्कवरी के बाद जंगल के हर राज खुलना शुरू हो गए थे। यश अभी भी शॉक में था, उसके हाथ कांप रहे थे। कबीर ने उसे पानी दिया। तू ठीक है ना? यश ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया, लेकिन सना की नजर अभी भी क्लिफ के नीचे थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी। कबीर, एक मिनट इधर आओ। कबीर एज पर आया, नीचे देखा और उसका गला सूख गया। लगभग 200 फीट नीचे पेड़ों और पत्थरों के बीच कुछ सफेद सा पड़ा था। पहले तो लगा पत्थर होगा, लेकिन जब रिया ने कैमरे का जूम यूज किया, सबकी सांसें रुक गई। वो एक स्केलेटन था, इंसानी हड्डियों का ढांचा, और उसके पास एक फैडेड ट्रेकिंग बैकपैक। बैग पर पूरी धूल जमी हुई थी, लेकिन एक नाम अब भी पढ़ने लायक था, वीकेंड वंडरर्स। वही नाम जो 2019 वाले मिसिंग ट्रैक के ग्रुप का था। एक सेकंड के लिए सब चुप हो गए। देव ने धीरे से कहा, मतलब उनमें से कोई यहां गिरा था? बापूराव ने आंखें बंद कर दी, जैसे उसकी पुरानी यादें वापस आ गई। तो दोस्तों, जैसे कि हम सुन रहे हैं कि एक वीकेंड वंडरर्स करके ग्रुप था जो इनके पहले उसी ट्रैकिंग पर आया था, और उसमें से सिर्फ एक ही पर्सन मिला था, 6 लोग गायब थे, लेकिन उसमें से दूसरे पर्सन का अब
मानवीय शरीर ढांचा मिला है। ये देखकर इन 7 लोगों का बहुत डर आया है। कहानी का अगला हिस्सा हम सुनेंगे एक ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM कहानियों के उल्लेख।

स्वागत है आपका आचार्य 90 FM में। ब्रेक के बाद शाम होने से पहले ग्रुप एक छोटी सी जगह पर रुक गया। सब आंसर्स चाहते थे। कबीर ने सीधे पूछा, बापूराव आप सच बताओ। बापूराव ने कुछ देर तक बोनफायर की आग को देखा और फिर बोला, 2019 में भी एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था। सब ध्यान से सुनने लगे। सात लोग थे, यंग थे, एक्साइटेड थे, एडवेंचर के लिए पागल थे, बिल्कुल तुम लोगों के जैसे। उसकी आवाज भर गई। मैं गाइड था। मैं उन्हें शॉर्टकट लेने से रोकता रहा, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। जंगल में हवा चल रही थी और बापूराव अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ उतार रहा था। हम रास्ता भटक गए थे। दो दिन जंगल में घूमते रहे। एक एक करके लोग गायब होने लगे। मीरा ने पूछा, मतलब? बापूराव ने धीरे से कहा, पता नहीं, बस लोग गायब हो रहे थे, जैसे जंगल उन्हें निगल लिया हो। सबके शरीर ठंड पड़ गए थे। उस रात मौसम अचानक से खराब होने लगा। बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और तेज हवा चलने लगी। बापूराव चिल्लाया, हमें शेल्टर ढूंढना होगा। ग्रुप ने टॉर्च निकाली। लगभग आधे घंटे बाद उनको एक केव मिली। बहुत पुरानी केव, अंधेरी और अजीब सी ठंडी। सब अंदर चले गए। बारिश बाहर टूट कर गिर रही थी। देव ने फ्लैश लाइट घुमाई और फिर वो फ्रीज हो गया। गाइस, सब उसकी तरफ देखा। केव के कोने में तीन पुराने बैकपैक्स पड़े थे, धूल से भरे हुए, और उसके पास एक रस्टेड टॉर्च और एक डायरी। सबके दिल की धड़कन बढ़ गई। रिया ने डायरी उठाई। कवर पे नाम लिखा था अमन वर्मा, वही मिसिंग ग्रुप का मेंबर। रिया ने डायरी खोली। पेज गीले और पुराने थे, लेकिन कुछ लिखा हुआ भी था जिसे पढ़ा जा सकता था। उसने जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। डे वन, हम शॉर्टकट में आ गए हैं। गाइड टेंशन में है, पर सब ठीक लग रहा है। डे टू, GPS काम नहीं कर रहा, हम लॉस्ट हो गए, सब नर्वस है। डे थ्री, कल रात किसी ने फुटस्टेप सुनी। हमने सोचा जानवर होगा, लेकिन फुटप्रिंट्स इंसान के थे। सब एक दूसरे को देखने लगे। सेम चीज उनके साथ भी हो रही थी। रिया ने अगला पेज खोला। आज रोहित गायब हो गया है। सुबह उसका टेंट खाली मिला। हमने हर जगह ढूंढा, कुछ नहीं मिला। सना का गला सूख गया। मेरा डायरी पकड़ने वाले हाथ को देख रही थी। उसमें हल्का सा कांप था। रिया ने अगला पेज खोला। हम सबको लगता है कि कोई हमें देख रहा है। रात को पेड़ों के बीच एक आदमी दिखता है। जब पास जाते हैं तो गायब हो जाता है। देव ने तुरंत कबीर की तरफ देखा। पेड़ के पीछे वाला आदमी? कबीर ने धीरे से हमें सर हिलाया। डायरी के लास्ट पेज सबसे अजीब था। उस पर लिखा था, अगर किसी को ये डायरी मिले, शॉर्टकट मत लेना, और अगर पेड़ों के बीच वो आदमी दिखे तो उसके पीछे मत जाना, वो तुम्हें बाहर नहीं जाने देगा और अंदर ले जाएगा। उसके बाद सेंटेंस अधूरा था। पेज पर खून जैसा लगा था और वो डायरी वहीं खत्म हो गई। उसी वक्त केव के बाहर से आवाज आई, क्रंच क्रंच क्रंच, जैसे कोई गीली मिट्टी पर चल रहा हो। सब फ्रीज हो गए। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन ये आवाज अलग थी। बहुत पास, बहुत ही पास। क्रंच क्रंच क्रंच, जैसे कोई केव के एंट्रेंस के बाहर खड़ा हो और उनका इंतजार कर रहा हो। रिया ने फ्लैशलाइट एंट्रेंस की तरफ घुमाई और जो उसने देखा, उसे उसके हाथ से टॉर्च लगभग गिर गई। एंट्रेंस के बाहर बारिश में एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल मोशनलेस। उसका चेहरा डार्कनेस में छुपा हुआ था और वो सीधा केव के अंदर देख रहा था उसकी तरफ। और फिर बिजली चमकी। एक सेकेंड के लिए उसका चेहरा दिख गया और बापूराव की चीख निकल गई, क्या नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्योंकि जिस चेहरे को उसने देखा वो 2019 में गायब हुए ट्रेकर में से एक था। एक ऐसा आदमी जिसे मरे हुए 7 साल हो चुके थे। केव के अंदर मौत जैसी खामोशी थी। सबकी नजरें एंट्रेंस पर टिकी हुई थी। बारिश जोर जोर से हो रही थी, हवा चीख रही थी, और एंट्रेंस के बाहर वही आदमी खड़ा था, बिल्कुल बिना हिले, बिल्कुल बिना कुछ बोले, जैसे वो उन्हें देख रहा हो।
बापूराव के हाथ कांप रहे थे, उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। कबीर, वो रोहित है, 2019 वाला रोहित। मीरा का गला सूख गया। मतलब वो मर चुका है। उसी वक्त बिजली फिर चमकी। सब एंट्रेंस की तरफ देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस बारिश और अंधेरा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुबह होने का इंतजार करना इम्पॉसिबल था। सबने डिसाइड किया कि बारिश कम होते ही निकलना होगा, लेकिन नेचर के अपने कुछ और प्लान्स थे। लगभग रात के 3 बजे जमीन हिलने लगी। पहले हल्का वाइब्रेशन, फिर जोर से क्रैक, केव के बाहर से पत्थर गिरने की आवाज आई, लैंडस्लाइड, सना चिल्लाई। सब अपने सामान उठाकर भागने लगे। केव के बाहर आते ही उन्होंने देखा पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट रहा था। पत्थर पेड़ों को कुचल रहे थे, मिट्टी का समंदर नीचे आ रहा था। सब जान बचाकर दौड़े और उस भागदड़ में ग्रुप अलग हो गए। टीम 1 कबीर, रिया, सना। टीम 2 आरुष, देव, मीरा, यश और बाबूराव। सब जब बारिश रुकी, दोनों टीमें एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो चुकी थी। कबीर की टीम घंटों तक भटकती रही, तभी उन्हें एक पुरानी वॉच टावर जैसी स्ट्रक्चर दिखी, शायद ब्रिटिश टाइम की थी, हाफ ब्रोकन। अंदर कुछ पुराने रिकॉर्ड्स पड़े थे। रिया ने डॉक्यूमेंट्स खोलना शुरू किए और फिर एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग मिली, डेट सितंबर 2019, हेडलाइंस, मिसिंग ट्रेकिंग ग्रुप, मिस्ट्री डिपिंट्स। नीचे एक फोटो थी, 7 ट्रेकर्स और उनके बीच रोहित, वही आदमी। लेकिन आर्टिकल में एक शॉकिंग बात लिखी थी, रोहित कभी ऑफिशियली डेट डिक्लेयर नहीं हुआ था, उसकी बॉडी कभी मिली ही नहीं थी। तभी रिया को टावर के वॉल पर कुछ लिखा हुआ नजर आया, ओल्ड चारकोल राइटिंग, शायद किसी ने सालों पहले लिखा था। उस पर लिखा था, जंगल से बाहर का रास्ता वो दिखाता है, लेकिन सिर्फ उनको जो एक साथ रहते हैं। कबीर ने धीरे से कहा, या तो रोहित हमें बचाने की कोशिश कर रहा है या फिर हमें ट्रैप कर रहा है। उधर आरुष की टीम और भी ज्यादा बुरी सिचुएशन में थी। खाना खत्म हो चुका था, पानी भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था और यश मेंटली ब्रोकन था। शाम तक उन्हें फिर वही आदमी दिखा, पेड़ों के पीछे, वही कपड़े, वही चेहरा, वही साइलेंस। इस बार यश उसके पीछे भागने लगा। रुको, देव चिल्लाया, लेकिन यश नहीं रुका। अचानक वो आदमी जंगल के अंदर गायब हो गया और यश भी। सुबह उसके पीछे दौड़े, 5 मिनट बाद यश मिला, एक क्लिफ के बिल्कुल एज पर। बस एक कदम और सीधे मौत। यश रो रहा था, मुझे लगा वो मुझे बुला रहा है, जैसे कोई हेल्प मांग रहा हो। सबको डायरी की लास्ट लाइन याद आ गई, उसके पीछे मत जाना। 2 दिन हो चुके थे, सब थक चुके थे, होप ऑलमोस्ट खत्म हो रही थी। तभी दोनों टीम्स को एक ही जगह एक ही चीज मिली, पत्थरों का बना हुआ एक एरो, डायरेक्शन दिखाता हुआ। कबीर की टीम ने भी देखा, आरुष की टीम ने भी देखा और दोनों एरोस के सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे थे। सबने डिसाइड किया कि अब वो एरो को फॉलो करके ही जाएंगे। लगभग 4 घंटे चलने के बाद दोनों टीम्स फाइनली एक दूसरे से मिल गई। सब इमोशनल हो गए, किसी ने किसी को हक किया, किसी ने किसी के आंखों में आंसू देखे। अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव था जंगल से निकलना। एरो फॉलो करते गए। शाम के वक्त उन्हें कुछ दिखाई दिया, दूर, बहुत दूर, एक रोड, एक्चुअल रोड, सिविलाइजेशन, लाइफ, सेफ्टी। सब बाहर आने लगे और 10 मिनट बाद वो सब जंगल से बाहर आ चुके थे। सब सेफ थे, रेस्क्यू टीम मिल गई, हॉस्पिटल चेकअप हुआ, मीडिया ने क्वेश्चंस पूछे, लेकिन किसी ने पूरी कहानी नहीं बताई। कौन मानता कि जंगल में उन्हें एक ऐसा आदमी देखा जो शायद सालों पहले गायब हो चुका था। 3 दिन बाद मुंबई में लाइफ नॉर्मल होने लगी। कबीर ऑफिस में था, तभी उसके लैपटॉप पर एक ईमेल आई, अननोन सेंडर, सब्जेक्ट था थैंक यू। कबीर ने मेल खोला, अंदर एक फोटो थी, ग्रुप फोटो, जंगल वाली। सब 7 लोग खड़े थे स्माइल करते हुए, लेकिन कबीर का दिल रुक गया। फोटो में 8 लोग थे, 7 ट्रेकर्स और उनके पीछे रोहित, वही रोहित, 2019 वाला ट्रेकर। फोटो के नीचे एक लाइन लिखी थी, इस बार सब घर पहुंच गए। कबीर का हाथ कांप गया, उसने सेंडर्स की डिटेल चेक की, ईमेल आईडी एग्जिस्ट नहीं करती थी, जैसे कभी बनी ही नहीं।
उसने फोटो जूम की और उस वक्त उसने कुछ देखा, कुछ ऐसा जो उसकी रीढ़ की हड्डी ठंड कर गई। रोहित कैमरे की तरफ नहीं देख रहा था, वो सीधा कबीर की तरफ देख रहा था और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। कुछ महीने बाद बापूराव फिर से उस जंगल में गया अकेले। उसने उस जगह पर फूल रखे जहां 2019 वाले ट्रेकर्स लॉस्ट हुए थे। वापस मुड़ते वक्त उसने दूर पेड़ों के बीच एक आदमी देखा, वही ट्रेकिंग जैकेट, वही चेहरा, वही स्माइल। बापूराव की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, अब तू भी जा सकता है बेटा। हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और जब उसने दोबारा देखा वहां कोई नहीं था, सिर्फ जंगल था, एक रास्ता जो मैप्स पर आज भी नहीं मिलता। हर जंगल में बहुत भूत नहीं होते, हर जंगल में भूत नहीं होते, कभी कभी कुछ रास्ते सिर्फ अपना अधूरा सफर पूरा करने का इंतजार करता है। तो जैसे कि आप सभी ने सुना कि किस तरीके से एक पूरा ग्रुप गायब हो चुका था, सिर्फ एक बंदा लौटा था और ये सात लोग उसी ट्रैक पर जा गए थे और सातों के सातों वापस आ गए। कभी कभी कुछ एनर्जीज हमें हमारी मुसीबत से बाहर भी निकालती है और कभी कुछ नेगेटिव एनर्जीज हमें मुसीबत में भी डाल देती है। तो ऐसे वक्त हमेशा एडवेंचर के बारे में ना सोचे, अपने दिल के बारे में सोचे, अपनी जिंदगी के बारे में सोचे, क्योंकि कभी कभी एक गलत फैसला आपकी जिंदगी खत्म कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए आचार्य 90 FM, कहानियों के गुल्लक। मस्त मस्त गाने सुनिए, मस्त मस्त रहिए। तब तक के लिए बाय।

0: नमस्ते दर्शकों, आज हम सेलिब्रिटी शो में हमने आमंत्रित किया है नीलम गोयल जी को। नीलम जी नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: आपका स्टूडियो में भी स्वागत है और हमारे आचार्य 90 FM पर स्वागत है और सेलिब्रिटी शो में भी आपका स्वागत है। नीलम जी गोयल एक स्नातक, आगरा यूनिवर्सिटी की स्नातक रही है और कुकिंग क्लासेस, लिखना पढ़ना, समाज सेवा, सोशल वर्क, इन स्लम एरिया इनका कार्य रहा है। काउंसलिंग फॉर कैंसर पेशेंट्स, लोगों से मिलना और मुक्त छंद की कविताएं लिखती है, कृष्ण के भजन गाती है और आखर मुक्ता साहित्यिक पत्रिका में स्वरचित कविताओं का उनका गीत का छपना हुआ है। कहे अनकहे शब्दों का कैनवास इस कहानी संग्रह में स्वयं रचित कहानी मुट्ठी भर सपने का भी छपना हुआ है। साहित्यिक प्रतियोगिताओं में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित 21 सर्वश्रेष्ठ कहानियां पत्रिका को उन्होंने जीता है और पतंजलि योग पीठ से प्रमाणित योग शिक्षिका भी रह चुकी है। बहुत सारे ये सब आप वही पूछना चाहूंगी, इतना सारा आप व्यस्त रहती है, पूरा 24 घंटे भी आपको कम पढ़ते रहेंगे, तो ये सब आप मैनेज कैसे करती है वो शुरू में ही करना?
1: बस मेरे को ना कुछ है कि मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है
0: जी।
1: और इन सब चीजों से मैं बचपन से थोड़ी प्रेरित रही हूँ, क्रिएटिव मैं शुरू से ही थी
0: जी।
1: और ये जो पढ़ने का शौक मुझे लगा वो मेरी मदर से लगा।
0: अच्छा,
1: क्योंकि वो उस समय भी ना ये कौन कौन सी पुस्तिकाएं होती थी, धर्मयोग,
0: हाँ,
1: और ये कादम्बिनी, इस तरह की मतलब हाई लेवल की बुक्स पढ़ती थी। वो 12th पास थी उस समय की,
0: हाँ,
1: लेकिन कोई जॉब नहीं किया था,
0: हाँ,
1: तो बस मुझे वो उनको पढ़ते देखती थी और धीरे धीरे धीरे धीरे मेरे को रीडिंग करने की जो मिल जाता था, धर्मयोग, कोई भी पत्रिका, अखबार, मतलब जो भी मिल गया, हाँ, वो मुझे उसको पढ़ना है।
0: वाह, वेरी नाइस। आपके साहित्य के बारे में हमें बहुत कुछ जानना है, लेकिन आप कविताएं, जैसे हमारी पहली मुलाकात में आप मैं जान गई थी, आप बहुत कथा सुंदर से प्रस्तुत करते हैं, कविताएं भी लिखती हैं, तो जाहिर सी बात है अभी आपने माँ का जिक्र किया तो हमारी सबकी शुरुआत तो माँ से ही होती है, तो माँ के ऊपर आपने जो कविता लिखी है वो हमें सुनाइए प्लीज।
1: सबका धन्यवाद, नमस्ते। माँ केवल एक शब्द ही नहीं है, माँ बल्कि असीम शक्ति, ममता और आस्था का स्वरूप है। जब जीवन में अंधेरा छा जाता है तो माँ का नाम ही एक दीपक बनकर हमारे जीवन में उजाला करता है और रास्ता दिखाता है। आज उसी जगत जननी शक्ति स्वरूपा माँ के चरणों में, श्री चरणों में अपनी भावनाओं का ये छोटा सा भजन अर्पित करने जा रही हूँ, श्रद्धा भक्ति के साथ आप सब जुड़िए
0: जी।
1: पधारो माँ पूजा को, पधारो

0: क्या बात है, वेरी नाइस। जय माता दी। मेरा मन तो गंगा मैया के यहाँ पहुंच गया वाराणसी में, क्योंकि कितनी सुंदर, मतलब हम वो गंगा मैया को माँ कहते पुकार के बुलाते हैं, और जो गंगा आरती का जो विलोभनीय दृश्य हमें अभी आपकी ये कविता में, ये पद में साकार हुआ, वेरी नाइस, वेरी मतलब वेरी टचिंग। अभी शुरू करते हैं कि आपका जो साहित्य प्रवास है, आपने जैसे बोला कि माँ बहुत बुक्स घर में रहते थे, तो आप पढ़ते गए मतलब जो शैक्षणिक जो भी हमारा स्कूल का पढ़ना रहता है वो अलग, और आपको हिंदी में ज़्यादा रुचि है, तो आपने बीए इन हिंदी भी वैसे किया है, तो हिंदी के प्रति लगाव या फिर आस्था, आपको कौन से लेखक पसंद है हिंदी के, उसके बारे में और क्यों पसंद है?
1: मेरे को मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ बहुत पसंद हैं
0: जी,
1: और रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियाँ बहुत पसंद, क्योंकि ये ना हमारे आसपास जो दिखता है उन सबसे जुड़ी हुई है, सामाजिक समस्याएं, स्त्री की समस्याएं, और समाज में जितनी भी व्यभिचार या जितना उत्पीड़न होता है, तो उन सबके ऊपर जो कहानियाँ लिखी है तो मुझे वो बहुत टचिंग भावपूर्ण होती है, और मेरे को ना कहीं गहरे तक, ऐसे ही ना क्या हुआ कभी मैंने कहीं किसी से कुछ सुना, मेरी बड़ी दीदी है तो वो भी साहित्यिक में बहुत
0: अच्छा
1: रुचि रखती हुई है, बहुत ज्यादा
0: अच्छा।
1: तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ मेरे को उसमें, मैं लिखने लगी, लिखते लिखते क्या हुआ, जुहू में रहते थे हम लोग, तो वहाँ कृष्ण मंदिर था वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो मैं सडनली मैंने सोच लिया था कि मैं वहाँ जाके पहले दर्शन करके फिर ही नाश्ता किया करूंगी। वहाँ जाके जब मैं पिन ड्रॉप साइलेंस होकर शांति के साथ जब बैठती थी ना, तो बस भगवान का चेहरा देखती थी, तो उस चेहरे को देखकर मेरे को अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो मैं जब उनको देखती थी ना तो मेरे को रोना आता था।
0: अच्छा।
1: और रोते रोते धीरे धीरे धीरे धीरे वो भाव उत्पन्न होने लगा, और पता लगा मैं तो वहाँ बैठे बैठे मोबाइल में ही उस समय जो आता था उस समय लिखती थी।
0: अच्छा।
1: फिर घर आकर जब उनको सुनाती थी तो सबको बहुत अच्छा लगता था, मुझे भी लगता था ये कैसे लिखा गया, मतलब मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी और ने लिखा है।
0: जी।
1: फिर वो लिखने लगी, फिर धीरे धीरे मैं फिर उस स्पिरिचुअल ग्रुप से जुड़ी।
0: अच्छा।
1: फेसबुक पर अब उसमें जो था मैं अपनी ये रचनाएं डालने लगी, तो मोस्टली मैं तब कृष्णा के लिए ही लिखती थी।
0: अच्छा।
1: लिखते लिखते फिर धीरे धीरे कुछ और भी भाव होने लगा, जैसे मैं कभी गार्डन में गई तो दो तीन लेडीज जैसे बैठी हुई थी वहाँ, तो वो बहुत परेशान, उन्होंने अपनी कुछ स्टोरी बताई, तो मतलब मैं भी सेंट्री हो जाती थी कुछ, मैं भी ना ऐसी हूँ कि जल्दी मेरे भाव को छू जाती है किसी की बातें, तो उन्होंने जब वो सुनाती थी तो मैं, मुझे लगता था कि मुझे इनके लिए कुछ लिखना चाहिए, तो मैं उसी के ऊपर अपने शब्दों में स्टोरी लिखती थी, और वो जो स्टोरी सबको सुनाती थी ना तो सबको अच्छी लगती थी। बस मेरा इंटरेस्ट वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, फिर मैं साहित्यिक ग्रुप से जुड़ी, उसमें अपना आंगना करके मेरा साहित्यिक ग्रुप है।
0: अच्छा।
1: उसमें हम लोग सीखने सिखाने का रखते हैं, जैसे कि दोहा है, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी उसमें, फिर जैसे दोहा है, छंद है, मुक्तक है, कविता तो मैं छंद मुक्ति लिखती हूँ।
0: अच्छा।
1: बस इस तरह से मेरा धीरे धीरे लिखने का शौक बढ़ता चला गया।
0: जी, आपसे ऐसी बातचीत हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM, और आज हमारे सेलिब्रिटी शो में हमारे साथ जुड़ी है नीलम गोयल जी, जो हिंदी की साहित्यिक है, हिंदी की स्नातक है, और आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM ओनली।

0: ब्रेक के बाद आप सभी से जुड़ रहे हैं सेलिब्रिटी शो में। हमारे साथ आज की सेलिब्रिटी है नीलम गोयल मैडम, और जो हमें बहुत कुछ आज कथाएं सुनवाने वाली है, कविताएं सुनवाने वाली है। मैडम आप मतलब हम सब लेडीज हैं, तो हमारी हमें डेली परेशानियां होती है, घर का भी देखना पड़ता है, और जो नौकरी व्यवसाय कर रहे हैं वो भी वहाँ पे मतलब बच्चों का देखना, घर का देखना और ऑफिस का भी काम देखना, दोनों स्तर पर हम लोग काम करते हैं, लेकिन बेटियों को वो स्थान नहीं मिलता जो आज के समाज में मिलना चाहिए, उसकी जरूरत है। और उसके ऊपर जो आप मैंने आपकी सुनी है वो कविता मुझे बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ हमारे आचार्य 90 FM के दर्शकों को भी वो सुनवाए, तो जरूर आपने वो आप बेटी के दर्द दुख को समझती है और उसके बारे में आपने लिखा है, तो वो जरूर हमें सुनवाइए।
1: जी बिल्कुल, ये सच बात है कि हमारे समाज में आज भी बेटियां बहुत कुछ आगे कर रही हैं
0: जी,
1: लेकिन ना फिर भी कहीं ना कहीं उनको उनका दमन होता है
0: जी,
1: कहीं ना कहीं उनको रोका जाता है और वो अपनी इच्छाओं से हर कुछ नहीं कर पाती हैं
0: जी।
1: तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बेटी केवल एक शब्द नहीं है,
0: हाँ।
1: ये एक एहसास है
0: वाह,
1: और एक ऐसा प्यारा रिश्ता है जो जन्म से पहले ही दिलों से जुड़ जाता है। आज मैं उसी अनमोल रिश्ते बेटी पर अपनी भावनाएं प्रस्तुत करती हूँ। बेटी, ईश्वर की सबसे सुंदर रचना, जिसका जिसकी हंसी से घर आंगन में बसंत उतर आता है।
0: क्या बात,
1: उसकी हंसी में ही संसार की रौनक बसती है और जिसकी आंखों में भविष्य के अनगिनत सपनों की किरणें झिलमिलाती हैं। वो केवल किसी घर की लाड़ली ही नहीं है केवल, बल्कि हर समाज की वो आत्मा है, हर संस्कृति की पहचान है। बेटी के रूप में ही संवेदना जन्म लेती है और ममता अपना अर्थ पाती है और भविष्य अपनी दिशा।
0: वाह क्या,
1: आज बेटी दिवस पर हमें ये स्मरण करना है कि बेटी का सम्मान केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि जीवन भर निभाया जाने वाला वो संस्कार है। हर बेटी को पढ़ने का, लिखने का, अपनी इच्छा से उड़ने का, स्वयं को पहचानने का अधिकार है
0: जी।
1: क्योंकि जब एक बेटी आगे बढ़ती है तो एक पूरा युग प्रकाशमान होता है
0: जी। बिल्कुल,
1: आज की बेटी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, विज्ञान में, साहित्य में, खेल में, राजनीति में, पाक कला में, मतलब कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ वो पहुंची नहीं है
0: जी।
1: हर जगह उसने अपनी पहचान बनाई है, उसकी उड़ान आसमानों को छू रही है, परंतु विडम्बना ये है कि कुछ स्थानों पर आज भी बेटी के साथ भेदभाव, अत्याचार और शोषण का सामना उसको करना ही पड़ता है
0: जी।
1: ये सब हमें झकझोरता है, मन को परेशान कर देता है और सोचने के लिए विवश करता है और हमें सजग भी करता है
0: जी।
1: कि कोई भी बेटी अब भय और अन्याय की छाया में ना रहे, बेटी का सम्मान, सुरक्षा, उसकी देखभाल, स्वावलंबन और हमारा नैतिक, सामाजिक, मानवीय दायित्व है कि बेटी आस्था भी है, प्रेरणा भी है, उससे ही धरती की मुस्कान जीवित है
0: जी।
1: इसलिए बेटी केवल उत्सव नहीं, एक चेतना है, एक संकल्प है। बेटी पर कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है जो आपसे साझा करती हूँ। नन्ही सी हंसी में उजियारा बसे
0: जी,
1: हर सपने में उसका सितारा बसे, न रोको उड़ाने, न रोको उड़ाने ये फलक छूले, न रोको उड़ाने ये फलक छूले, हर बेटी में ही तो सारा जहां बसे।
0: वाह,
1: बेटी मुस्कान है, बेटी अरमान है, जीवन की हर राह में वरदान है। आओ प्रण करें आज हम सभी, हर बालिका का सम्मान हमारा मान है।
0: वाह यस, वेरी नाइस। अभी ये कविता तो हम सुन रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कथाएं भी लिखती हैं, तो आपकी कथा कहाँ और कथा और कविता कहाँ कहाँ प्रस्तुत करती हैं?
1: कथाएं और कविता, ये हमारा एक साहित्यिक ग्रुप है, उसमें हाँ, भेजती हूँ, कुछ किताबों में भी छपती हैं। और मैं बहुत पहले जब मैं शादी होकर ही आई थी
0: हाँ,
1: तो वहाँ हम लोग होली का
0: त्योहार
1: मनाते थे
0: जी।
1: होली के बाद हमारे यहाँ 8 दिन तक ये लेडीज को बुलाना और
0: अच्छा,
1: खिलाना पिलाना उत्सव मनाते थे, जिसको जो रुचि होती थी वो आपस में
0: हाँ,
1: शेयर करता था
0: हाँ।
1: तो इसी तरह से एक बार हमने बुलाया हुआ था सबको
0: हाँ,
1: और मैंने उन्हीं लेडीज के ऊपर एक कुछ छोटी सी कहानी
0: अच्छा
1: सुनाई और वो मेरी फिर अमर उजाला अखबार में
0: क्या बात
1: निकली।
0: हाँ।
1: निकली तो फिर लोगों को पता लगा कि आप लिखती भी हो। क्या होता है ना, हम लिखते तो हैं
0: हाँ।
1: लेकिन हमारी जो हमें उत्साह जो मिलता है वो औरों से मिलता है
0: जी,
1: जो पढ़ते हैं
0: हाँ।
1: जब हमारा उत्साह वर्धन होता है ना तो हमारा और इच्छा करती है हाँ शायद हमने कुछ अच्छा लिखा
0: अच्छा लिखा है
1: कुछ और इससे भी अच्छा करके दे। तो बस इसी तरह से धीरे धीरे धीरे धीरे मेरा लिखने का शौक बना। फिर और मैं जिस परिवार में से दूसरे परिवार में गई थी तो वहाँ का माहौल बिल्कुल अपोजिट था। तो वहाँ क्या होता था मतलब बहुत सिंपल बहुत अच्छे लोग हैं हमारे
0: हाँ।
1: वो भी लेकिन जो रहन सहन और जो ख्याल थे वो थोड़े अलग थे
0: जी।
1: मतलब इतना डिफरेंस था कि मेरे को वो लोग बिलायती बहू कहने लगे थे।
0: अच्छा।
1: पर एक समय ऐसा आया कि जब उन्होंने मेरे विचारों को सुनते थे
0: हाँ।
1: मेरी सेवा को देखते थे तो धीरे धीरे मेरी ये उन्होंने लिखी हुई चीजें भी पढ़ते थे तो उनको उन्होंने फिर मतलब इतना मान सम्मान दिया कि जो मेरे बड़े लोग थे ना
0: हाँ।
1: वो भी मेरे को ऐसे इनवाइट करते थे मैं आपको वो किस्से में बता नहीं सकती कि वो सबके बीच में मेरे को किस तरह से खड़ा करके फिर मेरा बताते थे लोगों को।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो इस तरह से मेरा उत्साह वर्धन बहुत हुआ
0: हाँ।
1: फिर मैंने साहित्यिक ग्रुप से जुड़ी तो उसमें लिखना शुरू किया
0: जी।
1: तो एक बार मैंने अपनी फ्रेंड के ऊपर संस्मरण लिखा। जब संस्मरण लिखा तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और बोले ये तो मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं पढ़ रही हूँ तो जैसे मैं सामने रेखा चित्र कर दिया हो ऐसा लग रहा है। तो उससे मैं बहुत प्रेरित हुई उत्साह वर्धन हुआ। फिर उन्होंने एक बोले कि आपको कहानियां लिखनी है
0: जी।
1: मैंने कहा मैंने ऐसी कहानियां नहीं लिखी है
0: हाँ।
1: तो बोलते हैं कि नहीं नहीं आप कोशिश कीजिए आप लिखोगी आप लिख सकते हो
0: जी।
1: फिर मैंने दो कहानियां लिखी जिसमें से एक मेरी पास हुई और उन्होंने इस कहे अनकहे
0: हाँ।
1: शब्दों के कैनवास में
0: अच्छा,
1: छपी
0: छपी हाँ।
1: इससे पहले क्या था ना छोटी छोटी बुक्स में छोटी छोटी उसमें निकल रही
0: हाँ,
1: थी
0: हाँ।
1: एक जैसे ये है
0: आखर लिखता हाँ।
1: इसमें ये वर्ष में तीन निकलती थी
0: अच्छा।
1: तो उसमें एक बार एक कविता निकली एक बार वो मेरी कहानी निकली
0: अच्छा।
1: बस उससे मैं प्रेरित हुई और फिर मैंने लिखना शुरू किया
0: जी। अभी आप सामाजिक कार्य से भी जुड़े हैं उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि आप कैंसर पेशेंट से ज्यादा मतलब उनसे ज्यादा मिलते हैं तो वो सामाजिक कार्य की रुचि आपने कैसे।
1: वो क्या था ना मेरे अंदर ना ये शुरू से सेवा का भाव था।
0: अच्छा।
1: जब मैंने ग्रेजुएशन करके चुकी तो एक महीने की छुट्टी थी
0: जी
1: और शायद मेरी को देखने वाले भी कुछ लोग आने वाले थे घर पर। तो उस बीच मैंने घर में कहा कि अभी तो मुझे शादी नहीं करनी है मेरे को जो है
0: पढ़ना
1: लॉ करना है।
0: अच्छा।
1: मुझे आगे लॉ करना है
0: हाँ।
1: तो सब लोग बोले कि हाँ हाँ हो गया लॉ सब हो गया
0: अच्छा।
1: बस अब क्या और क्या करना है। मैंने कहा मेरे को अच्छा स्कूल में टीचिंग करनी है।
0: अच्छा।
1: तो मैंने कहा ठीक है अब मैंने कहा विदाउट पे करनी है तो
0: हाँ।
1: पास में एक स्कूल था छोटा सा
0: हाँ।
1: और उसमें मैं जाने लगी वन
0: अच्छा।
1: मंथ मैंने पढ़ाया
0: हाँ।
1: उसमें जो था एक बच्चा भी था तो वो धीरे धीरे मुझसे बहुत अटैच हो गया और बोला दीदी मैं आपसे और भी पढ़ना चाहूँ। मैंने कहा ठीक है तुम घर आ जाए करो
0: अच्छा।
1: हाँ। वो घर आने लगा मैंने उसको पढ़ाया
0: हाँ।
1: उसका नंबर्स बहुत अच्छे आए
0: हाँ।
1: कुछ नहीं वो हो गया मेरी शादी भी हो गई 25 साल बाद मेरे पास कॉल आती है उसकी
0: अच्छा
1: कि हेलो दीदी बोल रही है। मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं। मैं राजू बोल रहा हूँ। मैंने कौन राजू
0: हाँ।
1: अरे दीदी आप भूल गई मैं वही राजू हूँ जिसको आपने घर पे बैठ के पढ़ाती थी यार।
0: अच्छा।
1: आज मैं इस पोस्ट पर हूँ आया है नौकरी कर रहा हूँ बेंगलोर में मैं हूँ।
0: क्या बात है
1: मतलब मैं वो पढ़ी थी उस समय खुशी की वजह से
0: हाँ।
1: तो ये मेरे को ना शुरू से था
0: हाँ।

0: इसके बाद फिर मेरी जब शादी हो गई तो एक पास में एक दूध जिनके यहाँ से आता था
1: हाँ।
0: जैन मंदिर के बराबर में वो उनकी दूध का गाय वगैरह रखते थे तो वो जब लेते थे उससे तो उसके एक भाई की ना डेथ हो गई थी, उसके बच्चे थे तो वो परेशान थे और मुझे लगता था शायद अभी इनके घर वाले इन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। तो मैंने उनको बोला मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मेरे दो बच्चे हो चुके थे तब तक कि वो चले जाते हैं, तुम इस बीच आ जाया करो, मैं काम निपटा के 11 बजे करी तुमको टाइम दूंगी।
1: अच्छा,
0: उसको इतना अच्छा पढ़ना आ गया कि उसने 12th पास किया।
1: क्या बात है।
0: और मतलब वो अपनी लाइफ में शादीवादी हो गई, सेट हो गई। तो मुझे ये शुरू से कुछ आदत थी। अब यहाँ जब इन्होंने VRS लिया बैंक से, स्टेट बैंक में मेरे हस्बैंड
1: काम करते थे,
0: तो जब उन्होंने VRS लिया तो सब लोग बोले कि अरे इतने वो ले रहे हैं और आप परेशान हो जाओगी, घर में रह के क्या करोगी, ये सारे दिन चाय बनवाएंगे और कॉफी बनवाएंगे, सारे दिन तुम बिजी रहोगी, परेशान हो जाओ। मैंने कहा जो होगा, मैंने उनको समझा लिया, अगर वो इसमें खुश है VRS लेने में तो मुझे कोई हर्ज नहीं है। तो उन्होंने जब लिया तो यही लगा कि अब हम क्या करें, क्योंकि टाइम एक्सेस में रहता था, सुबह सुबह टिफिन बना के नहीं देना और बच्चे भी बड़े हो गए, अपनी नौकरी में चले गए थे बच्चे। तो ये जो राम मंदिर का ये जब हुआ तो प्रसाद देने कुछ लोग घर पर आए, जब घर पर आए तो हमने उनकी आरती उतारी।
1: अच्छा,
0: आरती उतारी और घर पे बिठा के उनको पानी वानी देने के लिए कहा, तो वो बहुत खुश हुए। RSS के लोग थे
1: जी।
0: जब वो उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद उनका कॉल आया कि ऐसे ऐसे आप लोग उससे जुड़िए। मैंने कहा ठीक है जुड़ेंगे, आप लोग पहले घर पर आओ। ये हमको पता था कि RSS के लोगों को घर पे बुलाना चाहिए
1: जी।
0: तो वो लोग धीरे धीरे हमारे यहाँ आने लगे, कभी लंच पर कभी ब्रेकफास्ट पर
1: जी।
0: उन्होंने कहा, मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा मेरे को ना कुछ करने का मन करता है अभी, मुझे ऐसा लगता है मैं अभी कुछ कर नहीं रही, बेकार हूँ। तो वो बोले ठीक है ना, आप ऐसे ऐसे करके आइए हनुमान टेकड़ी पर साइन कोलीबारा में, वहाँ कैंसर पेशेंट्स का है और आप आइए, वहाँ आइए आपको अच्छा लगेगा, फिर आपको जिम्मेदारी देंगे।
1: ठीक है,
0: वहाँ गए। वहाँ गए तो क्या हुआ, वहाँ पेशेंट्स थे, मैं सबसे मिलने जाती थी। फिर उन्होंने एक रूम का मेरे को चार्ज दे दिया।
1: अच्छा,
0: कि आप इन लोगों से कांटेक्ट में रहिए, देखिए इन पे क्या चीज है, इनको मेंटली सपोर्ट कीजिए। तो हम उनसे जाके कभी कभी उनको भजन सुनाती थी, कभी उनसे बात करती थी, क्योंकि क्या
1: बात करने से भी वो खुल जाते हैं,
0: क्योंकि क्या है ना
1: इमोशनली अच्छे रहते हैं।
0: क्या है ना, पेशेंट्स जो है मुझे लगता है कि वो
1: डिप्रेशन
0: से नहीं जाता, वो सोच कर चला जाता है
1: जी।
0: फिर हम लोग की एनकोलॉजी को लेकर क्लासेस हुई, ट्रेनिंग हुई हमारी, 3-3 दिन की क्लास चलती थी कि उनको साथ हम लोग को कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना है, क्या उनके सामने नहीं कहना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता। कुछ दिन तो क्या हुआ, जब हम घर आते थे ना तो मैं सो नहीं पाती थी,
1: उनका दुख दर्द देख के
0: सो नहीं पाती थी। तो ये भी समझाते थे, उन लोगों ने समझाया, देखो ऐसे सेवा नहीं हो सकती है, आपको यही छोड़कर जाना होगा, यही छोड़कर जाना होगा जो भी देखा है, उनके साथ आप अच्छा एटीट्यूड कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, लेकिन घर जाकर नहीं लेना है, पर आप पढ़ जाओगे क्या फायदा है।
1: बराबर।
0: फिर बस वो धीरे धीरे वहाँ पता लगा हमको, स्लम एरिया में स्कूल्स खोल रखे थे उन लोगों ने, फ्री ये शाला फ्री चला रखी थी स्लम एरिया के बच्चों के लिए। तो वहाँ उन लोगों ने, मैं गई देखने, कभी मैं स्लम एरिया में नहीं गई थी,
1: राइट,
0: लेकिन मतलब मेरे को दिक्कत भी लगती थी, मुंह बंद करके जाती थी कई बार, और कई बार बस कीचड़ नीचे भी होती थी, तो शूज पहन के साड़ी पहनना बंद कर दिया था, टाइट कपड़े पहनना शुरू कर दिया था, गिरे ना कहीं, और वो बिल्कुल ऐसी रेलिंग होती थी कि देखकर लगता था तो कैसे
1: रहते
0: हम लोग इतने बड़े बड़ों में रह के, लगते हैं हमको ये परेशानी, वो लोग कैसे रह रहे हैं। तो धीरे धीरे करके मतलब मैं पर्सनली उन लोगों से इतनी अटैच हो गई, उन लोगों ने फिर मेरे को निरीक्षण बना दिया।
1: अच्छा,
0: 35 शालाओं का निरीक्षण था, तो जो हम लोगों को मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जाते थे। बस इसी तरह से धीरे धीरे करके
1: वो समाज कार्य बढ़ता गया आपका।
0: किशोरी वर्ग शुरू किया फिर हम लोगों ने, जैसे किशोरी बच्चों के लिए 8 वर्ष से और 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, जैसा कि आजकल माहौल चल रहा है तो उनको सेव करना, उनको गाइड करना है,
1: राइट,
0: तो वो भी
1: करते हैं।
0: तो बस सब काम होते थे घर के भी, और बहुत एक्टिव रहती थी, ऐसा नहीं था कि कोई काम छोड़ के जा रही हूँ, काफी सारा काम होता था
1: बराबर,
0: और आके बस आराम,
1: और आप ज्यादा
0: सोते थे, मतलब
1: प्रफुल्लित
0: होता था कि हमने हमारे हाथ से कुछ तो हुआ।
1: तो अभी अंत में आपकी एक सुंदर सी कविता वापस सुनते हैं और ये जो शो का अंत करते हैं, ठीक है?
0: ठीक जी,
1: आप कौन सी कविता पढ़ना चाहोगे?
0: आप बताओ।
1: जिंदगी के बारे में, अभी हम जिंदगी के बारे में इतनी
0: जिंदगी
1: के बारे में सुनते हैं।
0: कर लेगी, छोटा सा है
1: जी,
0: चलेगा।
1: या
0: जिंदगी है तो सब कुछ है, कहते हैं ना
1: जी
0: जिंदगी। इसके ये मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, बहुत छोटी सी, शायद आपको पसंद आए
1: जी। बिल्कुल।
0: जिंदगी तेरे लिए मैं प्यार लाई हूँ, जिंदगी शायद आपको पसंद आए
1: जी। बिल्कुल।
0: जिंदगी तेरे लिए मैं प्यार लाई हूँ, जिंदगी तेरे लिए मैं प्यार लाई हूँ। ये घड़ी, ये धूप, ये दिन, ये रात कल भी आई थी,
1: आज भी आई है।
0: कल भी आई थी और आज भी आई है। किसी को ये सिंहासन देगी और किसी के लिए बेबसी देगी। ये सूरज जो सिर पे चढ़ा है, शाम को पाँव में उतर जाएगा। इसी तरह ये सांस का राही, क्या पता किस पाँव पर रुक जाएगा।
1: क्या बात।
0: इसी तरह ये सांस का राही, क्या पता किस तरह किस पाँव पर रुक जाएगा। गीत गाओ स्नेह का संसार लाई हूँ, जिंदगी मैं तेरे लिए
1: प्यार लाई हूँ। क्या बात।
0: नई आशा, नए सपने, नए संकल्प, मैं बुलंदी का सघन विस्तार लाई हूँ। मैं बुलंदी का सघन विस्तार लाई हूँ। मुस्कराओ आज मैं उपहार लाई हूँ, जिंदगी तेरे लिए
1: मैं प्यार लाई हूँ। क्या बात है। कितना पॉजिटिव अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ, मतलब जिंदगी के ऊपर अपने बहुत अच्छे से लिखा है। और आज हमारे आचार्य 90 FM से आप जुड़े हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप ऐसे ही लिखते रहिए, मिलते रहिए और हमें हमेशा कुछ ना कुछ देते रहिए। थैंक यू सो मच जी।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

आचार्य 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं हमारे प्यारे ऑडियंस? ऑल गुड ना? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं। अर्ज किया है, प्रकृति ने पहना हरे रंग का ड्रेस। सुनिए आचार्य 90 FM और दूर कीजिए स्ट्रेस। अगर करना है ब्राइट अपना फ्यूचर तो जरूर अपनाइए प्रकृति मींस नेचर। आज के शो पर बनेगी एक भाजी। स्वाद का जायका शो पर रेसिपीज को कीजिए हां जी। सुंदर सी साड़ी नाम जिसका पटोला। आज की रेसिपी में इस्तेमाल होगा कंटोला। बारिश के मौसम वाली भाजी ये जंगली। सस्ती सी सब्जी से सेहत बनेगी असली। स्वाद का जायका निभाने का दस्तूर कंटोला की सब्जी है, स्वाद और सेहत से भरपूर। जंक फूड को अब कर दीजिए टाटा। कंटोला की सब्जी में नहीं कोई काटा। काटे वाली हरी सब्जी ये गोल। हेल्थ के साथ टेस्ट का भी निभाएगी रोल। चलिए अब हम आज की फर्स्ट रेसिपी के बारे में बात करते हैं। बारिश के सीजन में हर तरफ हरियाली छा जाती है, जैसे कि जंगल, पहाड़, खेतों की मेंढे और खाली जमीन। हर तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली होती है। किसी मानवीय खेती, कृत्रिम खाद और कीटनाशकों को यूज किए बगैर कुछ जंगली सब्जियां इस समय अपने आप उग जाती है। मुख्य रूप से वर्षा ऋतु की शुरुआत में दिखाई देने वाली ये सब्जियां औषधीय गुण, विटामिन और फाइबर का अच्छा स्रोत है। ये सब्जियां पूरी तरह से ऑर्गेनिक होती है। बारिश के पानी से ये अपने आप पनपती है। आयुर्वेद के अनुसार ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और वात पित्त कफ को संतुलित रखने में हेल्प करती है। वैसे थ्रू आउट द ईयर ये सब्जियां मार्केट में उपलब्ध नहीं होती। मॉनसून के शुरुआती 2-3 महीनों में ही ये मिलती है। इसमें कंटोला मींस करटुली, टाकड़ा मींस तरोटा, भारंगी, फोडुशी मींस जंगली प्याज, कुरडू ऐसे कई नाम शामिल है। आज हम कंटोला की सब्जी हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए बनाने वाले हैं। भाई बारिश का मौसम और अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने का ये मौका हम जरूर मनाएंगे। जोवार बाजरा या चावल की गर्मा गर्म रोटी के साथ आप इस कंटोला की सब्जी को खाकर तो देखिए जनाब, हमारे आदिवासी भाई कैसे इतने फिट रहते हैं ये आपको भी पता चलेगा। झमाझम बरसती बारिश में घर में बनाया हुआ देसी खाना आप खाकर तो देखिए, अपने देश की संस्कृति को आप दोबारा से अपना कर तो देखिए। अपनी मिट्टी से जुड़ी कुछ बातों पर आप गौर फरमा कर तो देखिए। अपनों के साथ अपनापन जताने वाला ये खाना आप खा कर तो देखिए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ ऐसे देसी खाने का स्वाद आपको जरूर पसंद आएगा और आपकी कंफर्ट फूड वाली कॉन्सेप्ट एक अलग दिशा में मुड़ जाएगी। यकीन आए तो हमारे आज के शो पर बनने वाली कंटोला की भाजी को आप जरूर बनाइए। कंटोला की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: कंटोला 1/2 किलो, कांदा मींस प्याज 2, हरी मिर्ची या तो फिर मिर्ची पाउडर स्वाद के अनुसार। यहाँ पर मैं लगभग 1 चम्मच कश्मीरी मिर्ची पाउडर ले रही हूँ। कोतमीर लगभग 2 चम्मच। फिर हमें तड़का लगाने के लिए चाहिए तेल 2-3 चम्मच, राई या सरसों 1 छोटा चम्मच, जीरा 1 चम्मच, हींग
पाव चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच। इसे और टेस्टी बनाने के लिए हमें चाहिए रोस्टेड सिंगदाना पाउडर 2 चम्मच, कद्दूकस किया हुआ ताजा नारियल 2 बड़े चम्मच, ये ऑप्शनल है। नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं लगभग 1 चम्मच नमक ले रही हूँ। और हमें चाहिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली है। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक, ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य नटी एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम कंटोला मींस करटुली की सब्जी की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले हम सारे कंटोले नमक वाले पानी में भिगोकर रखेंगे। ऐसा करने से उसमें से कीड़े वगैरह निकल जाएंगे। लगभग 15 मिनट के बाद इन कंटोलों को साफ पानी से हम धो लेंगे। फिर हमें इनके पतले टुकड़े करने हैं। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। कंटोला काटते समय अगर अंदर से वो लाल रंग वाला निकला तो हम उसे फेंक देंगे। अंदर से लाल वाला कंटोला कड़वा होता है, इसलिए बी केयरफुल। अब हम सुनते हैं आगे की रेसिपी। अगर कंटोले के अंदर का बीज कड़क हो तो आप उसे हटा दीजिए। उसके बाद हम प्याज को भी बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। फिर हम ताजा धनिया पत्ता को भी अच्छे से धोकर काट लेंगे। भाई तैयारी तो हो गई। अब हमें चाहिए मोटे बेस वाली एक कढ़ाई। उसमें हम थोड़ा सा तेल गरम करेंगे। अब उसमें हम डालेंगे सरसों। सरसों चटकने के बाद हम डालेंगे जीरा, फिर खुशबूदार हींग और कड़ी पत्ता। फिर हम डालेंगे प्याज। इस प्याज को लगभग 3-4 मिनट के लिए हमें धीमी आंच पर पकाना है। जब तक ये प्याज पककर नरम हो तब तक आप एक गाना सुनिए।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। कढ़ाई में रखी प्याज अब हल्के गुलाबी रंग की हो गई है। अब हम इसमें हल्दी और मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। इसे हम चम्मच से मिक्स करेंगे। फिर कंटोला सब्जी के टुकड़े और रोस्टेड मूंगफली का पाउडर इसमें डालना है। उसके बाद हम उसमें नमक डालेंगे और साथ में ढेर सारा प्याज भी। इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम कढ़ाई पर ढक्कन रखकर लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे। लगभग 15-20 मिनट के बाद हमारी कंटोला की सब्जी पककर सॉफ्ट हो जाएगी। इस दौरान आप बीच बीच में इसे चलाते रहिए। अब हम इसे डेकोरेट करते हैं। एक सुंदर सी थाली में हम लेंगे गर्मा गर्म रोटी। आप ज्वार, बाजरा या लाल चावल की रोटी ले सकते हैं। कुछ नहीं तो अपना रोज वाला दाल चावल भी चल जाएगा। उसके साथ हम परोसेंगे न्यूट्रिशियस कंटोला की सब्जी। उसके ऊपर हम डालेंगे कोतमीर और कद्दूकस किया हुआ ताजा नारियल। भाई वाह, देसी खाना थाली में जब सजता है तब उसमें अपनापन ही झलकता है, है कि नहीं ऑडियंस जी? जी बिल्कुल झलकता है। अब जमीन पर बैठकर अपनों के साथ मिल बांटकर इस कंटोला की देसी सब्जी का लुक एकदम मजे से उठाइए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आप इसे जरूर पसंद करेंगे। भाई बारिश के मौसम को देसी खाना खाकर सेलिब्रेट करना मींस स्वाद का जायका निभाने वाले

वाली बात है और स्वाद का और स्वाद के साथ हमारे प्यारे ऑडियंस की सेहत का ख्याल रखना हमें बखूबी आता है। आप सुन रहे हैं आचार्य नाइडी एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस कंटोला सब्जी की खिदमत में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है बारिश वाली सब्जी। बारिश को सेलिब्रेट करने की जब हो मर्जी, तब बननी ही चाहिए पारंपरिक कंटोला की सब्जी। मौसम का जाले खिले से मुखड़े, धुले हुए कंटोला के कीजिए पतले टुकड़े। कढ़ाई में लगे जब खुशबूदार तड़का, इसकी महक से दिल मेरा धड़का। सीजन स्पेशल कंटोला पर बिखरे सेंगदाना, आचार्य 90 FM पर बजा बारिश वाला गाना। डेकोरेशन के लिए डाला नारियल सफेद, कंटोला को उगाने नहीं चाहिए खेत। जंगली सब्जियों का स्वाद अनोखा, आचार्य 90 FM पर लजीज खाने का झरोखा। देते रहिए यूं ही आप हमारा साथ, यहीं पर होगी अपनेपन वाली बात। बातों बातों में निकल गया टाइम, आचार्य 90 FM की क्या आपने सुनी राइम? आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली रेसिपी की ओर। भाई बारिश के मौसम में कुछ गर्मा गर्म खाने का मन तो करता ही है। अब पैकेट वाला खाना खाने की बजाय इंस्टेंट तरीके से अपने घर पर ही ट्रेडिशनल हेल्दी और सेहत के लिए वरदान माना जाने वाला एक सूप आज हम बनाते हैं। पुराने जमाने में बहुत सारे गांव में वीकनेस को दूर भगाने और बीमार व्यक्ति को एनर्जी देने के लिए रागी का इस्तेमाल किया जाता था। आज की हमारी नेक्स्ट रेसिपी का नाम है नाचनी से कढ़न बीन्स रागी सूप। इसमें छाछ, रागी का आटा, लहसुन, जीरा और मिर्ची का तड़का इस्तेमाल किया जाता है। इसका टेस्ट चटपटा सा होता है। चलिए अब हम इसकी रेसिपी को सुनते हैं। नाचनी से कढ़न बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स। नाचनी मीन्स रागी का आटा 4 चम्मच, थोड़ी खट्टी छाछ 2 कटोरी, देसी घी या नारियल का तेल 1 चम्मच, राई 1/2 चम्मच, जीरा 1/2 चम्मच, लहसुन की कलियां 4, इन्हें कूट लेना है, हरी मिर्ची 1, इसे बारीक टुकड़ों में काटना है, कड़ी पत्ता 5-6, ताजा कोथमीर 2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, हींग चुटकी भर, नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं लगभग 1/2 चम्मच नमक ले रही हूँ। इतना खाना बनाकर मैं तो थक गई भाई साहब, आई नीड अ ब्रेक।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम बढ़ते हैं नाचनी से कढ़न इस रेसिपी की ओर। सबसे पहले हम एक बर्तन में छाछ, रागी का आटा और थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो चर्नर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से इस मिश्रण से गुठलियां निकल जाएंगी। फिर हमें तड़का लगाना है। मोटे बेस वाली कढ़ाई में हम देसी घी या कोकोनट ऑयल को गरम करेंगे। फिर उसमें हम डालेंगे राई। राई चटकने के बाद हम डालेंगे जीरा, हींग और कड़ी पत्ता। आहा, क्या बात! फिर हम डालेंगे कूटा हुआ लहसुन और साथ में थोड़ी सी हरी मिर्च। उसके बाद क्या करें? तो भाई, उसके बाद उस तड़के में हम ऐड करेंगे रागी और छाछ वाला तैयार मिश्रण। धीमी आंच पर हमें इसे पकाना है। इस दौरान हम इस मिश्रण को लगातार चलाते रहेंगे। ऐसा करने से ये मिश्रण फटेगा नहीं। लगभग 4-5 मिनट के बाद ये मिश्रण थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। फिर हम उसमें नमक ऐड करेंगे। उसके बाद हम गैस को कर देंगे बंद, क्योंकि इसे टेस्ट करने लम्हे बचे हैं चंद। अब हम इसे डेकोरेट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक सर्विंग बोल। उस बोल में हम बड़े प्यार से निकालेंगे नाचनी से कढ़न और उस पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर हम करेंगे सर्व। अब अपनों के साथ मिल बांट कर हम इस नाचनी से कढ़न को एंजॉय करेंगे। भाई, झमाझम बारिश में जब घर में ऐसी देसी रेसिपी बनती है, तब आप समझ जाइए कि इसे बनाने वाला आपकी सेहत के बारे में सोच रहा है। जनाब, इसी को कहते हैं अपनापन दिखाना। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। आप चाहे तो इस रागी सूप के साथ रोस्टेड पापड़ भी ले सकते हैं। इससे ये रेसिपी थोड़ी और इंटरेस्टिंग टाइप लगेगी। इस नाचनी से कढ़न की तारीफ में पेश है एक कविता। कविता का नाम है रागी से बीमारी भागी। बारिश का मौसम और हो गए बीमार, तब रागी का सूप आपको देगा आराम। बारिश में भीग कर आ गई आफत, तब रागी का सूप आपको देगा ताकत। नाचनी का मतलब लाल रंग की रागी, इसे खाते ही कमजोरी दूर भागी। इसमें डाली थोड़ी सी छाछ, झमाझम बारिश और बूंदों का नाच। बिगड़ी सेहत ने दिया है सबक, इस सूप में डाला थोड़ा सा नमक। इसका साथ देगा रोस्टेड पापड़ क्रंची। बनाइए नाचनी से कढ़न जब मन करे कुछ मंची। आचार्य 90 FM पर स्वाद और सेहत की भरमार, स्वाद का जायका शो पर लजीज खाने का दरबार। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम सुनते हैं एक क्विक रिकैप। आज के बारिश स्पेशल एपिसोड में हमने सबसे पहले बनाई एक रान भाजी, मींस जंगल में उगने वाली एक टेस्टी सी भाजी। इसे मराठी में करटुली और हिंदी में कंटोला की सब्जी के नाम से जाना जाता है। कंटोला के पतले टुकड़ों को रेगुलर वाला तड़का हमने लगाया, मींस गरम तेल में राई, जीरा, प्याज, हरी मिर्ची को हींग में डालकर तड़का बनाया। फिर उसमें प्याज के साथ कंटोला को लो फ्लेम पर पकाया। उसके बाद मूंगफली का पाउडर और नमक डाला। फाइनली फ्रेश कोकोनट से उसे सजाया। इस प्रकार हमने रेनी सीजन स्पेशल भाजी को आसान तरीके से बनाया। फिर हमने बनाया एक हेल्दी सा सूप। रागी, छाछ और थोड़ा सा पानी मिलाकर हमने अच्छे से मिक्स किया। फिर कढ़ाई वाले गरम तेल में हमने डाला
राई, जीरा, हींग और कड़ी पत्ता। उसमें रागी वाला तैयार मिश्रण मिलाकर थोड़ा सा उबाला। गैस को बंद करने से पहले हमने उसमें नमक मिलाया। इस प्रकार हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए हमने एक ट्रेडिशनल और हेल्दी सूप बनाया। नाचनी से कढ़न इस सूप टाइप रेसिपी को आप जरूर बनाइए। रोस्टेड क्रंची पापड़ के साथ ये सूप एकदम कमाल टेस्ट करता है। भाई बारिश के मौसम में त्योहार भी तो कई सारे होते हैं और त्योहार मीन्स लजीज खाने की भरमार। जरा सुनिए तो, थोड़ा रुकिए तो, आगे और कौन सी रेसिपीज होंगी इसका थोड़ा सा इंतजार तो कीजिए, क्योंकि खाने और गाने का ये इंटरेस्टिंग सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसे लगा ये हमें जरूर बताइए। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो वो भी हमें बताइए। अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। लेकिन लेकिन लेकिन उसके लिए आपके फेवरेट आचार्य 90 FM इस अनोखे से एंटरटेनमेंट वाले डेस्टिनेशन को आप सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए मायने रखता है। सुन रहे हैं ना ऑडियंस जी। अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का, वापस मिलने का ये मेरा वादा। सिर्फ वादा नहीं, एकदम पक्का वादा। तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिए। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

0: faithfully hosted the program and all were obliged by that. So today we have as a guest speaker over here. So ma'am, थोड़ा पहले के थोड़ा पीछे जाते हैं और जानते हैं आपका, आप खंडवा से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से तो मिठाई बहुत पसंद है हमें और दूसरी चीज है मध्य प्रदेश की साड़ीज। एक मध्य प्रदेश का अपने एक अलग सा कल्चर है जहाँ पे आप फुली फली बड़ी हो गई, तो थोड़े उसके बारे में, आपका घर कैसा था, आपके माता पिता के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए।
1: जरूर जरूर तेजस्विनी जी, सबसे पहले तो आपने मुझे इन्वाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं, मुझे गर्व होता है कि मैं खंडवा, मेरी भूमि खंडवा है, जहाँ के किशोर कुमार जी हैं, जगत विख्यात जिनका नाम है। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐसी नगरी से हूँ जहाँ से इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट निकले हैं। सो मध्य प्रदेश जो है उसको तो भारत का हृदय कहा जाता है और संगीत के लिए मुझे लगता है बहुत ही अच्छा स्कोप है वहाँ पर। पंडित कुमार गंधर्व जी मध्य प्रदेश से ही हैं और खंडवा में और इंदौर में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। मेरे माता पिता जो थे उनको बहुत संगीत का शौक था और बचपन से ही उन्होंने संगीत की शिक्षा मुझे दिलाई। अच्छा। स्पेशली क्लासिकल म्यूजिक का बहुत शौक था मेरे पिताजी को। ट्रांसफरेबल जॉब में थे लेकिन जहाँ भी ट्रांसफर होके जाते थे सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी होती थी कि संगीत गुरु कौन हुआ। तो कभी भी उनके ही प्रयासों की वजह से हम, पिताजी का ट्रांसफरेबल जॉब होने के बाद भी हम सीखते गए और ये जो पैशन है ये धीरे धीरे, मैंने इसी में मेरा ग्रेजुएशन किया एंड डेफिनेटली जब हम किसी चीज की साधना करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें किसी अच्छे मुकाम पर ले आता है। तो आज जो कुछ भी हूँ वो पिताजी के प्रयासों की वजह से हूँ। और बहुत अच्छी बांसुरी वादक थे वो।
0: अच्छा।
1: तो रागदारी का कोई नॉलेज नहीं था लेकिन अपने आप जब मैं गाती थी तो वो फ्लूट पर जुगलबंदी करते थे और बिना कुछ बताए कि कौन सा राग है, क्या स्वर है, उनका इतना कमांड था। तो क्या कहूँगी कि उनकी आत्मा में संगीत था। बहुत बहुत सुनने के शौकीन, रात रात भर प्रोग्राम सुनना, हम जो छोटे छोटे से थे हमें लेकर जाना और उन्हीं के कारण ये धीरे धीरे हम सीखते गए और आज यहाँ आ गए।
0: कोई भी मतलब म्यूजिक हो, चाहे हमारी शिक्षा अध्ययन हो, गुरु का महत्व बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो गुरु कौन से थे आप?
1: बचपन में मैंने शिक्षा पाई श्री हरिश्चंद्र ठाकुर जी से। भोपाल में काफी सालों तक वो एमएलबी कॉलेज में जुड़ी रहे और उसके बाद जब मैं 1996 में शादी होके मुंबई आ गई तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले श्री किरण फाटक सर से संगीत सीखा। लगभग 15 साल तो मैंने उनसे फिजिकल, बाद में मैं कहूँगी कि ये तो एक जीवन ही कम है संगीत के लिए, आज भी सर के कांटेक्ट में हूँ और अध्ययन चालू है। उसके बाद 2017 में मैंने अपूर्वा गोखले जी के पास ग्वालियर घराने की गायकी लेना शुरू किया जो आज भी चालू है। और चूँकि मुझे सेमी क्लासिकल का बहुत शौक, मेरे पिताजी मेरी आवाज़ सुनकर बचपन में ही कहा करते थे कि आपकी आवाज़ ठुमरी के लायक है। सो मुझे लगाव भी था बहुत। मुझे उस समय में कैसेट्स चलते थे, उन्होंने मुझे काफी सारे कैसेट्स लाकर दिए थे और सुनती रही मैं, सुन सुन के मुझे सेमी का बहुत शौक हुआ क्योंकि उसमें जो भाव है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। तो इस वजह से मैं धनश्री पंडित राय जो शोभा गुरु जी के डिसाइपल हैं उनके पास मैंने जाना शुरू किया और कुछ थोड़ी बहुत भी जो मैं उनसे तालीम ले पाई हूँ सेमी की, धनश्री जी से ली है।
0: जी जी, और धनश्री जी से मैं भी, मेरी भी मुलाकात हुई थी बिकॉज आई ऑल्सो हैव सम कनेक्ट विद इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो बहुत बड़ी विदुषी है।
1: हाँ
0: सुनीता जी, अभी आपने ठुमरी का जिक्र किया है तो हमारे दर्शकों के लिए एक छोटी सी कुछ बंदिश आप ठुमरी की पेशकश करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा।

0: सुनीता जी, जैसे हम आपने कहा आप कैसेट से बहुत सारे दिग्गजों को सुनती थी, तो आपके फेवरेट कौन है, मतलब इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, शास्त्रीय संगीत में और उपशास्त्रीय संगीत में? आपने जिक्र किया शोभा गुड्डू जी का, तो आपके कौन से मतलब आप किनको ज़्यादा सुनती है, सुनना पसंद करती है और उनसे ज़्यादा सीखती है?
1: जी, क्लासिकल म्यूजिक में पंडित जसराज जी, उनके डिसाइपल संजीव अभ्यंकर जी और अजय चक्रवर्ती जी को पसंद है। ऐसे तो मैं नाम बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई बार कुछ राग हमें कुछ आर्टिस्ट पे बहुत अच्छे लगते हैं तो हम सुनते हैं उनको। और लाइट म्यूजिक में मुझे शोभा गुड्डू जी का शुरू से ही बहुत पसंद रहा, और इसी वजह से शायद कहीं ना कहीं धनश्री जी से मुलाकात हो गई और उनको गुरु रूप में मैंने पाया। तो बहुत मुझे गुरुओं का, बहुत सभी गुरुओं का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है, इस बात के लिए मैं बहुत धन्यवाद।
0: जी बिल्कुल। और हम ये मानते हैं कि गोइंग टू म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स दैट गिव्स अ मेन इंपैक्ट ऑन अस, मतलब हमारे अपब्रिंगिंग में जो म्यूजिकल कॉन्सर्ट है, जैसे कि आपने शोभा गुड्डू जी का जिक्र किया, मैंने उनको पहले सुना था जब मैं भी छोटी छोटी थी, तो मेरे मम्मी पापा गोवा में दीनानाथ मंगेशकर सम्मेलन स्मृति समारोह होता था, वहाँ पे उनको सुना था। आप ऐसे म्यूजिक कॉन्सर्ट में कहाँ कहाँ गए हैं?
1: ऐसे ही मुझे शौक था म्यूजिक कॉन्सर्ट अटेंड करने का, खंडवा में जब भी, क्योंकि किशोर कुमार की नगरी है तो वहाँ पर किशोर कुमार की स्मृति में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते थे। अब तो वहाँ उनकी स्मृति में गौरी कुंज नाम का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बन गया है, कॉलेज ओपन हुआ है। तो जब भी जैसे मौका मिलता था, तानसेन समारोह में मैं गई हूँ, वहाँ सुनती थी, कालिदास समारोह में गई हूँ वहाँ, फिर हमारे ओंकारेश्वर में नटराज उत्सव होता था जहाँ पर बड़े कलाकारों का गायन होता था। तो छोटी जगह से हूँ, खंडवा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जब भी मौका मिलता था मैं ज़रूर कॉन्सर्ट्स अटेंड करती थी, क्योंकि लाइव म्यूजिक सुन के जो हमारे मन पे उसका प्रभाव होता है बहुत ही अलग होता है। इसीलिए शास्त्रीय संगीत में कहा है कि सुनना बहुत ज़रूरी है,
0: और वो गुरु शिष्य परम्परा भी जी उसको ज़्यादा मायने रखती जी। खंडवा से कुमार गंधर्व जी भी वहाँ पे रहते थे?
1: कुमार गंधर्व जी देवास से।
0: आप एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम सुनते, आप सुनते रहिए आचार्य 98.5 ओल्ड रेडियो। टुडे वी आर हैविंग अ गेस्ट डॉक्टर सुनीता गंगरडे, हु इज अ डिसिपल ऑफ अपूर्वा गोखले जी, एंड शी इज बीइंग अ परफॉर्मर एंड शी इज डिलीवरिंग हर लेक्चर्स ऑन म्यूजिक थेरेपी।

0: Welcome after the break. You're listening to Acharya 90FM, your own radio. And today in our guest interview, we have Dr. Sunita Gangareddy, ma'am. Ma'am, आपको ये पूछना है कि आपका अपना अपना रियाज होता होगा. मतलब आप बच्चों को कैसे सिखाते हैं वो तो अगला मेरा क्वेश्चन होगा. लेकिन आप अपना रियाज या अपना जो म्यूजिक ऐसा है कि हम सीखते रहते हैं, हर दिन सीखते हैं, नए नए सीखते रहते हैं, तो आपका रियाज आप कैसे करते हैं?
1: हर एक संगीत का जो प्रेमी होता है, स्पेशली शास्त्रीय संगीत, उसके लिए रियाज बहुत जरूरी है. तो हर दिन मेरे दिन की शुरुआत रियाज से ही होती है. फ्रेश होने के बाद मुझे अपने लिए काम चाहिए कम से कम हाफ एन आवर. तो एक बार जो एक राग हम शुरू कर देते हैं मॉर्निंग में, और रियाज कहते हैं कि सिर्फ अपने लिए होता है. तो मैं एकांत पसंद करती हूँ उस समय में, और जो रियाज में राग लेती हूँ वो दिन भर मेरे दिमाग में चलता रहता है. तो रियाज बहुत ज़रूरी है. एक दिन भी रियाज छोटा तो हम एक स्टेप पीछे आते हैं. तो जितना मुझे लगता है कि मेरे लिए खाना खाना जरूरी है, उतना मेरे लिए रियाज जरूरी है.
0: पहले कहा जाता था सुबह से शाम तक वो रियाज करते थे, और इसलिए वो तानसेन और ये इतने बड़े कलाकार हुए हैं. तो आप वो बिलीव करते हैं कि इतनी देर का, इतने घंटों का रियाज होना जरूरी है, या फिर आप दो चार घंटा आपका खुद का रियाज करें, या फिर आधा घंटा रियाज करें? क्योंकि आज हमें बहुत मतलब जॉब पे भी जाना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, घर वालों को भी संभालना है, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है. तो आप किस तरह से देखते हैं इस सब चीज़ को?
1: एक्चुअली इसके लिए सही तालीम मिलना बहुत ज़रूरी है. संगीत ऐसा विषय है जिसमें गुरु के सामने बैठकर ही सीखा जाता है. आजकल लोग सोचते हैं हम यूट्यूब से सीख लेंगे और हम बड़े विद्वान बन जाएंगे, ऐसा नहीं है. आज के भी टाइम में सही गुरु श्रद्धा और लगन के साथ गुरु के सामने बैठकर रियाज करना और गुरु के कहे अनुसार, तो निश्चित है कि आपकी प्रोग्रेस होगी ही. ऐसा नहीं है कि बहुत घंटों करने के बाद ही कुछ मिलता है. सही डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो मैं तो सबको हमेशा सिखाते समय कहती हूँ कि जो भी करना है सब संभाल के करना है. एज ए लेडी हमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं. उसके बाद भी अगर हमें कला में कुछ करना है, कोई भी कला हो, तो हमें सब चीज़ें संभाल के बहुत साधना कहा गया है. तो हमें कई घंटों टाइम देना ही पड़ता है. तो रियाज जो है वो तीन तरीके से होता है ऐसा मैं मानती हूँ. फिजिकली बैठकर जितना हम कर सकते हैं, दूसरा सुनने से. अगर किसी दिन हमें नहीं टाइम मिल पा रहा है तो एटलीस्ट हम सुन लें. और तीसरा मनन चिंतन करने से, कि अगर कुछ भी चीज़ें हमारे दिमाग में कंटिन्यूसली चल रही है कि राग है तो उसके बोल अलग कैसे जाएंगे, कहानी कैसे जाएगी, सरगम कैसे जाएगी, तो वो में पूरे टाइम चलते रहना वो भी रियाज
0: जी. बिल्कुल. अब बढ़ते हैं आपके अध्यापन की ओर. आप सुमेया कॉलेज में बहुत सालों से है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो अनुभव कैसा रहा आपके जीवन में?
1: मैंने जो शास्त्रीय संगीत सीखा, सबसे पहले तो गुरु से तो सीखा ही, लेकिन मैंने स्कूल में भी एक एज ए वन सब्जेक्ट स्कूल में मेरा म्यूजिक था. बाद में मेरा इंटरेस्ट मुझे लगा कि इसमें ही है, मेरे फादर को भी लगा, तो मैंने म्यूजिक में ही वहाँ से जो है मुझे एक दिशा मिल गई, सही दिशा. तो मुझे ऐसा लगा नहीं मुझे करियर इसी में करना है. तो म्यूज़िक में मैंने मास्टर्स किया, गोल्ड मेडलिस्ट रही मैं इंदौर यूनिवर्सिटी देवी विश्वविद्यालय से. उसके बाद मुंबई आने के बाद भी मैंने सीखना शुरू किया, और धीरे धीरे अध्यापन वाली जो बात कही आपने वो आज तक जारी है. क्योंकि संगीत के लिए एक जन्म ही कम है. तो मेरे गुरु को मैं हमेशा कहती हूँ इस जीवन में तो मैं आपको नहीं छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि वो भी अभी तक मेरे गुरु अपूर्वा गोखले जी, अभी तक यशवंत माले जी और शंकर अभ्यंकर जी से सीख रहे हैं. मेरे गुरु श्री किरण फाटक सर जी अभी तक विकास कशालकर जी से सीख रहे हैं. तो उन्हीं से मुझे गुरुओं से ही प्रेरणा मिलती है कि हम ये तो हम सोच ही नहीं सकते कि अभी हमें आ गया था, क्योंकि जहाँ ये हमने सोचा वहीं हमारी प्रोग्रेस होती है. सो जितना सीखेंगे ये तो समंदर की तरह है, कितना गोता लगाएंगे अंदर वाला. तो एक जन्म ही कम है, इसलिए संगीत तो चल रहा है. और माया सुमैया में आने का मेरा ऐसा रहा कि 2015 में मैं सुमैया स्कूल ऑफ म्यूजिक में अपॉइंटमेंट हुआ मेरा, और वहाँ पर ये सब आउटसाइडर भी अटेंड कर सकते थे, सुमैया के स्टूडेंट्स ऐसे पार्ट टाइम था ये सुमैया स्कूल ऑफ म्यूजिक. तो 2015 से लेकर ये 6 ईयर्स चला. अच्छा रिस्पांस रहा। उसके बाद समीर सोमैया जी जो हमारी ट्रस्टी हैं उन्होंने ये डिसीजन लिया कि नहीं अभी इसको हम यूनिवर्सिटी में एज ए
0: डिग्री कोर्स
1: स्टार्ट करेंगे। तो 2021 से हमारे सोमैया स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में मैं फैकल्टी हूँ, जहाँ पर BBA MBA PhD सर्टिफिकेट कोर्सेज इन सब के लिए।
0: मैम आजकल के बच्चे बहुत टेक्निकली मतलब टेक्निक ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उनके प्रति जैसे हम देखते हैं पूना में है, कहीं के बेंगलोर में है, जो संगीत आपने कहा मध्य प्रदेश में, वो म्यूज़िक के प्रति ज़्यादा उनका लगाव रहता है। लेकिन बॉम्बे जैसे सिटी में आप बोल रहे हैं तो इतना अच्छा आप डिलीवरी दे रहे हैं उनको, 75 स्टूडेंट्स हैं, तो उनका मतलब शास्त्रीय संगीत के प्रति कैसा उनका लगाव है उसके बारे में थोड़ा बताएं।
1: एक्चुअली आजकल के जो यंग बच्चे हैं वो शास्त्रीय संगीत के प्रति उनका रुझान कम है, लेकिन मेरी यही कोशिश रही कि मेरा सिखाने का जो तरीका था, जब मैंने यहाँ महसूस किया 2015 में आने के बाद कितनी भागदौड़ मेरी लाइफ में, कितने लोग शास्त्रीय संगीत सीखने आते हैं, तो जो जो भी स्टूडेंट्स आए वो इस वजह से बढ़ते गए क्योंकि उनको मेरा टीचिंग स्टाइल बहुत पसंद आया। बिकॉज थोड़ी सी मैं लाइट की बात करती थी, जैसे मैंने आज हमीर राग सिखाया है उनको और मैंने स्वर बता दिए हैं कि रे सा ग म ध नी ध सा। अभी उसके साथ अगर मैंने उनको रिलेट कर दिया कि मधुबन मेरा ठिकाना, ये जो थोड़ा सा हम लाइट की बात करते हैं उससे बच्चों को एक समझ में आता है कि अरे ये तो हमें बहुत अच्छे से पता ही चलता है, लेकिन राग हमें आज पता चला कि दिस इज बेस्ड ऑन राग मीर, तो उनका जो है इंटरेस्ट और बढ़ जाता है कि अरे वाह जरूर हम सीखेंगे। और कुछ भी नहीं आने के बाद भी जब मैं कोई राग सिखाती थी ना तो वो इमिजिएटली सॉन्ग्स बताते थे, मीन्स वो रिलेट कर पाते थे कि अरे मैम यमन राग आपने बताया तो ये सब गाने यमन के हैं विदाउट एनी नॉलेज, तो ये बहुत अच्छा लगता था। और इस वजह से बहुत सारे लोग सीखने आने लगे। मुझे लगता है आज के टाइम में हम सिर्फ क्लासिकल की बात करें उसके बजाय अगर हम थोड़ी सी उनको इंटरेस्टिंग तरीके से जानकारी देते हैं तो उनका इंटरेस्ट बढ़ता है।
0: अभी आप हम शास्त्रीय संगीत की बात कर रहे हैं तो आप बुक्स में पढ़ते होंगे, क्योंकि बच्चों को ये भी जानना ज़रूरी है कि बुक्स को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है शास्त्रीय संगीत का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं,
1: क्योंकि ये दो पक्ष हैं, शास्त्र पक्ष है और एक कला पक्ष है, भाव पक्ष है। जितना कहते हैं परफॉर्मिंग आर्ट है तो ज़्यादातर तो वेटेज परफॉर्मेंस की तरफ रहता है, लेकिन फिर भी जब हम उसमें डिग्री ले रहे हैं तो हम थ्योरी का हमारे यहाँ जो करिकुलम है उसमें 3 पेपर थ्योरी के, दो प्रैक्टिकल, उसमें फंडामेंटल आ जाता है, हिस्ट्री आ जाता है, अप्लाइड थ्योरी आ जाता है, तो बच्चे आजकल थोड़ा पसंद कम करते हैं।
0: हाँ
1: हमारा एज ए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको शास्त्र के बारे में भी पूरी जानकारी, बिकॉज क्या होगा कि शास्त्र नहीं पता है ना तो वो म्यूजिक को इतने अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो भरत के नाट्य शास्त्र से लेकर संगीत रत्नाकर क्या था, शारंग देव जी ने उसमें क्या लिखा है, ये सब विक्रमी पुस्तक मालिका की बंदिशें हैं और सारी चीज़ें हम उनको बहुत इंटरेस्टिंग वे में बताते हैं जिससे कि उनकी उनकी रुचि बनी रहे और वो थ्योरी में भी बहुत अच्छे से पढ़ सकें।
0: और ऑटोबायोग्राफी में कितने लोगों की ऑटोबायोग्राफी
1: है, कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैम क्या पता हमें पता ही नहीं उनके नाम, हम क्यों पढ़े, लेकिन फिर हम उनको बड़े प्यार से समझाते हैं कि देखो जो विद्वान हुए वो आपको तो पता होने चाहिए कितना स्ट्रगल करके उन्होंने क्या हासिल किया, तो तब उनको अच्छा लगता है और वो पढ़ते हैं। आजकल के जो है वो तो उनको समझ में आता है, वही हरिप्रसाद चौरसिया राहुल देशपांडे जी का मैं देखती हूँ कि वो वसंतराव देशपांडे जी के नाती हैं, लेकिन उसके बाद भी संगीत, मुझे ऐसा लगता है कि संगीत में जो हमें अच्छा लगता है वो हमारा हमें करना ही चाहिए।
0: चाहिए।
1: तो आज वो फिल्मी गीत भी गा रहे हैं और क्लासिकल भी कर रहे हैं, तो यूथ बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि यूथ आज के जो युवा हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो केवल क्लासिकल की तरफ नहीं है। हम सिर्फ क्लासिकल से बांध के नहीं रख सकते, बहुत मतलब बहुत थोड़े लोग मिलेंगे जो केवल क्लासिकल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन जैसे हमारे यहाँ भी मैं देख रही हूँ माया सुमैया में अभी 40+ स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो सीख रहे हैं क्लासिकल बिकॉज उनको डिग्री लेना है, लेकिन उनका सबका इंटरेस्ट देखा जाए तो वो मुंबई में एक ही लक्ष्य लेके आए हैं, प्लेबैक सिंगिंग। तो ये हम देख रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हर तरह का गाना आना चाहिए, लेकिन शास्त्रीय संगीत का जो बेस है उसका होना ही चाहिए। आप कुछ भी गाएं वो तभी अच्छा लगेगा जब आपको नॉलेज है, प्रॉपर श्रुतियों का ज्ञान है, तो आप बखूबी किसी भी तरह का संगीत गा सकते हैं।
0: लेकिन वो जो शास्त्रीय संगीत को जो ग्लैमर है, मतलब जो फिल्मी म्यूजिक को जो ग्लैमर है, वो शास्त्रीय संगीत को नहीं है। ये जो है इसके लिए वो, ये जो यूथ है वो इससे अट्रैक्ट होते हैं ज्यादातर फिल्मी संगीत की तरफ, जैसे आपने कहा।
1: मेरा यही इंटेंशन है तेजस्वी जी कि शास्त्रीय संगीत से जो लोग डरते हैं या जो ऐसा समझते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है या बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, उनकी टेंडेंसी दूर करना। मैंने इसीलिए 2017 से शुरू किया मेरा यूट्यूब चैनल, बिकॉज वो टाइम में पेंडेमिक में काफ़ी मतलब हमारी क्लासेस ऑनलाइन हो गए,
0: ऑनलाइन
1: हमने
0: होते थे।
1: सोचा भी नहीं था कभी कि हम ऑनलाइन सिखा पाएंगे शास्त्रीय संगीत, वो टाइम ने ये सब सिखा दिया। और उसके बाद जो बंदिशें मैं सिखाती थी स्टूडेंट्स बोलते थे कि मैम वो हम ढूंढते, क्योंकि आजकल तो गूगल का ज़माना, कोई भी चीज़ हमने सिखाई वो गूगल करते हैं, तो मैडम नहीं वो जो आप सिखाते हैं वो हमें यूट्यूब पर नहीं मिलता है, तो प्लीज़ आप डालिए। तो मैंने उनको कहा कि मुझसे अच्छा काम बहुत लोगों ने किया है, नहीं आप जो बंदिशें सिखाते हैं वो नहीं मिल रही है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के ही बोलने की वजह से किया
0: जी
1: पेंडेमिक में, बहुत अच्छा मुझे उसका रिस्पॉन्स मिला। कई लोग यही कहने लगे कि मैम जिनको गुरु नहीं मिल पा रहा, इस वजह से हम सीख पा रहे हैं। तो वहाँ पर मैंने कुछ राग बेस्ड वीडियोस बनाए हैं और उनके ऊपर बॉलीवुड म्यूजिक में जो सॉन्ग्स आए हैं उनके लिए बात की।
0: जरूर इसके बारे में आपसे अधिक जानकारी लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर जुड़ते हैं सुनीता, डॉक्टर सुनीता गंगाडे मैडम से। आप सुनते रहिए आचार्य 98 FM।

0: Welcome after the short break. You are listening to Achar and Idea from your own radio. और आज हम डॉक्टर सुनीता गंगारेड्डी मैडम से बातचीत करें. मैम अभी पढ़ते हैं आपकी पीएचडी की ओर. पीएचडी में आपने बहुत सारे रिसर्च पेपर, मतलब उनके सब्जेक्ट भी बहुत अलग से हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए. और वो म्यूजिक थेरेपी का जो आपने हमारे कॉलेज में भी जो सेशन दिया, जो हम सारे अध्यापकों ने उसको बहुत सराहा, तो उसके बारे में वो आपको वो आइडिया आया कहाँ से कि कैसे लिंक करेंगे? आपने तो मेंशन किया पढ़ाते पढ़ाते वो आइडिया आपको आ गया, तो उसके बारे में हम दर्शकों को थोड़ा सा बता रहे हैं.
1: बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से वो मेरे माइंड में आया था, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी. एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इंटरनेशनल, जिसको एस आई एस कॉलेज षणमुखानंद ने जो कोलैबोरेशन से ऑर्गेनाइज किया था, और प्लेस नहीं मिल रही थी उनको प्रॉपर. तो हमारे यहाँ सुमैया विद्या विहार ने उनको प्लेस अवेलेबल करवाई थी. तो हमारे यहाँ तब उस समय में सुंदरराजन सर के सर थे हमारे यहाँ, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि मैडम आप इसमें रिसर्च पेपर डालिए, इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है. तो जैसे कि मैंने बताया, मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा था म्यूज़िक थेरेपी के वजह के ऊपर, तो मैंने उसमें एक रिसर्च पेपर डाला. और जब उसको प्रेजेंट करने का टाइम आया तभी मैंने सोचा कि सब लोग ऐसे ही अपने अपने पेपर रीड करते हैं, लेकिन उसमें क्या मज़ा है? हम अगर परफॉर्मिंग एरिया से हैं, तो परफॉर्मिंग आर्ट से, तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से करना चाहिए. तो मैंने उसी रिसर्च पेपर को प्रैक्टिकली, जो मैंने लिखा था उसमें, उसको मैंने प्रैक्टिकली गा के बताया. और वो साउथ इंडियन कम्युनिटी के सारे ऑडियंस थे, तो लेकिन इतना उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया और वहीं से मुझे पहला कॉन्फिडेंस आया कि ये बहुत अच्छा है. और वो करके मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, बिकॉज हम सब कुछ अपने लिए ही करते हैं, लेकिन ऐसा लगा कि बिना औषधि के अगर हम किसी को थोड़ा भी रिलैक्स फील करवा सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है. और तब से मैंने शुरू किया, और आज मुझे लग रहा है कम से कम 10 से 12 जगह पर मेरे लिए म्यूजिक थेरेपी के सेशन हो चुके हैं.
0: मैंने भी सुना है, मतलब प्लांट्स ग्रो होते हैं, ये जो पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल्स में ज़्यादा करके म्यूजिक डाला जाता है ताकि वो सुन सके, और उसमें वो ज़्यादा रिकवर भी ज़्यादा फास्ट होते हैं. तो ये म्यूजिक थेरेपी एक अच्छा इट वर्क्स डेली लाइफ, वो भी सुनते. अगर सुबह में भी हम जब गाना सुनते हैं तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है, वो भी है. तो आप थोड़ा म्यूजिक थेरेपी का जो आपका सेशन है उसका थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हमें देंगे?
1: ज़रूर ज़रूर. म्यूजिक थेरेपी में मैंने फिर जब मुझे इंटरेस्ट आया तो मैंने थोड़ा सर्च कितना काम हुआ है इसके ऊपर. तो मुझे शशांक कट्टी जी जो मुंबई में म्यूजिक थेरेपी पर बहुत काम कर रहे हैं, उनका मुझे बहुत अच्छा लगा. और उन्हीं से थोड़ा सा मैंने उनके वीडियोस के थ्रू मैंने थोड़ा सा रेफरेंस लिया, और फिर मैंने ये फाइंड आउट किया कि कौन से प्रॉब्लम्स के ऊपर कौन से राग इफेक्टिव हैं और उन रागों का क्या प्रभाव है. तो मैंने कुछ कॉमन डिसऑर्डर चूज किए और उसके ऊपर इफेक्टिव रागों को चूज किया, और फिर उसको इंटरेस्टिंग तरीके से, बिकॉज हम अपनी पसंद के अनुसार संगीत सुने तो वो ज़्यादा काम करेगा. तो उसकी एक क्लासिकल बंदिश, अगर आप मराठी सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो मराठी गाने, भावगीत, नाट्यगीत और कुछ फिल्मी गीत, तो हर एक की पसंद के अनुसार मैं वो गाने बताती हूँ. और जब मैं उनको गाकर बताती हूँ और एक वर्कशॉप की तरह से हम इस प्रोग्राम को लेते हैं, तो ऑडियंस भी बहुत इन्जॉय करते हैं, क्योंकि उसमें उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाता है. तो इस तरीके से ये सेशन सोचा ही नहीं था और शुरू हो गए, और बहुत जगह पर होते जा रहे हैं और लोगों को पसंद आ रहा है मेरा काम.
0: तो थोड़ा वापस से गाना सुनना चाहेंगे? तो इसका रिलेटेबल थोड़ा, मतलब शास्त्रीय संगीत और फिल्मी म्यूजिक.
1: जैसे मैं म्यूजिक थेरेपी में स्ट्रेस के लिए रागे मन की बात करती हूँ, तो आजकल स्ट्रेस सभी को है. सो सबसे पहले थोड़ा सा स्वरूप बताती हूँ, क्योंकि ऑडियंस में से कई लोग जानकार भी होते हैं और कई लोगों को कुछ भी नहीं पता होता है. सो छोटे छोटे फ्रेजेस लेकर मैं ऑडियंस को उसमें गाने के लिए बोलती हूँ. जैसे यमन राग की अगर हम बात करें

0: और एक क्वेश्चन, अभी अभी हम रेंज पे है इंटरव्यू के, तो वो पूछना चाहूंगी कि आजकल के बच्चे बहुत ये नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि इट इज नॉट देयर फॉल्ट कि वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं टेलीविजन के जो रियलिटी शोज है उनके ऊपर, क्योंकि उनके मतलब छोटे से समय में उनको नेम फेम मनी सब मिल जाता है। तो आप रियलिटी शो के जज भी रह चुके होंगे, या फिर कहीं पे भी आप प्रतियोगिता में जाते हैं तो आप परीक्षक के रूप में जाते होंगे, तो बच्चों को आपको क्या मतलब एडवाइस देना है, क्या मार्गदर्शन करना है कि रियलिटी शो को आपको किस तरह से देखना चाहिए?
1: रियलिटी शो से डेफिनेटली बहुत क्लासिकल संगीत का रुझान बढ़ा है, क्योंकि जब बच्चे क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग्स गाते हैं तो जैसे फिल्मों में शास्त्रीय संगीत आने के कारण शास्त्रीय संगीत सीखने बहुत लोग आते हैं, जो मेरा विषय भी है कास्टिंग। तो इसी तरीके से रियलिटी शोज में देख के बच्चों को बहुत लगता है अरे मैं भी उनकी तरह गाऊँ, इसलिए लोग ट्रेनिंग लेते हैं थोड़ा, लेकिन वो उतना सा मुझे लगता है सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जो थोड़े समय के लिए जो एक फेम मिलता है वो थोड़े समय बाद ही खत्म भी हो जाता है। अगर आपको लंबे समय तक टिकना है तो आपको प्रॉपर गुरु के साथ, गुरु के मार्गदर्शन में सालों तक सीखना होता है। मैं कहूँगी कम से कम 5-10 साल तो आपको उसका प्रॉपर गाइडेंस लेना होता है आपके से गुरु, और उसके बाद भी रियाज करना होता है, क्योंकि सीखना एक तरीके से सीख लिया लेकिन जब तक हम उसको डाइजेस्ट नहीं करेंगे, जिस तरीके से हम कहते हैं खाना खाना खाना ही सफिशेंट नहीं है, उसको डाइजेस्ट करना है बहुत चीज़ें, उसी तरीके से गुरु ने सिखा दिया है लेकिन जब तक हम उसको घंटों बैठ के रियाज नहीं करेंगे तब तक चीज़ें खुद से नहीं निकलेंगी, क्योंकि राग ना जब तक वो आत्मसात नहीं हो जाती है तब तक हम उसका इम्प्रोवाइजेशन बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों में वो कमी है आजकल, उनको लगता है कि नहीं सब कुछ इंस्टेंट मिल जाए हमें, है ना। तो बहुत अच्छी कई प्रतिभाएं होती है जिनके पास इतना अच्छा सब कुछ है लेकिन प्रैक्टिस तो नहीं करते हैं, रियाज नहीं करते हैं, गुरु के पास नहीं जाते हैं, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह नहीं टिकता है। तो मेरा यही गाइडेंस है कि प्रॉपर गुरु के पास शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा लेनी चाहिए।
0: और अंत में ये पूछना चाहूंगी कि आजकल लाइव कॉन्सर्ट ज्यादा होते हैं, मतलब इंडिया में भी होते हैं बाहर भी होते हैं, और लाइव कॉन्सर्ट्स में ज़्यादा आशा जी बहुत मतलब उन्होंने ज़्यादा लाइव कॉन्सर्ट्स को ये किया है, तो आपका लाइव कॉन्सर्ट मतलब कैसी तैयारी करना चाहिए? अगर एक परफॉर्मर है, अगर वो लाइव कॉन्सर्ट में जैसे शंकर महादेवन जी का भी आपने ये जिक्र किया, वो भी इतना मतलब अच्छे से वो लाइव कॉन्सर्ट को मैनेज करना भी एक कला होती है, तो आप लाइव कॉन्सर्ट्स को अगर एक लाइव परफॉर्मर बनना है तो उसके लिए स्टेज परफॉर्मर बनना है तो बच्चों ने कैसी तैयारी करनी चाहिए?
1: सबसे पहले तो अगर आप संगीत में रुचि रखते हैं और आप एज ए परफॉर्मर परफॉर्म कर रहे हैं तो आपकी तैयारी हर तरह से होनी चाहिए, बिकॉज ऑडियंस कहाँ कैसे ऑडियंस है। तो एक आर्टिस्ट को मुझे लगता है कि हर तरह से तैयार रहना चाहिए। कि अगर परवीन सुल्ताना जी का मुझे एक बार याद है, एक कॉन्सर्ट मैंने अटेंड किया था, कि मैं एक चीज़ गाती हूँ और दर्शकों की नज़रों से प्योर क्लासिकल आर्टिस्ट हैं, लेकिन धीरे से वो टर्न हो जाती हैं, फिर कुछ थोड़ा सा झक ताल या रूपक ताल की कोई बंदिश ले लेंगे बहुत बड़ा ख्याल डिटेलिंग ना करते हुए, और फिर वो ठुमरी या नादरा पे आ जाती हैं, या जैसे वो गाती हैं हमें तुमसे प्यार किया। तो ऐसे ही राशिद खान जी का भी मैंने देखा कि राशिद खान जी भी हमेशा देख लेते थे कि ऑडियंस कैसे है, प्रॉपर क्लासिकल सुनने वाली ऑडियंस है तो वो 2 घंटा भी गाएंगे क्लासिकल, लेकिन जब उनको पता है कि नहीं और आर्टिस्ट वही खड़ा होता है जो समझ जाए कि हाँ ये ऑडियंस क्या चाहती है, इनका टेस्ट क्या है। तो मुझे लगता है कि कॉन्सर्ट करने के लिए हमें उस तरीके की तैयारी रखनी चाहिए कि ऑडियंस के मुताबिक क्या, वैसे तो कहा जाता है कि शास्त्रीय संगीत किसी को रिझाने के लिए नहीं है, ये तो ईश्वर की आराधना के लिए है। और आजकल का लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे टाइम बदल रहा है आज हम सिर्फ उसी भावना कि अगर कॉन्सर्ट करना है तो हमें थोड़ा सा इस बात के लिए अवेयर रहना चाहिए कि ऑडियंस कैसा है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर सुनीता जी फॉर जॉइनिंग अस ऑन आचार्य 90 FM। और अभी हम इस इंटरव्यू का आई थिंक एंड आपके सुरीले गानों से करते हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू प्ले समथिंग।
1: मैं एक फिल्मी गाना सुना देती हूँ थोड़ा सा, जो मुझे बहुत पसंद है।

थाई शाम रोक लई रोक लई रोक लई थाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई गई गई सर से मोरी चुनरी गई सरक सरक सरक सरक सरक सरक सरक सरक सरक

की भरी मटकी, दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच। आहट सुन, आहट सुन, आहट सुन जियरा गयो धड़क धड़क धड़क।

0: औषधि की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: शरारती,
1: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
2: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
1: ये चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा,
1: लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार
2: बहुत लंबी थी। 9 बरस लंबी थी ना।

आचार्य 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं हमारे प्यारे ऑडियंस, ऑल गुड ना? भाई हमारा तो फर्ज है आपका हालचाल पूछना, क्योंकि आप हैं हमारे आचार्य 90 FM के खास दोस्त और दोस्तों के साथ स्वाद का जायका निभाना हमें बखूबी आता है। हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी का नाम है मोरिंगा सूप। मोरिंगा मीन्स मराठी में शेवगा। क्या आप जानते हैं सूप का इतिहास बहुत पुराना है। ये तब की बात है जब प्राचीन मानव ने पानी उबालने के बर्तन बनाने के बाद मांस, हड्डियां और पोषक तत्वों को निकालना शुरू किया था। हिंदी में और भारतीय संस्कृति में इसे शोरबा इस नाम से भी जाना जाता है। भारत में चरक संहिता जैसे ग्रंथों में दाल, जड़ी बूटियां और मसालों से बने यूश मींस शोरबा का जिक्र है। सूप शब्द यूरोपियन संस्कृति से आया है, जिसका मीनिंग ब्रेड को शोरबा में डुबोकर खाना था। दक्षिण भारत का पारंपरिक रसम ये भी इसी प्रकार का प्राचीन औषधीय और पाचक पेय है। दावत की शुरुआत में भूख को बढ़ाने के लिए या बीमार इंसान को एनर्जी मिले इस भावना से सूप परोसा जाता था। इसका हर चम्मच जीभ को स्वाद और मन को संतुष्टि ही देता है। तभी तो रेस्टोरेंट के स्टार्टर से लेकर इंस्टेंट फूड वाले पैकेट में भी सूप मिल जाता है। वैसे सूप के कई सारे फ्लेवर्स हैं। ये एक फेमस व्यंजन है, तभी तो इसके कई सारे फ्लेवर्स भी होने ही चाहिए। वेज और नॉन वेज इन दोनों प्रकारों में सूप की अपनी एक अलग सी पहचान है। मोस्टली स्वीट कॉर्न वेज सूप, मंचाव सूप, क्रीम ऑफ टमेटो सूप, पालक सूप, ऐसी कई सारी वैरायटीज तो ऑलरेडी फेमस है और ये सब एकदम कॉमन है। हमारे आचार्य 90 FM के प्यारे ऑडियंस के लिए आज हम बनाने वाले हैं हेल्दी टाइप वाला मोरिंगा सूप। वैसे मोरिंगा या सहजन, जिसे ड्रमस्टिक्स भी कहा जाता है, इसका सूप बनाना एकदम आसान है। सर्दी हो या गर्मी, मोरिंगा सूप हर सीजन में हमारे पेट और हेल्थ के लिए

अच्छा ही होता है, क्योंकि मोरिंगा एक सुपर फूड है। इसलिए अपनी ब्यूटी रेजिम में आप मोरिंगा को जरूर शामिल कीजिए। अब चलिए हम मोरिंगा सूप की रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। मोरिंगा सूप बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स। मोरिंगा मींस ड्रमस्टिक्स 5-6, बड़ा टमाटर 1, छोटा प्याज 1, अदरक लगभग 1 इंच, लहसुन 4 कली, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, साबुत जीरा 1/2 चम्मच, देसी घी 1 चम्मच, काली मिर्च मींस ब्लैक पेपर 3 या 4, बारीक कटा हुआ हरा धनिया 4 चम्मच, नींबू लगभग 1/2, नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं लगभग 1/2 चम्मच नमक ले रही हूँ। और हमें चाहिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली है। रेसिपी को सुनने से पहले हम थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। सारे ड्रमस्टिक्स को अच्छे से धो लेना है, फिर उसे 3-4 इंच के टुकड़ों में काट लेना है। उसके बाद हम प्याज और टमाटर के टुकड़े कर लेंगे, फिर अदरक और लहसुन को छील कर उसको भी बारीक टुकड़ों में काट लेना है। काली मिर्च को कूट कर उसका पाउडर बना लेना है। जीरा को भी हम कूट लेंगे। अब हम लेंगे मोटे बेस वाला एक पैन या कढ़ाई, उसमें हम डालेंगे लगभग 5 बड़े ग्लास भर के पानी। फिर हम उसमें डालेंगे मोरिंगा और टमाटर, उसके साथ हम प्याज अदरक और लहसुन को भी ऐड कर देंगे। अब हल्दी और नमक मिलाकर हम इसे पका लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर प्रेशर कुकर का यूज कर सकते हैं। इतना काम करके मैं तो थक गई भाई साहब, आई नीड अ ब्रेक।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। कढ़ाई वाले मिश्रण को हमें लगभग 20-25 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। इस दौरान आप इसे चलाते रहिए। ऐसा करने से ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। थोड़ी देर बाद ये मिश्रण थोड़ा गाढ़ा टाइप बन जाएगा। तब हम गैस को बंद कर देंगे। उसके बाद इस मिश्रण को एक छलनी की मदद से छान लेना है। हमें उसके पानी को सब्जियों से अलग कर लेना है। उसके बाद सभी सब्जियों को मैशर से दबा लीजिए। फिर मिक्सर में उस सॉलिड वाले मिश्रण को पीस लेना है। ऐसा करते समय उसमें लगभग एक कटोरी भर के पानी हम ऐड करेंगे। फिर इस पेस्ट को भी छलनी की मदद से छान लेना है। एक चम्मच की मदद से इस पेस्ट को दबाकर इसका सॉलिड और लिक्विड पार्ट हम सेपरेट कर देंगे। अब लिक्विड पार्ट को साइड में रखे सब्जियों के पानी में मिक्स करना है। फिर इस तैयार शोरबा में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और ढेर सारा प्याज। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। हमारा मोरिंगा सूप अब बस तैयार हो रहा है और हम अब लेंगे एक तड़का पैन। उसमें हम गरम करेंगे थोड़ा सा देसी घी। उस देसी घी में हम डालेंगे लगभग एक चुटकी भर के जीरा। फिर इस तड़के को हम तैयार शोरबा पर डाल देंगे। भाई वाह, क्या महक। अब इसे हम निकालेंगे सुंदर से एक सर्विंग बोल में। फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नींबू का रस। इसकी सुंदरता को और बढ़ाने के लिए हम इस पर डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। भाई वाह, मजा आ गया। अब एकदम आराम से बैठकर अपनों के साथ मिल बांटकर इस मोरिंगा सूप का लुत्फ आप मजे से उठा सकते हैं। आप चाहें तो इसके साथ रोस्टेड पापड़ भी परोस सकते हैं। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। मोरिंगा सूप तो हमने बना लिया। वैसे बारिश के मौसम में मोरिंगा तो एकदम आसानी से मिल जाता है। मोरिंगा को पराठा, दाल, सब्जियां या सिर्फ बॉईल करके भी खाया जाता है। वैसे देखा जाए तो इसे पकाकर, चबा चबा कर खाना ज्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन खाने की चीजों का फॉर्म बदल कर उसे पेश करना, इसे ही तो कहते हैं स्वाद का जायका निभाना। ऑडियंस जी, एम आई राइट? इस मोरिंगा सूप की तारीफ में पेश है एक कविता। कविता का नाम है हेल्दी मोरिंगा सूप। निखारने के लिए अपना रूप, इसमें नहीं है कोई अनाज, मोरिंगा टमाटर और थोड़ा सा प्याज, स्वाद को बढ़ाने डाला ब्लैक पेपर, इसे डालते ही टेस्ट हुआ बेटर, सब्जियों को उबालकर बनाया पेस्ट, निचोड़कर उसको फेंक दिया वेस्ट। मोरिंगा का सूप है एकदम देसी, ओरिजिनली शोरबा और सूप विदेशी। अपनों के संग शेयर करेंगे खाना, आचार्य 90 FM पर मन चाहा गाना। खाने और गाने की जब हो जुगलबंदी, एंटरटेनमेंट के लिए भाई नो पाबंदी। खाने और गाने का इस शो पर मेल, मोरिंगा सूप में नहीं है तेल। इंद्रधनुष में मिले बारिश और धूप, बनाइए मोरिंगा सूप और फिर निखरेगा रूप। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। हमारा मोरिंगा सूप तो बन गया। अब हम बढ़ते हैं अगली रेसिपी की ओर। भाई, गणेश जी का फेवरेट खाना कौन सा है और बच्चों को खाने में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? जनाब, गणेश जी का फेवरेट खाना है मोदक और बच्चा पार्टी का फेवरेट होता है चॉकलेट। चॉकलेट और मोदक को एक साथ मिलाकर बनता है चॉकलेट मोदक।
गणेश जी का आगमन हम सब के लिए खुशियों वाला माहौल बनाता है, है कि नहीं? वैसे मोदक तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे उकड़ी से मोदक, तलेले मोदक, ड्राई फ्रूट्स मोदक वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे आचार्य 90 FM के प्यारे ऑडियंस के लिए हम बनाने वाले हैं चॉकलेट मोदक। क्या आप मोदक इस शब्द का अर्थ जानते हैं? मोदक शब्द की खोज संस्कृत के मोद इस शब्द से हुई है। मोद मींस खुशी, आनंद या प्रसन्नता, ये होता है। मोद मींस खुशी, आनंद या प्रसन्नता, ये बेसिकली महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व में मोदक का भोग भगवान गणेश जी को लगाया ही जाता है। मोदक का मतलब है आनंद लेना, मींस एंजॉय कीजिए। मोदक को हिंदी में लड्डू के नाम से जाना जाता है। वैसे लड्डू मींस गोल मटोल मिठाई और मोदक मींस मुकुट की तरह दिखने वाली मिठाई। चावल या गेहूं के आटे में गुड़ और नारियल का मिश्रण, जिसे मराठी में सारण कहा जाता है, वो भर दिया जाता है। फिर उसे भाप पे पकाकर या डीप फ्राई करके परोसा जाता है। 5, 21, 51, 101 या 108 मोदक बनाकर भगवान श्री गणेश जी को इसका भोग बड़े प्यार से लगाया जाता है। चलिए अब हम चॉकलेट मोदक बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। इसके लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स, सूखा नारियल मींस, या तो फिर आप ले सकते हैं डेसिकेटेड कोकोनट 2 कटोरी, मिल्क पाउडर 2 कटोरी, दूध 1 लीटर, चीनी 1/2 कटोरी, चॉकलेट पाउडर 1 कटोरी, देसी घी 1 या 2 चम्मच, मिल्क मसाला 2 चम्मच या फिर मिक्स ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम, पिस्ता सब 2-2, दैट्स इट। अब हम चॉकलेट मोदक की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मोटे बेस वाला एक पैन। उस पैन में हम दूध और मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसे लो फ्लेम पर पकाना है। इसे चम्मच से चलाते हुए लगभग 20 मिनट तक पका लेना है। थोड़ी देर बाद उस कढ़ाई में तैयार होगा इंस्टेंट खोया मींस मावा। उसे हम निकालेंगे एक प्लेट में। फिर हम लेंगे एक पैन। उस पैन में हम नारियल को हल्का सा भून लेंगे। अब हम शक्कर को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमारे इंस्टेंट मावा में हम ऐड करेंगे शक्कर का पाउडर और चॉकलेट पाउडर। अपने हाथों से आप इसे मिक्स कीजिए। उसके बाद हम इस मिश्रण में ऐड करेंगे रोस्टेड नारियल। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। भाई हमारे चॉकलेट मोदक का मिश्रण अब तैयार हो गया है। अब हम सारे ड्राई फ्रूट्स को बारीक टुकड़ों में काट लेते हैं। उसके बाद हमें लेना है मोदक का मोल्ड। उस मोल्ड को अंदर की तरफ हम लगाएंगे थोड़ा सा देसी घी। इससे हमारे मोदक में हल्की सी शाइन आ जाएगी। फिर हम उसमें भरेंगे तैयार मिश्रण। इसे अच्छे से दबाकर भरना है। अब तैयार मोदक को उस मोल्ड से बाहर निकालिए। इस स्टेप को आप रिपीट करते रहिए। इस तरह से हम सारे मिश्रण के मोदक बना लेंगे। वाह वाह क्या बात। अब हम इसे डेकोरेट करते हैं। इसके लिए हम लेंगे एक सुंदर सी प्लेट। उस प्लेट में बड़ी श्रद्धा से हम रखेंगे सारे चॉकलेट मोदक। फिर उसके ऊपर हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े या मिल्क मसाला। वाह वाह एकदम जबरदस्त डेकोरेशन है। उसके बाद एकदम सात्विक भाव से हम भगवान श्री गणेश को इस चॉकलेट मोदक का भोग लगाएंगे। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। इस चॉकलेट मोदक की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है चॉकलेट वाले मोदक। आ गए गणेश जी, चलो करे स्वागत। अब मोदक बनाने की डाल ही लो आदत।
खोया के मिश्रण को हमने बनाया स्वीट, गणपति बाप्पा को मोदक की ट्रीट, विघ्नहर्ता का रूप हमारे प्यारे गणेश, ज्ञान और प्रगति का देते हैं संदेश, गणेश चतुर्थी की पावन तिथि बाप्पा के साथ, गणेश चतुर्थी की पावन तिथि बाप्पा के साथ रिद्धि और सिद्धि, बाप्पा के लिए मूषक की सवारी, चॉकलेट मोदक बनाने की हमने की जोरदार तैयारी, नमन है तुम्हें हे विघ्नहर्ता, तुम ही हो हमारे दुखों के हर्ता, मोदक को खाकर बाप्पा होंगे प्रसन्न, हमारा भारत देश विविधता से संपन्न, खुशियों से भरा बाप्पा का आगमन, खूबसूरत फूलों से महका ये चमन, साथ मिलकर करेंगे जब गणेश जी की आरती, तब जरूर प्रसन्न होगी हमारी माँ भारती, संस्कृति और संस्कारों का अनोखा ये संगम, बाप्पा के स्वागत में बजी सुरीली सी सरगम। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। अब हम सुनते हैं एक क्विक रिकैप। आज के एपिसोड में हमने सबसे पहले बनाया एक हेल्दी वाला सूप। ड्रम स्टिक्स को टमाटर, प्याज, अदरक और लहसुन के साथ हमने उबाला, फिर उसमें नमक, काली मिर्च डालकर देसी घी वाला छौंक लगाया। इस हेल्दी सूप को धनिया और नींबू के रस के साथ हमने फाइनल टच दिया, फिर रोस्टेड पापड़ के साथ इसे परोसकर हमने अपने दोस्तों की सेहत का खास ख्याल रखा। ऑडियंस जी, रखा के नहीं जी, बिल्कुल रखा। फिर हमने बनाया चॉकलेट मोदक। भगवान गणेश के स्वागत में हमने बच्चा पार्टी स्पेशल चॉकलेट मोदक को बड़े प्यार से बना ही दिया। इंस्टेंट खोया, डेसिकेटेड कोकोनट, चॉकलेट पाउडर, इन सबको शक्कर के साथ मिलाकर हमने मोल्ड में डाला, फिर ड्राई फ्रूट्स के साथ उसे डेकोरेट भी किया। इस प्रकार हमने बाप्पा के लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी सेवा प्रस्तुत की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का शो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो हमें जरूर बताइए, और अगर आपको अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना है तो वो भी हमें बताइए। अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। लेकिन लेकिन लेकिन उसके पहले आप हमारे आचार्य 90 FM चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी दोस्ती एकदम पक्की हो जाएगी। चलिए, अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का। वापस मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं, एकदम पक्का वादा। तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिए। RJ भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

माँ की इकलौती बेटी और अपने स्टेप डैड की पांचवी सेंटीज की सबसे खूबसूरत लड़की।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। आज हम इस कहानियों की गुल्लक में एक कहानी और डालेंगे और इस कहानी के गुल्लक को फिर से ज्यादा और भारी करेंगे। आज की कहानी है चार दोस्तों की। चार यार एक दोस्ती जो कभी टूटी नहीं। मुंबई की बारिश का एक अलग ही मूड होता है, कभी रोमांटिक, कभी डिप्रेसिंग और कभी कभी जिंदगी बदल देने वाली। ये कहानी है चार दोस्तों की, आरव, समीर, फैजान और कबीर। चार अलग पर्सनैलिटीज, चार अलग सपने, लेकिन एक चीज कॉमन थी, उनकी दोस्ती। वो दोस्ती जो स्कूल के एक ब्रोकन बेंच से शुरू हुई और जिंदगी के सबसे बड़े तूफान तक साथ चली। मुंबई के गवर्नमेंट स्कूल का क्लासरूम, टीचर अटेंडेंस ले रही थी। समीर खान प्रेजेंट मैम, कबीर शर्मा प्रेजेंट मैम, आरव मेहता प्रेजेंट मैम, फैजान अली प्रेजेंट। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये चार नाम एक दिन एक दूसरे की जिंदगी बन जाएंगे। लंच ब्रेक में एक इंसिडेंट हुआ। एक सीनियर बच्चा फैजान का टिफिन ले गया और मजाक उड़ाने लगा, अरे देख बिरयानी वाला आ गया है। पूरा क्लास हंस रहा था, फैजान चुप था। तभी आरव खड़ा हुआ, भाई टिफिन वापस दे दे। सीनियर हंसा, तू क्या करेगा। आरव ने सीधा उसके हाथ से टिफिन खींच लिया। उस दिन पहली बार समीर और कबीर ने आरव को देखा और समझा कि ये लड़का अलग है। उसके बाद चारों एक बेंच पे बैठने लगे। स्कूल के बाद कटिंग चाय, क्रिकेट, असाइनमेंट्स, मास्क बंक, पनिशमेंट सब साथ में, और धीरे धीरे दोस्ती फैमिली बन गई। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, वक्त बदलता है और वक्त को बदलने में देर नहीं लगती, तो ठीक वैसा इन चारों दोस्तों के साथ भी हुआ। स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज स्टार्ट हुआ, लेकिन हर किसी का स्ट्रगल अलग था। आरव मिडिल क्लास फैमिली से था, फादर ऑटो चलाते थे। आरव का सपना था फिल्म मेकर बनने का, लेकिन घर वालों को लगता था फिल्म लाइन में फ्यूचर नहीं है। समीर ब्रिलियंट कोडर, कंप्यूटर का मैजिशियन, लेकिन फाइनेंशियली वीक। कभी कभी इंटरनेट रिचार्ज करने के भी पैसे नहीं होते थे उसके पास। कबीर बड़ा फनी बंदा था, हर सिचुएशन में जोक मार देता लेकिन अंदर से ब्रोकन। उसके पेरेंट्स रोज फाइट जो करते थे, वो बस हंस के सब हाइड करता था। फैजान सिंगर बनना चाहता था, आवाज दिल को छू लेती थी, लेकिन उसके अब्बू चाहते थे कि वो उनकी गैरेज शॉप संभाले। गाने से घर नहीं चलता, ये सेंटेंस उसने हजार बार सुना था। एक रात चारों मरीन ड्राइव पर बैठे थे, बारिश हो रही थी। कबीर बोला, एक प्रॉमिस करते हैं, जब भी लाइफ में कितना भी बड़ा स्ट्रगल आए हम साथ रहेंगे। सबने हैंड्स स्टैक किए, फॉरएवर। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि असली टेस्ट अभी बाकी है। कॉलेज के फाइनल ईयर में आरव को एक आइडिया आया, व्हाई डोंट वी स्टार्ट आवर ओन कंटेंट चैनल, शॉर्ट फिल्म्स, म्यूजिक वीडियोस, सोशल मीडिया कंटेंट। समीर टेक्निकल संभाल लेगा, फैजान म्यूजिक संभाल लेगा, कबीर एक्टिंग और स्क्रिप्टिंग कर लेगा, आरव डायरेक्शन। सब एक्साइटेड थे, लेकिन प्रॉब्लम एक थी, पैसे, कैमरा रेंट, लैपटॉप, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ट्रैवल, सब कुछ एक्सपेंसिव था। फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया। दिन में कॉलेज, रात में काम, दिन में कॉलेज, रात में काम, दिन में कॉलेज, रात में काम। कभी कभी रेलवे स्टेशन पे शूट, कभी स्लम एरिया में, कभी टेरेस पे। उनका पहला वीडियो सिर्फ 312 व्यूज ले पाया, दूसरा

0: 89 और तीसरा तो पूछो ही मत, ओनली 41। कबीर फ्रस्ट्रेटेड हो गया, भाई ये नहीं चलेगा यार। लेकिन आरव बोला एक दिन चलेगा। फैजान चुप था, उसके घर पे प्रेशर बढ़ रहा था। अब्बू रोज बोलते थे गैरेज ज्वाइन कर ले, लेकिन वो सपना नहीं छोड़ना चाहता था। एक दिन समीर एक कैफे में फ्रीलांस कोडिंग का काम कर रहा था, तभी एक आदमी उसके पास आया, सूट पहना हुआ, एक्सपेंसिव वॉच। तुम समीर हो? हाँ मैं समीर हूं। तुम्हारी कोडिंग स्किल्स के बारे में बहुत कुछ सुना है। उस आदमी का नाम था विक्रम मल्होत्रा, एक बिजनेसमैन। उसने ऑफर दिया, एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट करना है, काम सिंपल है और उसके तुम्हें मिलेंगे 5 लाख रुपए। 5 लाख चारों के लिए एक काफी ह्यूज अमाउंट था। विदाउट थिंकिंग डीपली उन्होंने प्रोजेक्ट ले लिया। 3 महीने तक नॉनस्टॉप काम हुआ, नो स्लीप, नो पार्टीज, नो फन, बस काम। प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, पेमेंट भी मिल गई, सब खुश थे। लेकिन एक वीक बाद पुलिस समीर के घर पहुंची।
1: अकेले

स्वागत है दोस्तों आप सभी का ब्रेक के बाद आचार्य 90 एफएम में। जैसे कि हम सुन रहे थे, चार दोस्त, चारों का एक सपना। एक सपना वो ऐसा लिए आए थे कि एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं, उसमें शॉर्ट फिल्म्स, म्यूजिक वीडियोस, कंटेंट क्रिएशन, बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही थी। उन्होंने एक यूट्यूब चैनल भी खोला, लेकिन उनका चैनल बहुत तड़ाक से नीचे गिर चुका। पहला वीडियो 312, दूसरा वीडियो 89 और तीसरे का तो हाल मत पूछो, 41 व्यूज। लेकिन एक जिद थी कि कुछ करना है, तो एक ऑफर मिला जिसमें एक सॉफ्टवेयर बनाना था प्रोजेक्ट, वो बना लिया, उससे 5 लाख रुपए भी कमा लिए। लेकिन पुलिस आ गई थी अब समीर के घर, तो देखते आगे कहानी में क्या होता है। पुलिस समीर के घर पहुंची। समीर खान, तुम्हें साइबर केस में अरेस्ट किया जाता है। सब शॉक, क्या तुम्हें साइबर फ्रॉड केस में अरेस्ट किया जा रहा है? जो सॉफ्टवेयर तुमने बनाया था वो इलीगल फाइनेंशियल स्कैम में यूज हुआ है। समीर, फैजान, कबीर, आरव, सब शॉक। विक्रांत ने उन्हें पॉन की तरह यूज किया था। न्यूज चैनल्स पे नाम आ गया, कॉलेज स्टूडेंट्स इन्वॉल्व्ड इन फ्रॉड। फैजान के अब्बू ने थप्पड़ मारा, यही कर रहा है तुम? कबीर के पेरेंट्स ने उसे घर से निकाल दिया। आरव के फादर की तबीयत खराब हो गई स्ट्रेस में। सब टूट गया एक गलती से और पूरी जिंदगी उलट गई, जैसे मानो कभी कुछ था ही नहीं। सब एक पल में उथल पुथल हो गया। चारों दोस्तों की जिंदगी रास्ते पर आ गई। समीर जेल में चला गया, उसकी आंखों में गिल्ट था, वो खुद को कोस रहा था, सब मेरी वजह से हुआ, मैंने सब गलत कर दिया, मुझे वो ऑफर लेना ही नहीं चाहिए था। तब आरव बोला, नहीं भाई, हम सब साथ थे। कबीर पहली बार सीरियस था, अब क्या करेंगे? कोई आंसर नहीं था। 3 दिन तक सब होपलेस रहे, फिर एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आया, अननोन नंबर, और उस कॉल पे कहा गया, तुम लोगों को फंसाया गया है। वॉइस फीमेल की थी। मैं विक्रांत की एक्स एम्प्लॉय हूं, मेरे पास प्रूफ है। सब शॉक थे। उस एक लड़की का नाम था नैना, वो विक्रांत के इलीगल ऑपरेशंस जानती थी, लेकिन वो डर के मारे चुप थी। अब फाइनली वो इन चारों को हेल्प करना चाहती थी। नैना ने बताया, विक्रांत के ऑफिस सर्वर में सब एविडेंस है। समीर बोला, अगर वो डेटा मिल गया तो मैं इनोसेंट प्रूव हो सकता हूं। प्रॉब्लम, सर्वर हेविली सिक्योर था और विक्रांत डेंजरस आदमी था, लेकिन अब उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अगर समीर को खुद को इनोसेंट प्रूव करना है तो उसको एविडेंस की जरूरत थी। एक रात चारों सीक्रेटली विक्रांत के ओल्ड वेयर हाउस पे गए। रेनी नाइट, डार्क बिल्डिंग, हार्ट बीट फास्ट। कबीर नर्वस था, भाई अगर पकड़े गए तो? फैजान बोला, तो साथ पकड़े जाएंगे। ये लाइन सुनकर सब मुस्कुरा गए। अब वेयरहाउस पे एकदम काला अंधेरा, सिक्योरिटी टाइट, जगह जगह पे वॉचमैन घूम रहे हैं, लेकिन समीर को इनोसेंट प्रूफ करना था तो ये कदम उनको बढ़ाना ही था। और ये जो सिचुएशन थी इसे फेस करना ही था। तो चारों ने
डिसाइड किया कि भले कुछ भी हो जाए, कुछ भी, अब वो इस मिशन से पीछे नहीं हटेंगे और समीर को इनोसेंट प्रूफ करके रहेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे एक दोस्त अगर फंस जाता है तो उसके तीन दोस्त उसे इनोसेंट प्रूफ करने के लिए अपनी जान का जोखिम तक ले लेते हैं। अब इसके आगे वाली कहानी का हिस्सा हम सुनेंगे ब्रेक के बाद।

ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आचार्य 90 एफएम में। आप सुन रहे थे कहानियों के गुल्लक, जिसमें हम सुना रहे थे चार दोस्तों की कहानी। चार दोस्त अभी विक्रम के ओल्ड वेयर हाउस पे पहुंच चुके थे, लेकिन अंदर ऑफिस में जाने का कोई रास्ता नहीं था। और जाकर ये पता चला कि सारी चीजें वहां पे एकदम सिक्योरिटी पर्पस से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो वो वापस आ गए। वापस आने के बाद उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। तो वापस आने के बाद सबसे पहले उन्होंने बनाया एक प्लान कि रात में किस तरीके से विक्रम के पुराने ऑफिस में जाएंगे, समीर किस तरीके से सिस्टम हैक करने लगेगा और कौन क्या क्या काम करेगा। तो चलिए अब सुनते हैं आगे की कहानी। चारों विक्रम के ओल्ड वेयरहाउस में पहुंच चुके थे। सबने डिसाइड किया था अपना अपना टास्क, सबको क्या करना, और अपने टास्क के मुताबिक काम शुरू हुआ। समीर सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर रहा था, आरव कैमरास देख रहा था, कबीर गार्ड डिस्ट्रैक्ट कर रहा था फनी एक्टिंग से, फैजान बेसमेंट में फाइल सर्च कर रहा था। सब परफेक्टली चल रहा था, तभी अलार्म बज गया। रन रन रन, गार्ड्स उनके पीछे भागने लगे। कबीर गिर गया, एक गार्ड उसके पास पहुंच गया, लेकिन वापस आरव आ गया। उसे हाथ मत लगाना, फाइट स्टार्ट हो गई। फैजान ने कबीर को उठाया। समीर चिल्लाया, डाटा मिल गया, डाटा मिल गया, लेकिन एग्जिट ब्लॉक था, सब कॉर्नर ब्लॉक हो गए थे। उस वक्त कबीर हंसा और बहुत जोर से हंसा। आरव गुस्सा हुआ, पागल है क्या तू? कबीर बोला, भाई स्कूल में प्रॉमिस किया था ना साथ रहेंगे। उस मोमेंट पे उन्हें डर से ज्यादा एक दूसरे पे ट्रस्ट था। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, हम हमारे स्कूल में किए हुए प्रॉमिस को कितना ज्यादा महत्व देते हैं या कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं, ये एक उसी की कहानी चल रही थी। अब दौड़ भाग कर वो वहां से निकल पड़े। फाइनली नैना से ये चारों मिले। नैना ने सीक्रेटली पुलिस को सारे एविडेंस भेज दिए। विक्रम अरेस्ट हो गया, न्यूज चैनल की हेडलाइन बदल गई, यंग स्टूडेंट फ्रेम्ड बाय बिजनेसमैन। समीर फ्री हो गया, चार्जेस ड्रॉप हो गए, लेकिन इमोशनल डैमेज अब भी था। सोसाइटी स्टिल जज देम, लोग विस्प करते हैं ये वही फ्रॉड वाले लड़के हैं। कबीर डिप्रेस होने लगा था, फैजान ने सिंगिंग छोड़ दी थी, आरव शांत हो गया था। सब फिजिकली फ्री तो थे, लेकिन मेंटली ब्रोकन थे। और फिर एक दिन आरव ने ओल्ड हार्ड ड्राइव निकाला, उसमें उनके पुराने वीडियोस थे, मस्ती, लाफ्टर, ड्रीम्स। कबीर स्लोली स्माइल करने लगा, फैजान की आंखों में टीयर्स आ गए। आरव बोला, हमने गलती की लेकिन क्राइम नहीं, हम गिर गए लेकिन खत्म नहीं हुए। समीर ने पूछा, अब क्या? आरव ने स्माइल किया और कहा, अब कम बैक। चारों ने फिर से कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, लेकिन इस बार फेक ग्लैमर नहीं, रियल स्टोरीज, लोगों के स्ट्रगल्स पर, लोगों की मेंटल हेल्थ पर, फ्रेंडशिप पर, फेलियर। उनका कंटेंट अब उनसे ज्यादा लोगों से जुड़ा हुआ था, लोगों की जिंदगी को बताने के लिए जुड़ा हुआ था, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को अब वो कैमरा में कैद करने लगे थे, उनकी कहानियों को लोगों के सामने लाने लगे थे। उनका एक पॉडकास्ट इसी तरीके से वायरल हो गया, When Life Frames You, Million of Views। लोग कनेक्ट करने लगे, कमेंट्स भर गए, भाई ये तो मेरी स्टोरी है, रियल फ्रेंडशिप स्टिल एग्जिस्ट, यू गाइस सेव्ड मी। स्लोली स्लोली सब चेंज होने लगा। फैजान का म्यूजिक फेमस होने लगा, समीर को स्टार्टअप जॉब मिली, कबीर स्टैंड अप कॉमेडी करने लगा, आरव डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बन गया। 10 साल बाद सेम मरीन ड्राइव, सेम बारिश, बस चेहरे मैच्योर हो गए थे। कबीर चाय सिप करते हुए बोला, भाई अगर उस टाइम हम टूट जाते ना तो आज कुछ नहीं होता। फैजान स्माइल्ड,
हम प्रॉब्लम में इसलिए नहीं फंसे क्योंकि हम वीक नहीं थे, हम फंसे क्योंकि हम इनएक्सपीरियंस थे। समीर एडिट, लेकिन निकले क्योंकि हम यूनाइटेड थे। आरव ने आसमान की तरफ देखते हुए बोला, दोस्ती का मतलब सिर्फ पार्टी नहीं होती दोस्तों, दोस्ती का मतलब होता है जब पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो तब भी कोई तुम्हारे साथ खड़ा रहे। बारिश तेज हो गई, चारों फ्रेंड समंदर के सामने खड़े थे और उनकी फ्रेंडशिप थी, हर लहर से ज्यादा स्ट्रांग थी उनकी फ्रेंडशिप। कई बार जिंदगी आपको गलत रास्तों पे ढकल देती है, लेकिन अगर आपके पास सच्चे दोस्त तो हर अंधेरा छूटने लगता है, हर अंधेरा मिटने लगता है, एक नया सवेरा जरूर आता है, एक नई जिंदगी लेकर, एक नई उम्मीद लेकर, एक नई कहानी लेकर, एक नया दिन लेकर। और वो नई उम्मीद, वो नई किरण हमारी जिंदगी में कब इतनी बड़ी विक्ट्री दे जाती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो वक्त मुश्किल वक्त में साथ नहीं छोड़ते वही दोस्त होते हैं, जो तुम्हें जो तुम्हारे आंसू आने पर तुम्हें हंसाने लगे वही दोस्त होते हैं, जो तुम्हारे साथ चलते हैं वही दोस्त होते हैं, जो तुम्हारे सपने को अपना सपना समझते हैं वही दोस्त होते हैं, जो गिरने पर सर पे टपली मार के उठाए वही दोस्त होते हैं, जो बेवजह बिन बात मजाक उड़ाए वही दोस्त होता है। सो ऐसी दोस्तों की सुन रहे थे हम कहानी, और इस कहानी में हमने देखा कि मुसीबत कितनी बड़ी क्यों ना हो पर एक साथ रहकर हर मुसीबत से लड़ा जा सकता है, हर मुसीबत पे काबू पाया जा सकता है, हर बुरे इंसान को हराया जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा साथ में रहना, हमारा हमारे दोस्तों को सपोर्ट करना, दोस्तों के साथ खड़े रहना। तो आज की कहानियों की गुल्लक में बस इतना ही, हम दोबारा फिर मिलेंगे आचार्य 90 FM पर, तब तक सुनते रहिए कहानियों की गुल्लक। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आपसे विदा लेता हूँ।